मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 37 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: छह बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के

0: मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं समूह स्वरों में देशभक्ति गीत से। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी है एकता में अनेकता। अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग बोलियां और अलग अलग रीति रिवाज होने के बावजूद जब बात भारत मां की आती है तो हर दिल एक साथ धड़क उठता है।

इस देशभक्ति गीत के बाद अब प्रस्तुत है भजन। स्वर है लता मंगेशकर और भीमसेन जोशी का। गीत रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की। श्री राम का गुणगान करना केवल उनके नाम का स्मरण करना नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को अपने व्यवहार में उतारने का संकल्प लेना है। आइए मन में प्रेम, वाणी में मधुरता और कर्मों में सत्य का दीप जलाएं।

0: सीमा परवीन की आवाज में ये था भक्ति गीत। और इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब सुनिए चिंतन। आलेख है मेघराज प्रकाश जैन का और स्वर है के परेश का।
1: मित्रता से मनुष्य को सफलता मिलती है, किंतु आचरण की पवित्रता उसकी हर इच्छा को पूर्ण कर देती है। कहा भी गया है, स्वच्छ आचरण सुंदर व्यक्तित्व का आधार होता है। मनुष्य जन्म से गुणवान है, संस्कार करते रहने से वो महापुरुष महात्मा बन जाता है, बन सकता है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए श्री गुरुओं ने धर्म बिंदु ग्रंथों की रचना की। परिचय जीवन का अभिन्न अंग है। एक मनुष्य दूसरों के परिचय में आता है। जन्म होने के बाद परिचय का क्षेत्र विस्तृत होता ही जाता है। माता पिता, भाई बहन, घर के दूसरे स्वजनों का, मित्रों का, समाज का, नागरिकों का, इस तरह परिचय बढ़ता ही जाता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में परिचय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य जब तक समझदार नहीं होता, तब तक परिचय भाग्यादीन परिचय मिलता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में ऐसी व्यवस्था है कि ऐसे नासमझ व्यक्तियों की जिम्मेदारी उनके पालक माता पिता करते रहें। उन्हें किसके परिचय में आने देना, किसके परिचय में नहीं आने देना, इसका निर्णय उनके अभिभावक वर्ग करते हैं। जहां पर साथ साथ जीना होता है, सहजीवन होता है, वहां पर परिचय तो करना ही पड़ता है। पर किससे परिचय करना, कितना करना, ये सावधानी रखना जीवन में बहुत अनिवार्य है। जिसने ज्ञान आचरण में उतार लिया, उसने ईश्वर को ही मूर्तिमंत कर लिया। आत्मत्याग स्वीकार करो, सबको रास्ता दे दो, सबकी बातों और आचरणों को सह लो। इसी प्रकार तुम उन लोगों की भलाई कर सकोगे, उन लोगों की भलाई अवश्य अवश्य करो।

0: परंतु किसी पर क्रोध उगलकर, उन पर कटु वाक्यों की वर्षा करके तुम किसी की भी भलाई नहीं कर सकोगे। समता पूर्वक स्वयं आचरण करके लोगों में सत्कर्म की रुचि पैदा करनी चाहिए। आचरण बिना और अनुभव बिना केवल श्रवण से आत्मज्ञान की माधुरी का पता कैसे चले।
1: ये था चिंतन। आलेख था मेघराज प्रकाश जैन का और स्वर था के परेश का।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर है जगजीत सिंह और कविता कृष्ण मूर्ति का। संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

0: अभी श्री रामचरितमानस का गायन प्रसारित किया गया। स्वर था जगजीत सिंह और कविता कृष्णमूर्ति का। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुकोट।
1: कास्तकर भाई बहन मन, आमचो बस्तर ने असन तो कई प्रकार चो तेल बीती फसल चो कमानी होए से असने चे घोटुक तेल बीती फसल आए राम तिल बल्लो ने डेंगी तिल ये चो कमानी बले वर्षा चमास बतर ने होए से ये फसल भाटा टिकरा बल्ले मरहन ने कमातो बीती फसल आए ये फसल के तुम्हें बुनन तो सारला सास होती मांतर दादा दीदी मन काई च फसल धर तो काजे होता खदभात संगे संगे हुंचो जोगा जतन बले करुक लागे से राम तिल बल्ले डेंगी तिल फसल ने असनी लाटा बुटा के निजानी करतो रुवाड तो तुम्हें करला सास होती ये फसल ने बले बीमारी सेमारी और कीड़ी मन जौट सोत हुनके मरला तो और थेबा तो काजे उपाय के मैं आजी सांगे से आगे सुना यथा कीड़ी मन कसन कसन जौट सोत ये घोटके घोटुक कीड़ी आए राम तिल इल्ली ये कीड़ी पाना के खाउन भाती फसल के नुकसान करे से ये कीड़ी कई खार बूटा चो पाना के खाउन सारून दे से जेचोले बूटा चो बाढ़ती के नुकसान अमरे से और बूटा ने उपजन बले कम मिरे से ये कीड़ी के मरला तो काजे रासायनिक दवाई क्लोरोपायरीफास 20 EC नहले क्विनालफास 25 EC चो 1 लीटर नहले कार्बोरिल 5% चूर्ण के छींच तो राय नहले भुरकुन दे तो राय एक हरे के और सुना कीड़ी आए राम तिल इल्ली ये कीड़ी पाना के खाउन भाती फसल के नुकसान करे से ये कीड़ी कई खार बूटा चो पाना के खाउन सारून दे से जे चोले बूटा चो बाढ़ती के नुकसान होए से और उपजन बले कम मिरे से ये कीड़ी के मरला तो काजे रासायनिक दवाई आए क्लोरोपायरीफास 20 EC नहले क्विनालफास 25 EC एचो 1 लीटर नहले कार्बोरिल 5% चूर्ण के छींच तो राय नहले भुरकुन दे तो राय गोटोक दूसर कीड़ी आए माहू

0: एके एफिड वाले बोलसोत। ये कीड़ीमन बूटा चो पाना और पील ने लटकुन भाती हुंचो रस के चुहक सोत, जे चोले फसल के नुकसान होय से। महू कीड़ी फसल थाने फूल फूट तबे रहुआत, एचो काजे दवाई आए डायमिथोएट 0.03%, नहाले फास्फोमिडान 0.03%, एचो उपयोग करतो राय। एक हराउर सांगुन दे से कीड़ी आए महू, ये कीड़ी के एफिड वाले बोलसोत, ये कीड़ी मन बूटा चो पाना और पील ने लटकुन भाती हुंचो रस के चुहकुआत, जे चोले फसल के नुकसान होय से। और एक कीड़ी के मरला तो काजे दवाई आए डायमिथोएट 0.03%, नहाले फास्फोमिडान 0.03%, एचो उपयोग करतो राय। ये तो होली दादा दीदी मन कीड़ी मन चुगोट। अदाए बीमारी मन के जाना, बीमारी आए बीज गलन। बीज मन अकर तो पहले फपुंद हो तो कारण गलून जासोत। ये बीमारी ले बचा तो काजे बीज के थायरम नाव चो फपुंद नाशी दवाई ले 3 ग्राम दवाई के 1 किलो बीज चो हिसाब ने बीज उपचार करतो राय। एक हर सुना बीमारी आए बीज गलन। ये बीमारी होलो ने बीज मन अकर तो पहल फपुंद हो तो कारण गलून जासोत। ये बीमारी ले बचा तो काजे बीज के थायरम नाव चो फपुंद नाशी दवाई ले 3 ग्राम दवाई के 1 किलो बीज चो हिसाब ने बीज उपचार करू रतो राय। गोटोक दूसर रोग हो से भभूतिया। ये रोग होलो ने पाना मन चो उपरे पंडरी बाना वहां दखा देवाय, पाछे गुलाय पाना ने पंडरी लाखड़ी असन चूरन दखा देवाय। धीरे धीरे ये बीमारी फूल ने बले और पील ने बले झोंटे से, पाछे पाना सुखुन जाए से और उपजन बले कम होए से। ये बीमारी ले फसल के बचा तो काजे सल्फेक्स 3 ग्राम दवाई, नहाले केराथेन 1 मिलीलीटर दवाई, नहाले केलिक्सिन 0.5 मिलीलीटर दवाई के 1 लीटर हिसाब ने पानी ने घोरून भाती ठिया फसल ने 15 दिन चो भीतरे छींच तो राय, तब ये बीमारी ले आमी फसल के बचा सकूं दे।
1: आप सुन रहे थे कृषि समय की भेड़ा खाड़ा चुगोट, मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:40 होते हैं। हुलहुली कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है सनाहपाड़। वादक कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सनाह पाड़ सुन रहे थे। वादक कलाकार थे गणपति कड़ियारी और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर हम पेश करते हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसमें सुनिएगा कविता सरिता में महेश सिन्हा से कविता पाठ और हम लेकर आएंगे मधुर गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर डॉक्टर की सलाह और सुबह 9:00 बातों बातों में ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:15 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मवाली के गीत। सुबह 10:00 कार्यक्रम आजी चौसगा में सुनिएगा डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुबह 10:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी गीत। गायक कलाकार होंगे शत्रुघ्न सिन्हा और साथी। एक ही कलाकार सुबह 11:00। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित होगा मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक राज खोसला पर। दिन में 11:30 पर पेश किया जाएगा गैर फिल्मी गीतों गजल का कार्यक्रम गुलदस्ता। दिन में 12:00 प्रस्तुत किया जाएगा लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम लोकरस का पुनः प्रसारण। प्रस्तुति होगी जयराम कवासी की और संयोजिका होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। दोपहर 1:05 पर कृषि समय की बेड़ाखाड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण किया जाएगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का दैनिक कार्यक्रम श्रोता सुमन आप सुनते हैं दोपहर 1:00।

होगी चंद्र ऋषि ठाकुर की। हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों में शाम 5:05 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। शाम 5:10 पर युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी में सुनिएगा हेलो युववाणी। प्रस्तुति होगी पूनम भारती की। कीचोराम और साथियों का गाया गोंडी गीत आप सुनेंगे शाम 6:35 पर। शाम 7 हम लेकर आते हैं कार्यक्रम बस्तर के स्वर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी सुनिएगा शाम 7:30 पर। रात 8 लोक गीतों के कार्यक्रम जोनी उजर में आनंद लीजिएगा हल्बी गीतों का। गायिका होंगी नीला और साथी। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम पीलामन काजी गोठ केंद्रित होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की। रात 9:15 पर हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम आमचो रान आमचो जीवना में हल्बी नाटक रुक राय संग जीवना। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम चित्र भारती हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और रात 10 आदिवासी लोकवाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में सुनिएगा करला कोटिन देवी पाड़ और धवड़ा वीर देव पाड़। वादक कलाकार होंगे पाकलू और साथी। अभी आप हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी सुन रहे थे।

0: राष्ट्रीय सुरक्षायै सामाजिक स्थिरतायै आर्थिक हिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिक नेतृन् यूनः मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्री शाहः नवदिल्ल्यां मादक द्रव्य विषयक संयोजन केन्द्रस्य दशम शीर्षस्तरीय सभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: उत्तर प्रदेश आरक्षिबलेन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तु विज्ञान विभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वीयोत्तर प्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु लक्षद्वीपस्य कतिपय क्षेत्रेषु च तडित्पातस्य संभावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः एसएसकेएम चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति

0: आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

जीवन का सबसे सुंदर उपहार है एक नई सुबह। बीती बातों को पीछे छोड़कर आज पूरे उत्साह, सकारात्मक सोच और मुस्कान के साथ जीना ही सच्ची सफलता है। इन्हीं विचारों के साथ आपका हार्दिक स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर में। स्वीकार कीजिए मनिंदर सिंह देवगुण का प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल।

श्रोताओ, आज तारीख है 27 जून और ये दिन कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस हमें जीवन, समाज, मेहनत, स्वास्थ्य और प्रेरणा से जुड़ी कई अच्छी बातें याद दिलाते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी MSME डे की। ये दिन छोटे और मध्यम व्यवसायों के महत्व को समझने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोटी छोटी दुकानों, घरेलू उद्योगों, कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई, खाद्य सामग्री, मोबाइल दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, खेतीबाड़ी से जुड़े काम और स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार का जीवन बेहतर बना रहे हैं। हमारे

जगदलपुर और पूरे बस्तर क्षेत्र की पहचान भी अपने स्थानीय उत्पादों, बस्तर कला, बेल मेटल, बांस से बने सामान, लकड़ी के हस्तशिल्प और मेहनतकश लोगों से है। आज का दिन उन सभी उद्यमियों और मेहनती लोगों को सलाम करने का दिन है जो अपने हुनर और लगन से रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हेलन केलर दिवस की। हेलन केलर एक ऐसी महान प्रेरणादायक महिला थी जिन्होंने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने हौसले और दृढ़ संकल्प के बल पर दुनिया को ये संदेश दिया कि अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोक नहीं सकता। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हौसला, मेहनत और सकारात्मक सोच हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती है। आज ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस। अनानास एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है। इसकी मिठास और ताजगी हमें जीवन में खुशियों का संदेश देती है। गर्मियों के मौसम में फल का सेवन करना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए अपने भोजन में मौसमी फलों को जरूर शामिल करें और स्वस्थ रहें। और अब श्रोताओं, बात राष्ट्रीय धूप चश्मा दिवस यानी नेशनल सनग्लासेस डे की। तेज धूप में बाहर निकलते समय अपनी आंखों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। धूप का चश्मा केवल फैशन का हिस्सा नहीं बल्कि तेज धूप और हानिकारक यूवी किरणों से आंखों को बचाने का एक उपयोगी साधन भी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चलाने वाले साथियों को धूप में बाहर निकलते समय अपनी आंखों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो श्रोताओं, आज मनाए जाने वाले दिवसों से हमें ये संदेश मिलता है कि अपने छोटे बड़े काम को सम्मान दें, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा दें, हौसला बनाए रखें, जीवन में मिठास घोलें और अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। इन्हीं संदेशों के बाद अब समय है एक ऐसे गीत का जो धूप, स्टाइल और मस्ती तीनों का शानदार संगम है। आइए सुनते हैं।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये फिल्म सुहाग का गीत था। समीर के बोल थे, आनंद मिलन का संगीत था।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
6: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर

के साथ रंगों की खूबियां हों, जमाने की कोई बुराई ना हो, बल्कि बुराइयों को दूर करने वालों में से हो। एक अच्छे व्यक्तित्व की कल्पना जिसमें बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक और व्यावहारिक गुणों का महत्व होता है, इसमें सहानुभूति, आत्मविश्वास, सच्चाई और सकारात्मक दृष्टिकोण शामिल है, जो व्यक्ति को समाज में प्रिय, प्रभावशाली और विश्वसनीय बनाते हैं। प्रस्तुत कविता भीड़ में अकेला आदमी। ओ मसीहा, लोगों में है आपाधापी, जल्दबाजी की ये दुनिया सारी, ठहर जाता है अगर कोई मंजिल अपनी पाने को, बिसर जाती है उसकी यादें, वो वादे वो इरादे, वो है अभी जिसके सहारे, है अभी दहलीज जहां पार करना है उसे, ए मेरे मालिक ए मेरे मौला, देना उसे तू इतनी शक्ति, बना देना उसे मसीहा, कर सके वो गरीबों की भक्ति, न होगा दलितों का शोषण और न होगी भ्रष्टाचार।

हैं बेबस, आखिर क्यों है इतनी बंदिश में? शायद परिणाम से घबराता है, कार्य की अपेक्षा विचार अधिक करता है, कुछ अनहोनी की आशंका, कुछ खो देने का भय हर पल उसे सताता है, आखिर क्यों है इतनी बंदिश में? शायद प्यार का ही एक रूप, धैर्य की दे रही वह परीक्षा, सब कुछ समय पर दे रहा वह छोड़, अंधेरी रात की बात, भोर का सूरज भी उगेगा, हर पल दे रहा वह दिलासा, आखिर क्यों है इतनी बंदिश में? मेरी अगली कविता का शीर्षक है उलाहना। जी हाँ दोस्तों, कि किसी की गलती या भूल पर दुखपूर्वक शिकायत करना या कहें कि प्यार भरी नाराजगी जताना अक्सर किसी अपने के द्वारा किए गए वादे को न निभाने या उपेक्षा करने पर व्यक्त किया जाता है। यह सवाल बहुत स्वाभाविक है क्योंकि मन की उथल पुथल अक्सर किसी एक व्यक्ति के सामने बयान नहीं की जा सकती। ऐसे में अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए आप खुद को एक सुरक्षित जगह दे सकते हैं। अपने विचारों को एक डायरी में लिखना शुरू कीजिए और परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर खुलकर बात करें, या अपनी भावनाओं को शब्दों, संगीत या कला के माध्यम से भी आप बाहर निकाल सकते हैं। प्रस्तुत कविता उलाहना। किससे कहूँ, क्या कहूँ, मेरे मन के अंतर द्वंद को, कभी अपने आप को, कभी अपनी किस्मत को, आखिर किससे कहूँ? इतिहास को गलत ठहराऊं या भविष्य को गर्त में जाते देख वर्तमान में अंधेरे में खो जाऊं? कहाँ जाऊं, क्या करूं, आखिर मैं किससे कहूँ? कौन है इसका कारक, क्या है इसका उपाय, क्या होगा परिणाम, कब होगा कष्ट का अंत, आखिर मैं किससे कहूँ? पूर्व जन्म का कर्मदंड या रचा कोई षड्यंत्र, या मेरे ही निष्फल कर्म, मेरी वाणी या दुर्व्यवहार, आखिर मैं किससे कहूँ? कब तक रखूं मैं धैर्य, कैसे करूं मैं इसका समाधान, आखिर मुझ में क्या है ऐब, सही गलत को कैसे परखूं, आखिर मैं किससे कहूं? अव्यवहारिक अनियमित दिनचर्या की है नाव, किनारे का कोई पता नहीं, दूर छूट गया है गांव, आखिर मैं किससे कहूं? हर जगह है दबाव, घर के अंदर और बाहर भी, रिश्ते को कैसे मैं निभाऊं, सभी में है शक का दंश, आखिर मैं किससे कहूं? न दिन में है आराम, न रात को है चैन, देह भी थक जाती है, मन रहता सदा बेचैन, आखिर मैं किससे कहूं? जो मिलती है सहानुभूति, कुछ पल में काफूर हो जाती है, देता हूं खुद को आश्वासन, उस पर निराशा हावी हो जाती है, आखिर मैं किससे कहूं? अगली कविता का शीर्षक जिंदगी। जिंदगी केवल सांस लेना या दिन गुजारना नहीं, बल्कि यह संघर्षों, सीख और अनुभवों का एक अनमोल कैनवास है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम हर सुबह एक नई शुरुआत और हर चुनौती हमें मजबूत बनाने का अवसर लेकर आती है। प्रस्तुत कविता जिंदगी। ये जिंदगी क्या है? एक खुली किताब है। सुख दुख का मेल है जिंदगी, तकदीर का खेल है ये जिंदगी। तकदीर का फैसला समझकर जिंदगी को पार कर ले। जिंदगी में कांटे हैं तो कहीं सुगंधित फूल भी हैं। वर्तमान से नहीं रहता कोई भी संतोष, भूत भविष्य जानने में रहता सबको आक्रोश। जिंदगी भर कठिनाइयों से जूझता है इंसान, फिर भी रह जाते अधूरे दिल के कुछ अरमान। ये जिंदगी क्या है? एक खुली किताब है, सभी के दिल में उमंग है, इसे पढ़ने को बेताब है। अगली कविता का शीर्षक सफर। केवल पुरुषों के लिए समझे जाने वाले क्षेत्रों में महिलाओं ने भी कदम रखे हैं। कार्य क्षेत्र कितना ही अधिक श्रम वाला क्यों न हो, महिलाओं ने जमी से लेकर आसमां तक का सफर पूरा कर लिया है। प्रस्तुत कविता सफर। अपने पुरुष प्रधान समाज में महिला आरक्षण पर बल देते हैं और घर में जाकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं। महिला सशक्तिकरण वर्षा आपने खूब मनाया, नई कविता गीत और नारे लगाया, पर आप क्यों ये भूल रहे हैं, नारी पत्याचार करके और उसको शक्तिहीन समझ नारी सशक्तिकरण वर्ष मनाए हैं। नारी को शक्तिहीन समझ महिला संगठन को आपने प्रोत्साहन दिया और अपनी फोटो छपवाकर नारी शक्ति का दोहन किया, पर तुम्हारे अंधविश्वास की कोठरी से निकलकर तुम्हारे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं ने भी दम साध लिया है। अब तुम्हारी एक न चलेगी, तुम्हारी गलती एक न छपेगी, क्योंकि अब हमने भी पूरा कर लिया है जमी से आसमां तक का सफर। अगली कविता उड़ते जुगनू। एकता का संदेश। जी हाँ, आपसी मतभेदों, जाति, धर्म और भाषा की सीमाओं को पार करके मिलजुल कर रहना, यह किसी भी परिवार, समाज और देश की सबसे बड़ी ताकत है। एकता में ही शक्ति है। जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी बड़ी चुनौती आसानी से हल हो जाती है। एकता हमें भाईचारा और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है। प्रस्तुत कविता उड़ते जुगनू।

रात्रि में उड़ते जुगनू, टिम टिम करते उड़ते जुगनू, अंतरिक्ष यान से लगते जुगनू, हवा में बहते जुगनू, आकाश से उतरते जुगनू, झुंड में रहते जुगनू, चमकते जुगनू, एकता में रहो बताते यह जुगनू, अंधियारे मिटाने संदेश देते उड़ते जुगनू। मेरी अगली कविता मॉर्निंग वॉक। अब चलिए थोड़ा व्यंग की ओर चलते हैं। साथियों, जीवन में हास्य और विनोद बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को कम करते हैं और एंडोर्फिन जैसे फील गुड रसायन छोड़ते हैं। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, चुनौतियों से लड़ने की ऊर्जा देने और रिश्तों को मजबूत करने में मदद करते हैं। प्रस्तुत कविता व्यंग के रूप में मॉर्निंग वॉक। सोचा मैं भी मॉर्निंग वॉक शुरू कर लूं, दिल में बचे थे अरमान थोड़े तो पूरी कर लूं, एक तंदुरुस्ती और हजार नियामत वाली कहावत चरितार्थ करके तो दिखा दूं, ब्रह्म मुहूर्त की ताजी ठंडी हवा सेवन करने की मन में ठानी, पर अलार्म की घंटी ने कर दी मनमानी, बजना था 5 AM सेव हो गया 5 PM, पत्नी जी बोली तुम ये न कर पाओगे, मन ही मन खूब पछताओगे, चुनौती मैंने स्वीकार कर ली, पत्नी जी से शर्त भी लगा ली, पर नींद खुली आधी रात को, सो गया फिर नींद पूरी करने को, मन का अलार्म बजने लगा, झटपट उठ तैयार हो दौड़ने लगा, पर रास्ते में मैं अकेला ही था, बाकी सभी प्रयोजन लिए हुए था, कोई फूलों की चोरी करता तो कोई चैन से बंधे डॉगी के पीछे हो लेता, गली के कुत्तों से था मैं अनजान, उनके लिए भी था मैं नया मेहमान, मेरी तेज चाल को देख हो गए सभी सतर्क, मेरे पीछे होकर सभी करते तर्क कुतर, उनकी अवहेलना करना पड़ गया मुझ पर भारी, एक मत होकर दौड़ते भौंकने लगे बारी बारी, कभी मैं आगे तो कभी पीछे, कभी मैं आगे तो वो कभी पीछे, दौड़ की प्रतिस्पर्धा चल निकली, घंटों का सफर मैंने मिनटों में पूरी कर ली, दौड़ते दौड़ते वापसी में घर में एंट्री कर ली, मेरे प्रतिद्वंदी मेन गेट पर ही नो एंट्री कर ली, और हाँ पत्नी जी से लगी शर्त भी मैंने पूरी कर ली। अगली कविता माँ। माँ हर व्यक्ति के जीवन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होती हैं। वह अत्यंत परिश्रमी और ईश्वर के बाद सर्वोच्च स्थान रखती हैं। वह अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और हमेशा अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं। कविता माँ। जब हम 4 साल के होते हैं हमें लगता है एक माँ ही है जो सब कुछ समझती है। 8 साल की उम्र में हमें लगता है माँ बहुत कुछ जानती है। 12 साल के होने के बाद हमें लगता है कि शायद माँ सब कुछ नहीं जानती। 14 साल की उम्र में बाहर की दुनिया के आकर्षण में हमें लगता है माँ कुछ भी नहीं जानती। 16 साल के होने पर हम अपनी दुनिया में इतना खो जाते हैं कि माँ को ही भूल जाते हैं। 18 की उम्र में माँ बहुत ही नजर आती है पुरातनवादी। 25 की उम्र में किसी मसले को सुलझाते हुए फिर से लगता है शायद माँ इस बारे में जानती है। 35 की उम्र में हर महत्वपूर्ण फैसले के पहले माँ की सलाह लेने लगते हैं। 45 के होने पर हमें आश्चर्य होता है माँ कितनी सही सोचती थी। 75 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हम सिर्फ यही सोच पाते हैं काश माँ साथ होती और उनसे सलाह ली जा सकती, काश माँ की गोद में सोकर थकान मिटाई जा सके। अगली कविता रोजगार गारंटी के ऊपर। रोजगार गारंटी शासन की एक योजना जिसको कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है। ये योजना छत्तीसगढ़ में मजदूरों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रोजगार, महिलाओं का सशक्तिकरण, पलायन में कमी और मजदूरी में वृद्धि सुनिश्चित कर मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया है। रोजगार गारंटी यह कविता स्थानीय बोली में छत्तीसगढ़ी में सादर प्रस्तुत है। सुनथस वो मोर नोनी के दाई, काय गुना थस वो मोर नोनी के दाई, हो जा झटकुन तैयार, गांव में खुले है रोजगार, 100 दिन ले बाढ़ गए 200 दिन के काम, रोजगार गारंटी में घलो बाढ़ गए दाम, तय धर ले रापा झुहा पानी, मैं धर हूँ कुदारी, मैं कोड़ हूँ गोदी और तय डुहार बे माटी, दसरी जाही स्कूल, बिमला जाही आंगनबाड़ी, हम दोनों जाबो रोजगार गारंटी, आजी दाई राखी घर के द्वारी, नहीं हुए घर में पैसा कौड़ी के तंगई, नहीं रहे खाए पिए के कर लई, काम करके आबो दोनों जाबो हाट बाजार, जरूरत के सब जिनिस बिसाबो मनाबो रोज तिहार, रोजगार गारंटी माँ है रोजगार मिले के गारंटी, रोजगार कहूँ नहीं मिली तब भत्ता के है वारंटी, पंजीयन कराबो तभी मिली हमला रोजगार, पंजीयन करावा देरी है मिल जा ही रोजगार गारंटी, अपन गांव अपन छाव

0: अब नई पढ़ाई छोड़ना, नई हो वे सुनना, गांव गली खोर अंगना, घर बैठे काम मिलत है, नई जाए पर है कखरो दुआरी, रोजगार गारंटी में न सिर्फ मिलत है हमला रोजगार, नवा नवा निर्माण ले हुआ थे गांव के विकास। जय जोहार।
1: काव्य सरिता में अभी आप सुन रहे थे महेश सिन्हा के स्वर में कविता पाठ। आइए अब सुरों और संगीत की मधुरिमा में डूबते हैं और सुनते हैं कुछ मन भावन गीत, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इंतजार। बारी है संदेशों की।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: अपेशे मधुर गीतों की मधुरिमा।

निगाहों का असर भी क्या कमाल कर जाता है, निगाहों का असर भी क्या कमाल कर जाता है, एक पल में दिल को बेकरार कर जाता है। कुछ बातें लफ्जों से नहीं कही जाती, कुछ बातें लफ्जों से नहीं कही जाती, बस एक नजर ही इजहार कर जाती है।

दिल की बेचैनी का भी अपना अंदाज होता है, हर धड़कन में एहसास होता है। दिल की बेचैनी का भी अपना अंदाज होता है, हर धड़कन में किसी का एहसास होता है। इंतजार अगर सच्ची मोहब्बत का हो तो हर पल भी बड़ा खास होता है।

आंखों की जुबां अक्सर दिल का हाल कह जाती है, बिन बोले ही हर दूरी को मिटा जाती है। नजरों में अगर सच्चा प्यार बस जाए तो हर धड़कन मुस्कुराना सीख जाती है।

जब दिल में किसी का प्यार उतर जाता है और मौसम भी गुलजार नजर आता है। जब दिल में किसी का प्यार उतर जाता है, हर मौसम भी गुलजार नजर आता है। जिंदगी की राहें आसान सी लगने लगती हैं जब कोई अपना दिल के पास आ जाता है।

दिल की बस्ती में जब कोई खास उतर जाता है, दिल की बस्ती में जब कोई खास उतर जाता है, हर ख्वाब उसी के रंग में सवर जाता है। मोहब्बत का यही तो सबसे हसीन फसाना है, एक नाम से ही पूरा जहां निखर जाता है।

जिंदगी ने एक बात हमें सिखा दी, अपनी कीमत वक्त ने बता दी। जो दिल में बस जाए उम्र भर के लिए, उसी ने मोहब्बत की राह दिखा दी।

श्रोताओं, आज मधुरिमा में आपने जिन फिल्मों के गीतों का आनंद लिया वे फिल्में थी निगाहें, लाल दुपट्टा मलमल का, खुददार, जब प्यार किसी से होता है, फिदा और इंडियन। आवाजें थी सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार शानू, अभिजीत और साधना सरगम की।

तो श्रोताओं, इन्हीं मधुर सुरों और सुरीली यादों के साथ आज की मधुरिमा यहीं संपन्न होती है। उम्मीद है गीतों की ये श्रृंखला आपके मन को सुकून और चेहरे पर मुस्कान दे गई होगी। संगीत यूं ही आपके जीवन में प्रेम, अपनापन और खुशियों की मिठास घोलता रहे। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात नए गीतों, नई महक और नई मधुरिमाओं के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मनिंदर सिंह देवगुण आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।

0: नमस्कार जगदलपुर, अभी आप हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात।

0: आपके साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर

क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: दो विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी।

0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र सिक्किम असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार छत्तीसगढ़ कोंकण गोवा तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरलम माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टिपत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-times champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as a guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2000.

0: श्रोताओ नमस्कार, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, हमारे भारत में चिकित्सा की कई पद्धतियां हैं। उन्हीं चिकित्सा पद्धतियों में योग और ध्यान को भी शामिल किया गया है, जिसमें लोगों को मेडिटेशन, ध्यान और योग प्राणायाम के जरिए स्वस्थ करने का एक मार्ग दिखाया जाता है। श्रोताओ, यदि हम योग और ध्यान से जुड़ेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, क्योंकि योग और ध्यान जो है हमारे चित्त, हमारे शरीर को आत्मीय रूप से स्वस्थ बनाता है। फिर हम उन चीजों से दूर हो जाएंगे जो चीजें हमारे लिए हानिकारक होंगी। तो श्रोताओं, योग और ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है और योग और ध्यान कैसे करें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी से, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा एनाटॉमी एक्सपर्ट हैं। तो मृत्युंजय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी आकाशवाणी टीम को।
0: जी जी, तो मृत्युंजय जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग और ध्यान क्या है।
1: बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। कि आमतौर पे जैसे कि हम इसको अगर योग की फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में बोले तो हम लोग बोलते हैं कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक विधा है। लेकिन चूंकि मैं वैज्ञानिक और चिकित्सीय पक्ष से अगर उसको मैं व्याख्या करने की कोशिश करूं, तो यह एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा आप अपने बॉडी को, अपने ब्रेथ को, अपने माइंड को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर पे, एक सिंक्रोनाइज मैनर पर आप कार्य कर सकते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन जब होता है बॉडी, ब्रेथ और माइंड का एक सिंक्रोनाइज वे पर, और यही कोऑर्डिनेशन, यही यूनियन को हम

0: जो कह सकते हैं
1: जी।
0: ध्यान भी आज के तरह एक योग की ही विधा है। अगर हम योग के बारे में बात करते हैं तो पतंजलि जी का नाम लेना, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले योग को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उनको दिखाया, और ध्यान भी पतंजलि के जो अष्टांगिक योग का एक पार्ट है। ध्यान में हम बेसिकली आज के तारीख में लगभग दो चीजों में बड़ा ही उनमें दिग्भ्रामक होता है कि ध्यान क्या है। ध्यान को लोग बाग धारणा समझते, कंसंट्रेशन समझते हैं। ध्यान एक तरह से एकाग्रता नहीं होता है। जब आप एफर्टलेस, बिना किसी एफर्ट के अगर आप किसी भी चीज को कंटिन्यूअस देखते जाते हैं, ऑब्जर्व करते जाते हैं, तो वो प्रकार को ध्यान कहलाता है। तो ध्यान देखा जाए तो मन का विश्राम है एक प्रकार से। जब मन आपका विश्रांति अवस्था में पहुंच जाता है, उसी को हम ध्यानस्थ अवस्था कहते हैं। तो मन का विश्राम ही ध्यान है कह सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, हम योग और ध्यान के बारे में थोड़ा सा आगे और चले, उससे पहले हम आपसे एक जो है मूलभूत सवाल जानना चाहेंगे कि आज हर व्यक्ति बीमार है, और किसी को शुगर, बीपी, हड्डियों की बीमारी, कई तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, इसका जो है एक क्या कारण हो सकता है?
0: आपका ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसका मुख्य जो कारण जो है, प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का, जैसे आप जान रहे हैं कि युग है और इतना कंपटीशन है, तो जो शरीर जो होता है उसकी भी एक क्षमता होती है। तो कई बार आपका जो शरीर है इस कॉम्पिटेटिव युग के साथ में फाइट नहीं कर पाता, कोप अप नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे यही कोप अप नहीं करने की वजह से उसको एक तनाव शरीर के भीतर आना शुरू हो जाता है, और ये तनाव भी एक प्रकार से देखा जाए तो एक मुख्य समस्त बीमारियों का कारण है, जिसको हम लोग मेडिकल साइंस में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं
1: जी।
0: जिसमें आप जैसे बताया डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, आर्थराइटिस है, ये सारी बीमारियां एक तरह से साइकोसोमेटिक डिसीज की कैटेगरी में आती हैं। इनका जो मुख्य कारण मन में होने वाला दबाव है, तनाव है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं योग और ध्यान की, तो सबसे पहले हम बात करें योग की, क्योंकि 21 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाना जाता है, तो योग के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से योग जो है हमारे लिए लाभकारी होते हैं?
0: देखिए, अगर हम आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अगर आप मॉडर्न लाइफ स्टाइल को देखिए, तो आज का जो आधुनिक मनुष्य जो हो गया है, मोबाइल का डेस्कटॉप का बहुत आदि हो गया है, और उसके वजह से एक नई बीमारी जो उत्पन्न हो गई समाज में, जो हो सकता है आने वाले समय में लोग बात उसके बारे में जरूर बात करेंगे, कंप्यूटर डिस्क सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम आ रहे हैं कंप्यूटर को यूज करने से, लगातार स्क्रीन देखने से, आपका जो हेड है वो थोड़ा सा आपके जो गर्दन जो है उससे आगे आ गया है, तो इस समस्या के वजह से भी एक आधुनिक जगत में एक समस्या आ रही है। और इसके लिए जैसे आपने पूछा कि किस तरह के योगा अभ्यास करना से मदद मिलेगा, तो मेरा ये कहना है, चूंकि ये हम एक कैटेगरी में बांटेंगे तो उसको फॉरवर्ड हेड हो जाता है, बॉडी जो आपका है उसमें जो आपको गर्दन जो होता है सिर थोड़ा सामने की हो जाता है, तो आप पीछे झुक करके जितने भी अभ्यास हैं इसमें बैक बेंडिंग जो आसना है वो आप करेंगे, तो निश्चित ही रूप से जो आधुनिक युग में जो समस्या आ रही है उस समस्याओं को रिवर्स करने में एक लाभकारी हथियार के रूप में सिद्ध होगा वो। उसमें उष्टासन आप बोल सकते हैं, उष्टासन का अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन, सेतुबंध आसन का अभ्यास करना चाहिए, है ना। योग के तो प्रकार जो मुख्य रूप से जो कर्मयोग है, जिसमें व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, दूसरा है ध्यान योग जिसकी आप बात कर रहे थे, जो तीसरा जो मुख्य प्रकार है भक्ति योग जिसमें आप सरेंडर हो जाते हैं, अंतिम जिसे आप भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और उनके सानिध्य को सबसे समर्पित करते हुए कर्म करते हैं, तो भक्ति योग की कैटेगरी में आता है। तो मुख्य रूप से योग के तीन प्रकार होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना, इस तरह से
1: जी जी।
0: प्राणायाम जो देखा जाए तो ये जो पतंजलि जी ने जो अष्टांगिक जो मार्ग बताया है, जिसमें उन्हें यम और नियम से स्टार्ट किया है कि यम नियम जो है, फिर उसके बाद में पहले यम और नियम को साधना है, फिर आसन करना है, आसन के बाद में प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आता है प्राणायाम।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई योग की, तो यदि हम जानना चाहें कि जब हम योग करते हैं तो योग करने का क्या तरीका हो?

0: सकता है, हमें कैसी जगह बैठना चाहिए और कितना समय देना चाहिए?
1: देखिए, प्रारंभ में तो समय का महत्व बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि अगर यदि आप दिन भर में 24 घंटे में यदि आप एक ही समय का चुनाव करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और सुबह प्रातःकाल का समय सबसे बेस्ट होता है कि आप प्रातःकाल अपने दैनिक जो भी क्रियाएं हैं उससे निवृत्त होकर के प्रातःकाल उसमें बैठे साधना करें अपना, तो बहुत बेस्ट होगा। और यदि इसके अलावा यदि संध्या काल में भी आप यदि कर पाए तो और भी अच्छा है कि संध्या काल भी थोड़ा समय निकाल के करें। कम से कम मैं बोलता हूँ कि आप

0: बात करें और योग की समय की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: देखिए क्या है, मेरा इसमें एक सुझाव ये रहेगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो बुजुर्ग व्यक्तियों में उनके लिए जैसे कि जो आपके बिहार स्कूल ऑफ योगा है उनका सूक्ष्म व्यायाम का एक पूरा सीरीज है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें प्रतिदिन अपने साथ में 20 से 25 मिनट तक, तो उनके लिए बेस्ट होगा। लेकिन जो युवा वर्ग हैं जिनको जीवन में एक गतिशीलता चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है सूर्य नमस्कार। तो प्रतिदिन अगर युवा वर्ग सूर्य नमस्कार करे तो निश्चित ही उसको उनसे बहुत फायदा होगा, उनके जीवन में गतिशीलता आएगी, एक जीवन के प्रति एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। जैसे सूर्य का नाम ही ऊर्जा है ना, हम ऊर्जा के रूप में सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य का नमस्कार प्रतिदिन करना चाहिए, निश्चित ही युवाओं को इससे फायदा होगा। लेकिन बुजुर्ग वर्ग लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें तो फायदा होगा।
0: जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम चाहते हैं कि आपकी पसंद का एक गीत हम इस कार्यक्रम में सुने।
1: बिल्कुल, मेरे पसंद का एक गीत है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, गाना बहुत मेरे दिल के करीब है।
0: जी जी, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं योग और ध्यान के बारे में। तो डॉक्टर साहब, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे योग के बारे में, आइए अब बात करते हैं ध्यान के विषय में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान क्या है और कितने प्रकार के हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये प्रश्न लोगों को बहुत लोग बात इसमें कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी देना चाहूंगा। विभिन्न जो एक जैसे मैंने आपको बताया कि ध्यान मन का विश्राम है, मन का व्यायाम है, ये ध्यान है। लेकिन जैसे आपका जो दूसरा

0: प्रश्न की तो जो ध्यान के कितने प्रकार होते हैं, तो इस पर विभिन्न रिसर्च होने के पश्चात में ये देखा गया कि ध्यान के मुख्य रूप से चार प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस अटेंशन मेडिटेशन, जिसको आप कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन की कैटेगरी में कहते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए आप किसी भी अपने श्वास पर कंटिन्यूअस ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, श्वास आ रही है जा रही है, या किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो इस तरह की जो ध्यान के जो प्रकार है वो कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन में आते हैं। और दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं हम लोग ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। जो ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन है उसको हम लोग सहज ध्यान भी कहते हैं, जिसमें आप विदाउट जजमेंटल आप चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन जो कहलाता है, इस तरह के जो ध्यान है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। और जो तीसरा जो ध्यान होता है वह कहलाता है करुणा ध्यान, जिसमें हार्टफुलनेस मेडिटेशन आता है, करुणा ध्यान रहता है, विपश्यना है। ये जो हायर लेवल के जो मेडिटेशन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे भीतर की जो नकारात्मक जो भाव है, जो इमोशंस है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और पॉजिटिव इमोशंस लाते हैं, कल्टीवेट करते हैं पॉजिटिव इमोशंस को, जैसे जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, क्षमा हो गया, तो इस तरह के पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट करते हैं। तो इस तरह का जो ध्यान का जो प्रकार है इसको हम लोग करुणा ध्यान कहते हैं। तो इस तरह से कुल आप मोटे मोटे रूप से तीन प्रकार आप बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वैज्ञानिकों ने भी इन प्रकारों को प्रमाणित किया है, क्योंकि तीनों ही प्रकार के ध्यान में आपके जो न्यूरोनल सर्किट्स हैं, जो ब्रेन की जो गतिविधियां अलग अलग होती हैं, तीनों के ही जो फल भी अलग अलग होते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भी ध्यान को तीन भागों में बांटा गया है।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें युवाओं के लिए, जो अभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हो सकते हैं, कॉलेज के बच्चे हो सकते हैं, और उसके बाद रोजगार के लिए जो स्ट्रगल कर रहे बच्चे होते, तो उनके लिए ध्यान का कितना महत्व है?
0: बिल्कुल सही है कि देखिए क्या है कि ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखता है। और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी सूचित करना चाहूंगा कि युवाओं को किस तरह का ध्यान देना चाहिए, मतलब मेडिटेशन कौन से प्रकार का करना चाहिए। तो उनके लिए सबसे जो बेस्ट है वो है फोकस अटेंशन मेडिटेशन, जिसको हम लोग जैसे बात की कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन की जो कैटेगरी है, उसके पीछे का रहस्य क्या है कि हम इस पे देखें कि जो डिफरेंट जो अन्वेषण हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उसमें देखा गया कि जब आप फंक्शनल MRI मशीन होता है जिसमें आपके ब्रेन की गतिविधियों को, फंक्शन को मेजर किया जाता है, तो उस गतिविधियों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकला कि जब व्यक्ति किसी भी चीज को फोकस रहता है, श्वासों पे ध्यान दे, तो ब्रेन के एक हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और उसका भी डार्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो एरिया सक्रिय हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि यह जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जब सक्रिय होता है तो व्यक्ति की वर्किंग मेमोरी, जैसे कोई भी काम कर रहा है तो उस समय उसकी जो तत्कालिक मेमोरी जो होती है वो उस काम को हेल्प करना चाहिए। तो वर्किंग मेमोरी है, अटेंशन है, उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, ये सारे जितने भी जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये डार्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। तो ऐसा देखा गया कि ये पार्ट जितना ज्यादा एक्टिव होगा आपका
1: जी,
0: तो उतना ज्यादा आप इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। तो युवाओं को बहुत जरूरी है कि उनके अंदर अटेंशन होना चाहिए, काम के प्रति वर्किंग मेमोरी स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये देखा गया है कि कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन करने पर उसकी एक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि प्रतिदिन युवाओं को कम से कम 10 से 15 मिनट अपने श्वासों पर ध्यान देना चाहिए या मंत्र का जाप करना चाहिए, तो निश्चित ही इससे उनकी जो जो पर्टिकुलर जो एरिया है जिसको हम लोग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो एक प्रकार से उसको बुद्धि भी बोल सकते हैं अगर आप उसको फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में देखें, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है, बुद्धि उनकी प्रगाढ़ होती जाती है। और ये सारी चीज में रिसर्च पेज बता रहा हूँ आपको, सारे चीज अनुसंधान के ऑलरेडी ये प्रूव हो चुके हैं कि ध्यान करने से ब्रेन में अल्फा रिदम्स आते हैं, ठीक है, और डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर जो पॉजिटिव न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनका स्राव होने लगता है, तो इस तरह की गतिविधियां होती है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक और गीत हम सुने।
0: एक और गीत है जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये भी मेरे बहुत ही दिल के करीब संगीत है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है।
1: तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी से, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा एनाटॉमी एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल हम देखते हैं कि चाहे युवा हो चाहे बच्चे हो, उनके अंदर जो है एक अजीब सा तनाव देखने को मिलता है। वो उनका ध्यान जो है अभी वर्तमान और आधुनिकता की ओर रहता है, जिससे वो तनावग्रस्त रहते हैं। अधिकतर हम देखे जब बात करते हैं हम विद्यार्थियों की, तो योग और ध्यान उनकी कैसे मदद कर सकता है?
1: बिल्कुल, योग और ध्यान तो निश्चित ही मदद करेंगे, लेकिन मैं उनके लिए एक सिंपल सा एक बोलते नहीं कि निमोनिक्स जिसको बोलते हैं, तो एक निमोनिक्स देना चाहूंगा। 3T फंडा, 3T, तो ये 3T फंडा कहने का मतलब ये होता है कि एक टी होता है थॉट्स मैनेजमेंट, एक टी होता है टंग मैनेजमेंट, एक टी होता है टाइम मैनेजमेंट। तो यदि आज का युवा वर्ग थॉट्स को मैनेज कर पाए, तो थॉट का जो मैनेजमेंट है वो आपके ध्यान के द्वारा हो पाएगा, टंग का मैनेजमेंट भी आपका ध्यान के माध्यम से हो पाएगा, टाइम का मैनेजमेंट भी आपका ध्यान के माध्यम से हो पाएगा। क्योंकि आप ये ध्यान करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको अपनी ऊर्जा, ताकि भाई काम तो बहुत सारे हैं, आज का युवा वर्ग भटक रहा है क्योंकि उसका भटकाव है वो डिस्ट्रेक्टेड माइंड के द्वारा, उसका माइंड उसको बहुत डिस्ट्रेक्ट करता रहता है, तरह तरह के विचार आते रहते हैं। तो यदि वो फोकस रहे और ध्यान करते रहे जीवन में प्रतिदिन, तो निश्चित ही जब वो फोकस माइंड में रहेगा तो भटकाव जो उसको भटकाते हैं उससे वो कम दिग्भ्रमित होगा वो,
0: जी जी,
1: और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा पाएगा वो।

0: मेरा यही कहना है कि भाई उनको बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए, और ऊर्जा कहाँ पर कैसे लगाना है, कितनी लगाना है, ताकि ऊर्जा तो आपको निश्चित ही लगेगा हर चीजों में। यदि आप गलत डायरेक्शन में एनर्जी लगा देंगे तो थक जाएंगे बहुत जल्दी, जहां लगाना वहां आप नहीं लगा पाएंगे।
1: जी जी जी
0: है ना
1: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में भी कुछ महिलाएं होती हैं जो गृहस्थ महिलाएं होती हैं, कुछ महिलाएं कामकाजी होती हैं, और कुछ महिलाएं गृहस्थ और कामकाजी दोनों होती हैं। और जब हम योग और आसन और प्राणायाम और ध्यान की बात करते हैं, तो इसका जो लाभ,

0: पाएंगे तो निश्चित ही फायदा होगा इस चीज का।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में चले उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि हम ध्यान और योग की बात करते हैं तो इसमें हमारा खान पान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो योग और ध्यान से जुड़े खान पान की आदतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: नहीं बिल्कुल, जैसे हम खान पान के विषय में हम कहते हैं कि जो सात्विक भोजन है, तामसिक भोजन है, राजसिक भोजन है, तीन तरह के भोजन को हम आयुर्वेद के हिसाब से बांटते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं अपने जीवन में तो जो आप योग अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो इसका जो प्रभाव है कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। यदि आप तामसिक भोजन कर रहे हैं, राजसिक कर रहे हैं, तो फायदा तो होगा लेकिन फायदा होने की जो प्रायिकता कम हो जाएगी आपकी। लेकिन यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण करके आप योग अभ्यास कर रहे हैं तो उसकी फायदा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से ही मेरा कहना है कि सात्विक जो भोजन होते हैं, हल्के भोजन होते हैं, आप वो करें अपने जीवन में, निश्चित ही उस सब चीजों से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा।
1: जी जी, बहुत अच्छी और लाभकारी जानकारी अभी डॉक्टर साहब आपने दी है। तो श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी से, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा एनाटॉमी एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर मृत्युंजय जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं एक बार पुनः आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आकाशवाणी ने आज मुझे इस कार्यक्रम के बुलाया और उन्होंने मुझे इस चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसलिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आकाशवाणी रायपुर का, धन्यवाद।
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए, नमस्कार।

समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे योग और ध्यान का महत्व रोगों से बचने विषय पर। डॉक्टर मृत्युंजय राठौर से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे, भेंट करता थे रमा शंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं बातों बातों में, इसमें सुनिए 1 जुलाई से लागू होने वाले वीबीजी रामजी योजना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा से ली गई भेंटवार्ता, प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की है।
1: श्रोताओं नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साथ

0: साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, आगामी 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ सहित देश भर में विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना यानी VBGRAMJI लागू होने जा रही है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। श्रोताओं, इस योजना के हर पहलू पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा। उप मुख्यमंत्री जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण, जिसे VBGRAMJI के नाम से ज्यादा जाना जाता है, यह योजना 1 जुलाई से लागू होने जा रही है। इस योजना की विशेषताओं के बारे में बताएं।
1: सिर्फ रोजगार पर आधारित ना होकर रोजगार के साथ साथ आजीविका पर आधारित होना, आजीविका के लिए आवश्यक कौशल उन्नयन भी इसमें समाहित होना, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सिर्फ रोजगार अर्थात एक दिन कोई व्यक्ति आए और काम करके अपनी दिहाड़ी पक्का कर वापस चला जाए, यह कहीं गया नहीं है। यह प्रावधान अभी भी है। इसके साथ ही साथ उसका कौशल उन्नयन के लिए हम काम कर सकते हैं क्या, और कौशल उन्नयन के लिए आवश्यक जो प्रशिक्षण है उस पर काम कर सकते हैं क्या, साथ ही साथ गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन सारे ही विषयों को समाहित करके गांव के समग्र विकास के लिए जो योजना लाई गई है वही VBGRAMJI है। निसंदेह इसका लक्ष्य 2047 तक, जब समूचा देश निसंदेह दुनिया में आगे बढ़कर अग्रिम पंक्ति पर खड़ा होगा, तब हमारे गांव भी उसी दिशा में उसी तर्ज पर उसी आधार पर आगे रहे, इसलिए हम इस योजना के लिए काम करते हैं। इनकी विशेषताओं के संदर्भ में आप कहें तो इन मूल विशेषताओं से अतिरिक्त कुछ और भी विशेषताएं, जैसे इसमें हम 125 दिन का समय दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर ही लोगों को रोजगार देने की गारंटी दी गई है। उस समय पहले 15 दिन हुआ करते थे। इसमें भुगतान के लिए भी व्यवस्थाएं वैसे ही की गई हैं। काम ढंग से हो इसके लिए अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसको मॉनिटरिंग करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी बनाए जा रहे हैं, तो इस लोकल बॉडीज जिस पर काम करेंगी तो एक जो अपेक्स बॉडी होगी वो उस पर डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी भी रख सकती है कि काम जो हो रहे हैं वो वस्तुतः होने चाहिए। कालांतर में धीरे धीरे हो क्या गया था कि मनरेगा के माध्यम से होने वाले कामों में हम देखते थे कि गुणवत्ता गौण हो गई थी और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं था, इसलिए इस बात की आवश्यकता हो गई थी कि अगर पैसे गांव के विकास और गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लग रहे हों तो उसका परिणाम निकलना चाहिए। विषय को परिणाम उत्पादक बनाने के लिए विशेष रूप से मनरेगा से आगे बढ़कर VBGRAMJI, यानी कि मनरेगा गांधी जी के नाम पर था और गांधी जी भगवान राम को मानते थे, तो गांधी जी के साथ अब हम गांधी जी के विचारों पर आगे बढ़े हैं, गांधी जी की मान्यताओं पर आगे बढ़े हैं, ये VBGRAMJI है
0: जी। बिल्कुल, इसी को ही हम थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि यह योजना मनरेगा का स्थान लेगी, मनरेगा से ये किस तरह से बेहतर है VBGRAMJI योजना, और इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी नए रूप में?
1: मनरेगा में धीरे धीरे गुणवत्ता गौण हो गई थी, कार्यों की गुणवत्ता नहीं हो पाती थी और एक परिपाटी सी बन गई थी कि उसमें क्या करना है। आज हम और अधिक इसको स्ट्रांग मॉनिटरिंग के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बेस्ड मॉनिटरिंग के थ्रू अनेक ऐसे डिजिटल चेक पॉइंट्स इस पर बन रहे हैं जिसको क्रॉस करना बिना गुणवत्ता के संभव नहीं हो पाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके हम इसके अपेक्स बॉडी में एक डैशबोर्ड की कल्पना भी कर रहे हैं जिसके माध्यम से किए हुए कामों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस तरह से निसंदेह गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा जी। मिट्टी आधारित ही काम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम गांव में होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ कन्वर्जेंस इसमें बहुत सरल कर दिया गया है, तो अन्य मतों से इस मत को मिला करके गांव के डेवलपमेंटल काम के लिए इसका उपयोग किया जाना यह भी सरल हो गया है। इसमें इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि सिर्फ आजीविका ही नहीं रोजगार पर भी इस पर फोकस है, इसलिए VBGRAMJI अधिक मूल्यवान मुझे लगता है और अधिक प्रगतिशील विचारों के साथ है
0: जी। आपने रोजगार की बात की, तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, कई बार लोग वहां से पलायन करते हैं रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर, किस तरह से VBGRAMJI उस पलायन को रोकने में सहायक साबित होगी और

0: ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उससे उनको इस योजना से कितना लाभ पहुंचेगा, रोजगार के लिए कितनी बड़ी भूमिका ये निभा सकती है ग्रामीण क्षेत्रों में?
1: एक बात मैं व्यक्तिगत तौर पर और पंचायत विभाग के मंत्री होने के नाते भी इस बात को कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे यहां से जो श्रमवीर हैं वो कहीं जाकर के निर्माण कार्य करते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको गलत नहीं मानता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ के ताकत पर पुणे, बंबई, नागपुर, दिल्ली, लखनऊ ऐसे अनेक शहर आबाद हुए हैं, बढ़े हैं, उन्नयन हुआ है उन शहरों का, इसमें छत्तीसगढ़ की ताकत लगी है। ये एक अलग मसला है आज के समय में। इसके साथ साथ एक अलग मसला जो गांव में लोग हैं, उन गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ उनको दैनिक रोजगार भी मुहैया हो जाए, इसके लिए पुराने योजना से एक कदम आगे बढ़कर वीबीजी राम जी उपयोग आने वाला है। इसमें भाव ठीक हुआ है, पुरानी योजना में गुणवत्ता गौण हुई थी और उस पर यह हमेशा सोचा जाता था कि ठीक है नरेगा है तो ऐसे कर लिया जाएगा। अब इसको स्पष्टता हो गई है, इसमें राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बढ़ाने के साथ साथ ये गांव में इस बात के इस भाव के साथ काम करना प्रारंभ हो गया है, हो जाएगा कि हमारे गांव की उन्नति का आधार कोई है तो ये इसी योजना के माध्यम से आने वाला है। तो अच्छे भावनाओं के साथ जब काम होगा तो रोजगार भी उपलब्ध होगा लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा।
0: जी, अब हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस योजना के नाम की शुरुआत में ही दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, विकसित भारत। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यह संकल्प है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, यह जो योजना है वीबीजी राम जी, वो इस लक्ष्य को पाने में किस तरह से भूमिका निभाएगी? क्योंकि भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, आज भी एक बड़ी संख्या वहां पर निवास करती है। तो आपने कहा कि मनरेगा में वो गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता था, इसमें किस तरह के काम सृजित किए जाएंगे, किस तरह के काम होंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका निभाएंगे और फिर वो ग्रामीण क्षेत्र विकसित भारत को बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे?
1: 3,300 करोड़ का प्रावधान केंद्र ने किया है और उसके संगत बजट छत्तीसगढ़ सरकार भी आगे बढ़ा लेगी, ऐसा आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दे दिया है। इस तरह से मैं कहता हूं कि एक बड़ी राशि हमारे पंचायतों के विकास कार्यों के लिए हमको उपलब्ध हो जाएगी। इसमें 12 मासी सड़कों का भी उल्लेख है, इसमें आप बिल्डिंग भी बना सकते हैं स्कूल के, इसमें आप किचन शेड बना सकते हैं, गांव के लिए आवश्यक जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए है उन सारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें अनुमेय किया गया है। तो गांव की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता इसमें पूर्ण कर सकते हैं, रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस भी कर सकते हैं। तो ऐसी एक योजना जिसके माध्यम से गांव के इन सारे ही चीजों को किया जा सके, ये वीबीजी राम जी है। ये निसंदेह विकसित भारत की संकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए ये योजना आई है। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पहली योजना प्रारंभ में बिल्कुल ठीक थी, परंतु कालांतर में उसके प्रति जो भाव आ गया था उसमें परेशानी हुई थी।
0: एक बात और है उपमुख्यमंत्री जी, योजनाएं बनती हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि धरातल में क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और वो कमी होती है निगरानी की वजह से, कि मॉनिटरिंग की कमी रहती है। इस योजना के, वैसे आपने बताया कि डैशबोर्ड इसमें बनेगा, निगरानी, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं कि किस तरह से प्रशासनिक कसावट लाई जाएगी निगरानी के संदर्भ में, ये हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा विस्तार से बताएं।
1: प्रत्येक पंचायत में का एक QR कोड होगा जी। आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो उस पर्टिकुलर उस पंचायत के माध्यम में बीबीजी राम जी के माध्यम से जो भी कुछ होने वाला है वो डिटेल हाथ में आ जाएगा। हर एक आदमी के हाथ में पूरी जानकारी होगी, किसी को मैंने सूचना का अधिकार का आवेदन लगा करके घूमने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सबके सामने हो जाएगी। इसमें हमारे सारे ही 11,600 से अधिक पंचायतों में एक साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके लिए पर्याप्त सूचना सबको पहुंच जाए, इस संदर्भ में ग्राम सभाएं करना और दूसरे ही माध्यमों से आगे बढ़ाना इसको कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग, इसकी चेकिंग होगी, लेकिन जब हम पाम्फलेट, बैनर, पोस्टर, ग्राम सभाओं के माध्यम से विषय को आगे बढ़ाए हैं तो जनता के मन में भी और जनता को भी ये स्पष्ट हुआ है कि इसके माध्यम से क्या क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। जब जनता की नजर होती है कहीं पर तो फिर वो पारखी नजर सब कुछ स्पष्ट कर लेती है

और जनता की नजर इस पर रहे, हर एक काम पर रहे, हर एक विषय पर रहे, इसी के लिए बहुत प्रचार इस विषय का किया गया है। अभी विगत 24 तारीख को पूरे ही प्रदेश में एक साथ ग्राम सभा का आयोजन करके ग्राम सभा के बीच में इस विषय को विशेष रूप से, पहला विषय था वीबीजी राम जी, उस ग्राम सभा का पहला विषय था, उस पहले विषय के साथ इस सारा जनता के बीच में रखा गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मॉनिटरिंग होगी, डैशबोर्ड के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी, अनेक जो नरेगा के एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉयज को इसमें समाहित करते हुए उनके माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। इन सभी के से इतर

0: एक चैटबॉट बना रहे हैं, सीधा गांव वाले उसमें बातचीत कर करके वीबीजी राम जी के बारे में सारी चीजें समझ लेंगे। एआई बेस्ड चैटबॉट होगा। इसके साथ ही साथ क्यूआर कोड का मैंने विषय आपसे बताया, गांव में जो भी काम चलेंगे क्यूआर कोड के माध्यम से उसको जाना जा सकता है। हर एक गांव का एक स्पेसिफिक क्यूआर कोड इसके लिए बनाया गया है। साथ ही साथ समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आने वाले समय में 1 तारीख के बाद जब ये हमारे प्रदेश में पूर्णतः लागू होगा, मैं अनेक ऑनलाइन सेशंस इसके बारे में करूंगा। अनेक ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को इसमें जोड़ा गया है जिनके माध्यम से भी लोगों तक ये चीज पहुंचे, पंचायतों का ये विषय पहुंचे, यह भी किया गया है। पंचायतों के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनकी समझ बड़ी पहुंच पंचायतों के लिए है, उनको भी आग्रह किया गया है ये करेंगे। मैं स्वयं ही सभी संभागों तक पहुंचकर वहां पर जनप्रतिनिधियों से मिलकर इस विषय को रखूंगा। इस तरीके से मैं सोचता हूं कि ये विषय शीघ्र ही गांव गांव तक पहुंच जाएगा और गांव गांव तक बीबीजी राम जी की महत्ता को समझ करके लोग निसंदेह अपने गांव की उन्नति के लिए काम करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग काम की ठीक हो इसके लिए भी ध्यान रखेंगे।
1: उप मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम के अंत में हम चाहते हैं इस योजना को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, क्योंकि मनरेगा के स्थान पर जब इसको लागू किया गया कुछ तो भ्रांतियां हैं और कुछ भ्रांतियां कुछ तत्वों द्वारा जानबूझकर भी फैलाए जाने की कोशिश की गई है। तो क्योंकि बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुन रहे हैं, आकाशवाणी के माध्यम से आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, बीबीजी राम जी को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
0: मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, जैसे भारत देश हमारा है और भारत देश के अंदर हमारा छत्तीसगढ़ है, मतलब एक सबसेट है, एक बड़े सेट के अंदर एक सबसेट है, ऐसा ही बीबीजी राम जी है। उसमें नरेगा का कोई छूटा नहीं है, नरेगा पूर्ण रूप से इसमें है, उसके साथ साथ कुछ अन्य चीजों को जोड़ा गया है। तो नरेगा के माध्यम से जो कुछ हो सकता था वह इसमें हो ही सकता है, साथ ही साथ कुछ अन्य विषयों को भी इसमें जोड़ा गया है। तो अगर एक्सपेंशन होता है, बड़ा कोई चीज होता है, तो उसमें डरने घबराने या परेशान होने की कोई बात किसी के मन में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपके पास उपलब्ध चीजें थी पहले, प्रावधान जो आपके पास उपलब्ध थे, वो सारे प्रावधान तो अभी भी हैं। इसके साथ साथ कुछ और प्रावधान है, तो कुछ और प्रावधान है वो आपकी भलाई

मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के साथ हमारी यह बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। सुबह के 9:15 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फिल्म मनपसंद के गीत से। स्वर लता मंगेशकर का है, शब्द रचना अमित खन्ना की और तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने।

0: सो जा बेटी,
1: खुशी
0: बहुत रात हो गई है।
1: मिली कैसी?
0: हाँ हाँ ठीक है, कल सुन लेंगे।
1: बिना रुके सिना रुको
0: कमली मान।

आश भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म खुदा कसम का गीत अभी आपने सुना। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है फिल्म दिल लगी का गाना। नगमा निगार हैं योगेश और मौसिकार हैं राजेश रोशन। इस गीत में आवाज लता मंगेशकर की है।

कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है फिल्म दिल लगी का गाना। नगमा निगार हैं योगेश और मौसिकार हैं राजेश रोशन। इस गीत में आवाज लता मंगेशकर की है।

फिल्म मवाली सुपरहिट रही, जिसमें कॉमेडी, रोमांस, पारिवारिक भावनाएं, दमदार अभिनय और कर्णप्रिय संगीत इस फिल्म की पहचान रही। तो आइए जानते हैं इस यादगार फिल्म की कुछ दिलचस्प बातें। मवाली फिल्म का निर्माण जी हनुमंता राव ने किया था और निर्देशन किया था के बापिया ने। ये उस दौर की बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्मों में शामिल रही।

वाह क्या खूब गीत था। श्रोताओ, मवाली की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है इसका संगीत। फिल्म का संगीत दिया था हिंदी फिल्म संगीत की जाने माने नाम बप्पी लहरी ने। उस दौर में बप्पी दा के संगीत का जादू हर ओर छाया हुआ था। इस फिल्म के गीतों में मधुरता के साथ साथ जोश और मस्ती भी भरपूर सुनाई देती है। गीतों को स्वर दिए हैं किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म मवाली के गीत और इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। फिल्म मवाली के गीतों की रचना इन दिवर ने की थी और संगीतकार थे बप्पी लहरी। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए जितेंद्र, श्रीदेवी, जया प्रदा, कादर खान, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, असरानी और अरुणा ईरानी। इस फिल्म में जितेंद्र की दोहरी भूमिकाएं थी। हर कलाकार ने अपने किरदार को इतने जीवंत ढंग से निभाया कि फिल्म आज भी दर्शकों को पसंद आती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक के इर्द गिर्द घूमती है जो परिस्थितियों के कारण लोगों की नजर में मवाली कहलाता है, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी, इंसानियत और अपने परिवार के प्रति गहरा प्रेम होता है। कहानी में गलत फहमियां हैं, हास्य है, रोमांस है और अंत में सत्य की जीत का संदेश भी है।

0: कुकुरु कुकुरु झोपड़ी में हा चार भाई, अरे मानुष बिना।
1: श्रोताओं, फिल्म मवाली केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये भी बताती है कि किसी इंसान का मूल्य उसके पहनावे या नाम से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होता है। यही संदेश इसे आज भी प्रासंगिक बनाता है। फिल्म में कादर खान के संवाद, असरानी की कॉमिक टाइमिंग और शक्ति कपूर का अंदाज दर्शकों को भरपूर मनोरंजन कराता है। तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म मवाली से सुनिए।

एक ही फिल्म से। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म मवाली पर। मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात

0: 156 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:55 होने को हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने और बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में समान नागरिकता संहिता UCC लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में सदस्य के रूप में IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी MK राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को शामिल किया गया है। यह समिति छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। इसके अलावा विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण संबंधी विषयों पर UCC के लिए सुझाव देगी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांवों में सामुदायिक भवन, चौक चौराहों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा। साथ ही जिन स्थानों पर नक्सल हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहां उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। यह बात उन्होंने कल कांकेर में नक्सल पीड़ित परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात के दौरान कही। श्री शर्मा ने इस मौके पर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। अपने कांकेर प्रवास के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों के साथ बैठक कर नक्सल मुक्त बस्तर के विकास में समाज की भागीदारी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति और विकास के लिए सामाजिक सहयोग जरूरी है। बैठक में पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन, आदिवासी संस्कृति और देव स्थलों के संरक्षण पर भी चर्चा हुई। श्री शर्मा ने बताया कि 197 गांव के देवस्थलों का राजस्व रिकॉर्ड में चिन्हांकन किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर पहुंचकर रेलवे परियोजनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने कहा कि रावघाट रेल परियोजनाओं का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, शेष बचे कार्यों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रावघाट तक रेल संचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि रावघाट परियोजना के बाद जगदलपुर तक रेल लाइन विस्तार की प्रक्रिया भी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। निरीक्षण के दौरान उनके साथ रायपुर रेल मंडल के DRM दयानंद सहित रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पत्र सूचना कार्यालय PIB रायपुर की ओर से आज जगदलपुर में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष, नक्सलवाद से विकास और विश्वास की ओर बढ़ता बस्तर रखा गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू होंगे। अध्यक्षता बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप करेंगे। कार्यक्रम में बस्तर संभाग के वरिष्ठ पत्रकारों की सहभागिता रहेगी। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी विषय विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। वे बस्तर क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना के विस्तार, सुरक्षा और विकास के समन्वित प्रयासों तथा विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में बस्तर की भूमिका पर अपने विचार साझा करेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में शामिल प्रदेश के करीब 1000 विशिष्ट जनों का दल 5 दिवसीय यात्रा के बाद रायपुर लौट आए। रायपुर रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सम्मान से विभूषित हस्तियां, कलाकारों, साहित्यकारों, संस्कृत कर्मियों, समाजसेवियों ने सहभागिता की। प्रतिभागियों

प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन कर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है।

0: एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आजीचू सगा। आज इसमें सुनिए डॉक्टर अखिलेश कुमार त्रिपाठी से ली गई भेंट वार्ता। बातचीत कर रहे हैं बलबीर सिंह कच्छ।
1: आजीसो सगा ये कार्यक्रम सुन तो सप्पा है भाई बहन मन की खूबे खूबे सेवा जोहार। जसन की आपन मन सुनसास जानसास कई कसन बल ने कई बोले क्षेत्र ने ख्याति प्राप्त जानकार असन भाई बहन मन संगे गोट बात करूँ से जे चुले काय की आम के कई असन बल ने काय की प्रेरणा बल मेरे से सीख बल मेरे से और कई चीज चो संरक्षण और संवर्धन काजे आम चु मन बल्ले होय से ये हिसाब ने आमी ये कार्यक्रम ने गोट बात करूँ सुनाओ से तो आज ही आमता ने बल्ले ने सगाईला से मैं होनी मंचो बल्ले ने कहा कि टोन ले उन मंचो परिचय जाने दे सब ले आगे तुम चो नाव आरु गांव चुनाव के साथ।
2: मुझे नाव डॉक्टर अखिलेश कुमार त्रिपाठी है। मैं ककनार गांव ने जन्म ले और होता है प्राइमरी स्कूल ने पढ़ून भात ले फिर मिडिल स्कूल छिंद बाहर ने पढ़ ले उतले फिर पढ़ाई का जे धर्मपुरा कॉलेज गेले और धर्मपुरा कॉलेज ने पढ़ाई पूरा कर लो उपरांत फिर मैं ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय गेले उन सब के उतर से पढ़ाई पूरा करूँ बातले तब बस्तर इलो दाए मुझो नौकरी लागली और फिर मैं नौकरी करूँ मोरियाले 1993 ले।
1: अच्छा।
2: और तेबले धरून एब तक मैं व्याख्याता जो पद ने कार्यरत से।
1: अच्छा तो अखिलेश त्रिपाठी संग जैसे कि तुम चो जो पढ़ाई चो पोस्ट ग्रेजुएट ने काय विषय रली जाले
2: मैं पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी ने कर ले।
1: अच्छा।
2: और 1996 ने कर ले मैं पोस्ट ग्रेजुएट
1: 1996 ने।
2: हाँ उदल दाए बल्ले मुके पीएचडी कर तो खूब इच्छा रली मानतर उसन उदलदा ये ता हम चो विश्वविद्यालय नहीं रली हमें रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर ले संबद्ध कॉलेज ने पढ़ते रलू मैं उदलदा जमाए गुरुजी मन के तेता प्रोफेसर मन के पूछूं दखले मानतर हुन मन सांगला कि ये खूब कठिन सब्जेक्ट आए।
1: अच्छा।
2: तो ये बे ताले न्यू हो सके और तु गाँव कर या पिला तु कहाँ ले कर उन भात ले उतर पढ़ाई कर से फिर खिंडिक मुरुस ना लागली मानतर फिर असन मौका इली फिर मैं हम चो एता बस्तर विश्वविद्यालय खुल ली और फिर मैं होता पीएचडी कर ले।
1: अच्छा। अच्छा अखिलेश सांग जैसन की बोले तू चो बोले ने जन्म ले पीला बेरा ले बोले ने उठो को रुचि बोल रहे से बोले ने काय चीज ने ज्यादा तुझे रुचि रही जा ले
2: देखा असन रुचि चो पूछ लो ने असन आसे कि मैं शुरू ले एकदम

0: बनचो तैयारी कर तो ने सबले जरूरत चीज आए होना है अंग्रेजी। और मैं फिर इता गांव कर याने मैं गांव बाट पढ़ू रले तो मचो अंग्रेजी कमजोर रली।
1: अच्छा
0: हुन चो लागन ने होता मचो सिलेक्शन ना होली।
1: अच्छा
0: हुनी पछता मचो इता फिर टीचरशिप ने होली तो फिर मैं ये ता नौकरी करूँ मुरियाले।
1: अच्छा हाँ हाँ चलो ये बोल तो बढ़िया ही है। और जैसन कि बोले ने एबे तुम्हें जैसन कि पीएचडी जैसन कर ला बोले जो सब्जेक्ट विषय काय रही जाले।
0: सबले पहले मैं खिंडिक पीएचडी चो ऊपरे सांगू चाहे से।
1: हाँ हाँ
0: जैसन कि प्राइमरी स्कूल हो से प्राइमरी स्कूल चो सबले बड़े डिग्री हो से सबले बड़े कक्षा हो से पांचवी
1: पांचवी।
0: मिडिल स्कूल चो सबले बड़े कक्षा हो से आठवीं और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल ने बारहवीं हो से। फिर कॉलेज ने पढ़ू गेलो ने कॉलेज ले जो सबसे बड़े जो डिग्री हो से हुन एम ए हो से नाले एम एस सी हो से नाले एम काम हो से उसने विश्वविद्यालय ने पढ़ू गेलो ने ये दुनिया चो कोनी बल विश्वविद्यालय हूँ चो नाम है विश्वविद्यालय। तो ये विश्वविद्यालय जो सबले बड़े डिग्री हो से हुन हो से डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी उनके पीएचडी बोलुआ।
1: अच्छा
0: तो ये पढ़ाई पूरा कर लो ने अपन बोलुक सकू कि नहीं हाँ ये पूरा जितरो बल पढ़ाई आसे उन पढ़ाई के
1: मैं कर ले
0: मैं पूरा पढ़ ले। ये पीएचडी जो पढ़ाई जौन हो से ये छः बरख ले धरून आठ बरख तक लागे से।
1: अच्छा
0: ये जो पूरा कोर्स कंप्लीट कर तो ने और ये इतरो अच्छा पढ़ाई हो से कि आप कोनी बोले असन विषय के जो ऊपरे जौन विषय ने जौन हम चो देश दुनिया समाज का जे अच्छा प्रभाव पड़तो बीती मन कारण हुए से उन चो ऊपरे हमके पढ़ाई करतो उता पढ़ाई करतो का जे हम हमके सुविधा मिले से।
1: अच्छा
0: तो मैं जैसन कि आप मन के पूरे सांगले कि मैं 1996 ने मैं पीएचडी करतो वाट मचो कर तो मन करते रली मानतर खूबे बड़ी पढ़ाई है तो मैं रायपुर जाऊन भातले पढ़ूक नहीं सकते रले। और सन 2000 ने एता बस्तर विश्वविद्यालय खुली फिर 2012 ने एता चो हम चो जमाए पूरा बस्तर संभाग चो जमाए पीला मन का जे खूब बड़े गर्व चो विषय है कि हम चो बस्तर विश्वविद्यालय जेके बे शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बोल सोत हुन हुता पीएचडी चो पढ़ाई शुरू होली। तो हुन पीएचडी चो पढ़ाई ने फिर हमके सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट ऊपर करुआस असन हम खुद के होता जोन छात्र रहे से हुनके खुद के होता विश्वविद्यालय के सांगो पढ़े से।
1: अच्छा
0: कि तू चो तु काय विषय ने करु चाहेसिस। तो मैं फिर एता मैं कक जसन के आप मन के पूरे सांगले मैं ककनार ने जन्म ले मुचो जब मैं संगवारी मन बोले होता है चो गांव अप करे चो पीला मन हर संगे हमें बाढ़ लू और एबे मैं हूनी हम चो गांव चो ले खेंडिक दूर ले मचो व्याख्याता पद पे मैं कार्यरत बला से।
1: अच्छा
0: जसन की हल भी होली हल भी मचो एक दूसर मातृभाषा रली। मैं पीला बेरतले हल्बी चो पूरा जमाए हल्बी ने हमें गोट्याते रलू। और ये बेबल में चूंकि व्याख्याता चो पोस्ट ने आसे तो ये बेबल मचलक पीला मन ऐसोत पढ़तो काज बले हुआ तो हुन पीला मन संगे में हल्बी ने गोट्यालो ने और गांव पारा ने बल को कि बोले हल्बी ने गोट्यालो ने मैं असन मुके असन लगते रली कि आज ही ले 30 बरख पहले जोन हल्बी हम ही बोलते रलू और आज ही जोन हल भी हम ही बोलू से हूं चो बिल्कुल एकदम
1: फरक लागे
0: से। फिर मैं खूब सोचून देखले हम चो जोन गाइड रला हूं डॉक्टर योगेंद्र मोती वाला संग तो मैं खूब सोच ले तो फिर मैं फिर उनके आप लोग सर के सांग ले आप लोग गाइड के कि सर मैं भाषा ऊपरे बोली के ऊपरे करुक चाहे से।
1: अच्छा
0: तो फिर हुन मन पूछले मके काय बोली ने काय भाषा ने मैं बोले कि जैसन कि आज़ादी ले पूर्व 1947 ले पूर्व हम चो बस्तर रियासत चो राजभाषा रली हल्बी और हुन हल्बी एबे बिल्कुल एकदम

0: खत्म होते जाए से और हुन काय करुन उसन खत्म हो से और काय करुन हुनके जसन जोन की हम जो राजभाषा रली और राज्य हुन जो बोल तो भी तमन कसन कम होते जाए सोत हिंदी ने बोलुक मुर्यासोत अंग्रेजी बोलुक मुर्यासोत तो हुन हुन काय कारण ने असन हो से हुन काय कारण ने कमती पड़े से उनके तो फिर हम जो सरबल बोल लो नहीं खूब अच्छा तू टॉपिक के विषय के धर लीसिस होता आगे बढ़ फिर मैं मुझे टॉपिक होता जौन शीर्षक रली उन हल्बी बोली ने अन्य भाषाओं का प्रभाव
1: अच्छा
0: कि हुन कसन करुन हल्बी हमचो मिश्रा होए से कसन सरते जाए से शुरू ने मिश्रा हुआ है फिर सर हुआ है
1: अच्छा।
0: तो हुन चो पूरा डॉक्यूमेंटेशन करतो का जे मैं सर के सांगले फिर हुन मन मोके करतो का जे अनुमति दिला
1: अच्छा तो बोलो बे ये जसन की पीएचडी कर तो काजे जसन की तुम्हें अनुमति फिर उनचो जन प्रक्रिया है बोलो बे बोले न कसन कसन हो से आगे काय काय चीज चो बोले न काय की तुमके डॉक्यूमेंटेशन करो पड़े से काय प्रस्ताव बनाओ कुलाए पड़े से
0: सबले पहला विश्वविद्यालय ले एक सूचना जारी हुआ है और हुन चो फिर प्रवेश परीक्षा होए से तो होता पूरा हम जो पूरा भारत देश जो पीला मन होता है अप्लाई करवात
1: अच्छा
0: होता फार्म भरवात तो हुन जो प्रवेश परीक्षा होए से तो हुन प्रवेश परीक्षा ने विश्वविद्यालय धरवाए हुन प्रवेश परीक्षा के पास कर लो बोल लो ने फिर इंटरव्यू होए से
1: अच्छा
0: तो हुन इंटरव्यू के इंटरव्यू बल पास कर लो बोल लो ने फिर हमके हुन मन पीएचडी ने हम जो एडमिशन धरसोत
1: अच्छा
0: ये बीच ने हमके हम चो छः महीना चो कोर्स वर्क हुए से छः महीना पूरा उता कॉलेज जाओ पढ़ुआ फिर पढ़ तो का जो मतलब जसन आगे पढ़ लूँ से उसने फिर क्लास व्लास सब लागू है
1: अच्छा
0: और हुन छः महीना चो पढ़ाई चो मजारे होता जसन कि पीएचडी के जो विषय भाषा बोली उनके कसन लिखुआत उनके हमके कसन उनके इकट्ठा कर तो रहे ये जमाए चो जमक मन के सांगुआत सिखुआत और ये बीच ने फिर हमके जितरो बले इता जो उसन पुस्तक मन रहे से लेखक मन रसोत और जूना लोग मन रसोत हुन मन चो सब संगे भेट घाट करून हुन मन संग रिपोर्ट बनाऊन भात ले हमें आनून भात ले अपलो इता गाइड लगे सबमिट करूं से तो फिर हुन जमा चीज आज ओके होली बोल लो ने हुन फिर विश्वविद्यालय ने हुन के दे हुआ है
1: अच्छा
0: हुन चो पाठ हम चो रजिस्ट्रेशन हो से
1: अच्छा
0: हुन चो रजिस्ट्रेशन होलो पार्ट कुती फिर हमी हम चो हमके विषय अलर्ट हो हुआ है
1: अच्छा
0: कि ये विषय ठीक आसे तू ये विषय ने करतो काजे सक्षम आसीस तो हुन छः महीना चो पूरा काम कर लो के चो ऊपर फिर गोटक परीक्षा होए से
1: अच्छा
0: हुन परीक्षा के पास कर लो बोल लो ने फिर हम चो मन चो विषय जैन विषय हमी बोलते रहूं हमी चाहूं से हुन विषय हमके दे हुआ
1: अच्छा
0: हुन चो पार्ट फिर छः महीना चो पाठ कुती फिर असन हो ऐसे कि ये हम चो इंडिया ने जितलो बले बोली भाषा ऊपरे जितरो बले संस्थान मनासोत जसन भारतीय भाषा संस्थान मैसूर आसे और इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक आसे हम चो हिंदी चो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा आसे और खूब और असनी असनी खूब संस्था मन ने जाऊन भात ले होता जो जमाए लेख मन के पढ़ु को लागू है और हुन मन संगे होता सेमिनार मन हो से होता खूब सारा चीज मन हम दिया सिखाते चिरो बात
1: अच्छा
0: फिर हुन सब के सीखून बात ले फिर रहता है हुन सब जो डॉक्यूमेंटेशन करुक लागे से हुन चो पाठ कुती फिर हम चो जितरो जौन विषय रहे से हुन विषय ऊपरे सर्वेक्षण करुक लागू है कि आजीले 20 साल पहले 25 साल पहले 30 साल पहले उन कसन रली और आजी कसन आसे
1: अच्छा
0: तो चूंकि मैं पीला बेरत ले हल भी मैं जाने से ची बोले से ची तो मौके खूब अच्छा ये कार्य कर तो मेरा खूब अच्छा लगते रली
1: अच्छा।
0: मैं कहूँ कि संग कोची लगभग गेलो ने होता मैं हुन मन के एकदम पुराना हल भी ने गोटियाते रले तो हुन मन फिर

0: हिँडखरी खोतेर
1: कि
0: बाबु तु कसन एकदम सियान मन्चो असन हल्बी गोट्या आजकल चो लेका पिला मन तो बिल्कुल उन अंग्रेजी हल्बी गोट्या हुआ था। तो फिर हुन पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर ले, डॉक्यूमेंटेशन करते न उन पूरा ये काम ने 6 बरख लागली।
1: अच्छा,
0: 6 बरख ने गुलाय बाट भूलून भूलून ये उन हल्बी चो बोली कसन पूरे एकदम बाढ़ते होते रहली और एबे कसन कम होते जाए से उन सब चो डॉक्यूमेंटेशन कर उन फातले। फिर एता यूनिवर्सिटी ने अपलो विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत कर ले और हुन चो पाठ कुती फिर मोके ये 22/11/2022 के जो के डिग्री मिल ली।
1: अच्छा, तो अखिलेश दक गोड बात तो कर तो अच्छा लागे समांतर बोले ने तू खेने का आगत ले बोलो पीला बिराले हल भी जो गोट है गोट बात है कि तू जानते चल लीस मंतर तेबले बोले कहीं असन 6 साल लागली बोल सी कहीं परेशानी ये चुकर तो काजे कहीं असन मन ने कई बोला असन हुआ है कि झंझट ने का है लागे से असन चीपा बोली उकसा इसके
0: सत्य बोल रहे तुम्हें ये जसन की मैं एक गोटुक ती जसन हो ऐसे दख तो भी थी हमें गुलाय बाट दखू से और दखू से उनके हम के कहीं बल खेंडी अलग अलग नहीं लागे मानतर कनी लग कनी हुन चीज के दखून भात ले हुन चो डॉक्यूमेंटेशन करतुर हुनके तू का देखली आज 20 साल पहले कसन रही आज ही कसन आसे 25 साल पहले कसन रही आज ही कसन आसे हुनचो पूरा एकदम एकदम माइनर लेवल ने हुनचो डॉक्यूमेंटेशन करतो ने खूब हुनचो साहित्यिक भाषा ने हुन करतो ने खिंडिक परेशानी तो होए से ची और जसन की मैं आप मन के पहले सांगले कि जमा यूनिवर्सिटी और ये मंचो ने जाऊन फातले होता चो

0: लिखुन भात ले सबमिट कर तो दें, टाइम तो खूब लागू है।
1: अच्छा।
0: और परेशानी बल खूब लागू है, किच किच बल लागू है, हिर हिर बल लागू है, केवी केवी काय कर से रहो काय बल करू का मतलब आसे मानतर मुचो मान तो ये है कि हम ही मानव जीवन धरलू से तो हम चो जमाए चो और रसन मौके मौका मिलली से तो हम चो जमाए चो फर्ज हो ऐसे कि हम ही कुछ नहीं कोनी असन बूता करूं जे चोले जमा चो भला हो। जैसन कि हल भी चो ये ता हल भी ऊपर मैं पीएचडी कर ले, मैं आप मन के सांगुक चाहे से कि हम चो आज से 25 साल पहले हम चो बस्तर जिला ने ची और गोटक बोली बोलते रहला।
1: हाँ।
0: उनके बोलुआत गदबी
1: गदबी। हाँ
0: हाँ। उन चो मंत्र गदबी बोलते बिता उनको नहीं आत।
1: हाँ।
0: जमे सरला गदबा लोग मनासोत, गदबा जात चो लोग मनासोत,
1: मतलब बोलते लोग नहीं आत,
0: मंत्र उन बोली के बोलते लोग नहीं आत। और गोटक ती जसन हो ऐसे कि जसन कोनी बोली कोनी गोट कोनी भाषा ये मोरलो ने ये विलुप्त होलो ने आसन नहीं है कि गोटोक बोली भाषा मोरली थुंचो कहीं फर्क नहीं पड़े। हुंचो गोटोक बोली भाषा मोरली बोललो ने हुन बोली भाषा चो तीज त्योहार हम चो सांस्कृतिक कार्यक्रम हम चो और जित्रो बले सामाजिक स्थिति ने जसन बले हम चो बियाह बल हो ऐसे हुन हम ही हल्बी मन हल्बी बोलतो भी तमन चो गोटक बियाह चो बियाह गीत मनासे ये भी हम इधर खुशी की गुलाब डी जे बाजुक मुरियाली से। तो धीरे धीरे धीरे धीरे हुन हम गोटक बोली मोरलो ने हुन जम आए तीज मन मोरते जो हुआ और असन ने हम चो सांस्कृतिक अवसान हो ऐसे तो हुन हम चो जो बोली भाषा आसे हुन बोली भाषा के बिल्कुल एकदम मजबूत बनातोर जिम्मेदारी हम चो तो आप मन चो है ये लागन ने मैं ये हल्बी बोली के चो ऊपर डॉक्यूमेंटेशन कर तो काजे मैं वाट ले तो विश्वविद्यालय बोले सहमति दिली और फिर मैं होता पीएचडी कर ले ये भी ऐसा ना आसे कि मैं गोटक हुन हल्बी चो ऊपर जोन हो ऐसे जोन जित्रो बल डॉक्यूमेंटेशन जित्रो बल शुरू ले शुरू होली से और आज तक जैसा आसे उनके गोटक उनके 400 पेज चो पुस्तक ने लिखुन बात ले संगा उन दिलेस।
1: अच्छा।
0: ये भी कोनी बल हम चो आप चो में पीला मन बले 10 साल बाद बले पढ़ोत ना ले 1 साल बाद बल पढ़ोत उन पढ़ून जानुक सक दे कि नहीं हम चो हल भी असन रली जैसन कि मैं आप मन के सांगले गदबी तो सर ली हूं चो ऊपर तो कोनी काय ना लिखला गोटक डोकरी रली भालू डोकरी सबले पहला सबले आखरी हुनी डोकरी रली हुन मन चो गदबम गदबा जात चो लोग मन अपलो पूरा रीति रिवाज तिथि त्योहार सब ये हिंदी ने उलटला हुन मन अच्छा। हिंदी बोलुक मुरिया लाए दाए हल भी बोलुआत हिंदी बोलुआत तो हम चो बोली भाषा चो संरक्षण कर तो खूब आवश्यक आसे हुंचो संरक्षण कर लो ने हम चो खुद चो बल बाढ़ती हो ऐसे अपलो समाज चो बाढ़ती हो ऐसे और उन लागन ने हम के जमा चीज मन के हम संरक्षित रखो
1: बोलन तुम अच्छा गुट के सांगला से अखिलेश त्रिपाठी जैसन की बोली।

0: असन चीज मन के का है कि कई हालांकि पड़सत लेकिन का है कि उन मन चुमन ने असन बलन कई चीज के संरक्षण और संवर्धन कर तो काज का है कि अनुभव नहीं भय से कहीं सीख उनमन के नहीं मिले से जैसन कि जैसन आज ही तुम छो गोट तुम छो टोनलिया में सुन लूँ कि आमचू जो बोली भाषा ने बोले कहा कि आमचू जीवना का जे कितलो मजबूत साधन है बोलू बे तो ये सब चीज़ के आम के बोले ने बचाव के लाए पढ़े दे तो अखिलेश में और जानुक चाहें से कि और तुम छो जैसन प्रतिभा साहब ने कहीं पुरस्कार नहीं तो कहीं चीज असन बोले कहीं होली से
1: मैं हुन लगभग हुन आप लोग कोर्स कंप्लीट करते बेरा मैं आप लोग भारत जो खूब संस्था मन ने गेले जैसन कि भारतीय भाषा संस्थान मैसूर हुतले मौके सर्टिफिकेट मिली मैं हुता चो 15 दिन चो कार्यक्रम के अटेंड कर ले
0: अच्छा।
1: हुन गोटक बोली कसन पैदा हुए से और हुन बोली कसन बाड़े से और हुन कसन खत्म हो जाए से ये चो काय कारण से ये चो ऊपर 15 दिन चो कार्यक्रम 15 दिन चो कोर्स रली हुन के कंप्लीट कर ले हुतले मौके सर्टिफिकेट मिली
0: अच्छा।
1: इंदिरा गांधी जनजाति अंतर्राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक ने 7 दिन चो कार्यक्रम रली हुता में गेले हुता मौके पूरा आप लोग बोली भाषा चो जसन संरचना हो से हुन चो उपरे और हम चो आदिवासी भाई बहन चो जो बोली भाषा हो से हुन कसन ने शुरू हो से हुन सब जमा है के हमके सिखाला और हुतले बल मौके हुता परीक्षा बल होली उन परीक्षा के बल में पास कर ले हुतले बल मौके सर्टिफिकेट मिल ली और ये तो हम चो रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर ने बोले हम चो असनी कार्यक्रम ये बोली भाषा चो ऊपरे हो रही एवे हुता बल में गेले हुता बल अटेंड कर ले हुतले बल मौके खूब प्रशस्ति पत्र वगैरह मिल ली हम चो कॉलेज ने बोले हम चो विश्वविद्यालय ने बोले बस्तर विश्वविद्यालय ने बोले भी खूब कार्यक्रम मन होते रहुआ है ये ताले बोले मुके खूब सारा प्रशस्ति पत्र मन दिला और समय समय ने जमाए हाक देते रहुआ जाते रहूं से और ये कायम के आगे बढ़ाऊं से।
0: अच्छा तो इतलो चीज के बोलो का है कि तुम्हें बोले ने पावते गेला सारो ये पीएचडी ने बोले बोले ने सफलता मिल ली बोले ने एबे बोले तुम छो जीवना हिसाब ने बोले ने काय अपने आप के अनुभव हो ऐसे महसूस हो ऐसे
1: सबले पहला तीस तो असन अनुभव हो ऐसे कि भगवान मुके जन्म दिली माने रूप दिली तो जसन कि जब मैं जीव धरूं से फिर आप लोग रोजी आप लोग कमानी ये सब के दखू से फिर शादी ब्याह हुए से पीला झीला मन हो सोत और हम ही मोरुन जाऊं से असनी जब मैं चु जीवना हुए से मंत्र मुझे ये बात जो खूब संतुष्टि लागे से कि एबे जसन कि मैं पूरा गोटक आप लोग जीवना ने आप लोग जम्मा ये पीला झीला आप लोग घर द्वार आप लोग नौकरी चाकरी जम्मा के देखते देखते बल मैं गोटक एक्स्ट्रा काम कर ले जोन कि उन चो मौके मोचोले ज्यादा उनके उन चो लाभ समाज के मेरे थे और गुटक लिख लो भी थी तेज आज ही नहीं आज ले 100 साल पाठ कुत्ती बोले उनके 100 साल पाठे बोले कोनी बोल पढ़ दे और रसन बोल दे कि नहीं हल भी ऊपरे गुटक को तो गुरु जी है उन काम कर लो से जैसन कि मैं ये के हल भी जो ऊपरे मैं पीएचडी कर तो मेरा शुरू कर ले उदल दाए मैं खूब डगराते रह ले कि ये चो ऊपरे कोनी पहले काम करला से काय नहीं करला से तो मुके गोटक नागपुर चो गोटक माने भालचंद्र राव तैलंग गोटक नाव मिरते रली मंत्र हुन चो बल कोनी पुस्तक उस्तक ना मिरली और फिर मुके ये के कसन मतलब कसन करुन फातले में जीव पाड़े दे नाले कसन करूं एक संरक्षण करें दे ये 30 के करू मुरियाल बेरा ले और ये के पूर जब कंप्लीट कर ले उदल दाए मुके खूब संतुष्टि ये बात से मिल ली कि मैं जोन बोली भाषा ने मैं जन्म धर ले मैं जन्म बेरत ले हुन बोली भाषा के मैं बोले से हुनी हल्बी बोली ने मैं बाढ़ ले हल्बी बोली ने मैं जमायतीज कर ले और हुन बोली मुचो मुचो पूरे दखु दखु हुन बोली एकदम मिश्रित होते जाए से सरते जाए से तो हुन चो उपरे हुन चो संरक्षण करतो नु खिंडी कसन बोले मुचो योगदान होली मैं देख सकले ये के जानून फातले कि मुझे खूब अच्छा लागे से मुझे खूब हरिक बल लागू है कि आज ले कोनी

0: सौ साल बाद बोले के पढ़ दे तो समझ दे कि ना ये तो हल्बी भाषा गोटक रली और उन राजभाषा रली मात्र ऊंचो असन असन होते गेली।
1: हाँ, तो डॉक्टर अखिलेश कुमार त्रिपाठी तुम इतलो अच्छा बोले देखा आमचो जोन बस्तर चो सबले गोटोक मोर भाषा रली राजकाज ने बोले ये भाषा चो प्रयोग होते रहे हल्बी चो तू ये चो जोन हाज तो के तुम चो मन ने कसन दुख लागते रली आर एक बचा तो काजे एक संरक्षण कर तो काजे तुम्हें इतलो बोले तुम चो जीवना ने बोलू का कि समय दिलास मेहनत करलास मशागत करलास आरु बोले ने कहा कि आमचो नवा जोन एतो पीढ़ी की आए हुन मन के बचा तो संरक्षण काजे गोटोक चीना आसन बोले ने एबे बनान बाती भविष्य ने उनचो जरूर आमचो नौजवान ले का लेख मैंने पढ़ दे अध्ययन कर दे आरु आमचो जोन ये बोली की आए बोले ने हल भी बोली के बचा तो काजे पूरे यदे और तुमको खूबे खूबे जुहार
0: जुहार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजीचो सगा में डॉक्टर अखिलेश कुमार त्रिपाठी से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
6: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
8: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
11: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आज प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी लोकगीत। गायक कलाकार हैं शत्रुघ्न सिन्हा और साथी।

0: गुरुदम कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा और साथियों की आवाजों में छत्तीसगढ़ी लोकगीत।
1: हाय रे चिरैया।

0: श्रोताओं, गुरुदम कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा और साथियों का गाया छत्तीसगढ़ी गीत। मीडियम व्यू 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। दिन के 11 बजे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज ये कार्यक्रम केंद्रित है भारतीय सिनेमा जगत के फिल्मकार निर्देशक राज खोसला पर।

राज खोसला ने अपने उत्कृष्ट निर्देशन से लगभग 4 दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। दोस्ताना, मैं तुलसी तेरे आंगन की, दो रास्ते, मेरा गांव मेरा देश, वह कौन थी जैसी दिल को छू लेने वाली कलात्मक फिल्में आज भी सिने प्रेमियों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ती है। 13 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना शहर में जन्मे राज खोसला का बचपन से ही गीत संगीत की ओर रुझान था। वे फिल्मी दुनिया में पार्श्व गायक बनना चाहते थे। आकाश

राज घोसला के पारिवारिक मित्र अभिनेता देवानंद ने उन्हें अपनी फिल्म बाजी में गुरुदत्त के सहायक निदेशक के तौर पर नियुक्त कर लिया। स्वतंत्र निदेशक के रूप में मिलाप फिल्म में फिल्म को निर्देशित करने का उन्हें मौका मिला। फिल्म में मुख्य कलाकार देवानंद और गीता बाली थी।

वर्ष 1956 में राज जी ने CID फिल्म का निर्देशन किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी सिल्वर जुबली पूरी की। तब गुरुदत्त ने खुश होकर उन्हें नई कार भेंट की। गुरुदत्त उन्हें बहुत मानते थे और कहते भी थे कि गुरुदत्त फिल्म्स पर जितना मेरा अधिकार है उतना तुम्हारा भी है। 1958 में राज घोसला ने नवकेतन बैनर तले फिल्म 16 साल निर्देशित की।

यह बात कितनी दिलचस्प है श्रोताओं की, जिन देवानंद की बदौलत उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला, उन्हीं की वजह से देवानंद को अपने फिल्मी करियर का बतौर अभिनेता फिल्म काला पानी में पहला फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में उन्होंने फिल्म बम्बई का बाबू का निर्माण किया। इस फिल्म के दौरान उन्होंने अभिनेत्री सुचित्रा सेन को रुपहली पर्दे पर पेश किया।

1964 में राज खोसला की एक और सुपरहिट फिल्म प्रदर्शित हुई, वो कौन थी। फिल्म के निर्माण के समय मनोज कुमार और अभिनेत्री के रूप में निम्मी का चयन किया गया था, लेकिन राज जी ने निम्मी की जगह साधना का चयन किया। रहस्य

1978 में लिंक से हटकर फिल्म बनाने का काम शुरू किया। नूतन और विजयानंद को लेकर मैं तुलसी तेरे आंगन की का निर्माण किया। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म दर्शकों के बीच काफ़ी सराही गई। 1980 में प्रदर्शित फिल्म दोस्ताना राजघोसला के सिने करियर की अंतिम सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और जीना अमान ने मुख्य भूमिका निभाई। अपने

0: एक ही कलाकार अभी एक कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया, जो कि निर्माता निर्देशक राज खोसला पर केंद्रित था। दिन के 11:30 हुए हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
1: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 8700-001-4242।

0: दो पर।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। आगाज कर रहे हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल से। कलाम सबा सिकारी का, संगीत जगजीत सिंह का।

मिताली सिंह की आवाज़ में लीजिए सुने कार्यक्रम की ये अगली गज़ल। ज़मीर काज़मी के अल्फाज, धुन बनाई है भूपेंद्र सिंह ने।

हेमा सरदेसाई का गाया ये नगमा लीजिए सुनिए, मुमताज़ नेहकत के बोल, वैष्णो देवा का संगीत।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा। और छत्तीसगढ़ में रबर टायर के बिना आयरन के व्हील वाले ट्रैक्टरों को सड़कों पर चलाने पर लगाई गई रोक। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांवों में सामुदायिक भवन, चौक चौराहों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा। साथ ही जिन स्थानों पर नक्सल हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहां उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। यह बात उन्होंने कल कांकेर में नक्सल पीड़ित परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात के दौरान कही। वहीं कल देर शाम उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नारायणपुर में पुनर्वासित युवाओं से मिले और उन्हें गांव के विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से पुनर्वास केंद्र में मिल रही सुविधाओं, प्रशिक्षण और रोजगार

0: जानकारी ली। इस अवसर पर वन और पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। रायपुर जिले में 1381 बूथों पर 3,45,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। छूटे हुए बच्चों को 29 और 30 जून को घर घर जाकर दवा दी जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सुकमा जिले के प्रवास के दौरान सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र लस्केपारा छिंदगढ़ की पोषण वाटिका में बच्चों के साथ मुनगा और पपीता के पौधों का पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने हर घर मुनगा, घर घर सुपोषण का संदेश देते हुए पौष्टिक आहार, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का आह्वान किया। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुनगा को सुपोषण वृक्ष के रूप में पहचान मिल चुकी है, क्योंकि इसकी पत्तियां, फलियां और फूल पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं तथा कुपोषण की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। छत्तीसगढ़ में रबर टायर के बिना आयरन के व्हील वाले ट्रैक्टरों के सड़कों पर संचालन पर रोक लगाई गई है। परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे पहियों का उपयोग केवल खेतों में कृषि कार्य के लिए किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित की गई है। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रायपुर में 2 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के संबल केंद्र में होने वाले इस इंटरव्यू के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। 8वीं उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। इस योजना के तहत एमटेक, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रूपये फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा और छत्तीसगढ़ में रबर टायर के बिना आयरन के व्हील वाले ट्रैक्टरों को सड़कों पर चलाने पर लगाई गई रोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति है जयराम कवासी की। संयोजक हैं चंद्र ऋषि ठाकुर।

0: पोनीन लोकरस सुन तो सपाय गांव कारी दादा दीदी मन की मोचे बाटले जोहार। हाँ तो दादा दीदी मन हेदाय पिला मन चो स्कूल खुल्ली से तो तुम्हें सफाय आपला पिला मन के स्कूल पठावा और नुआ पिला मन चो एडमिशन बले करावा और पिला मन काजे पेन कापी बले गेनन दिया। कोनी कोनी पिला मन शुरू शुरू नी स्कूल जातो काज बले ठगो हुआ औसन पिला मन के आया बाबा मन स्कूल चांडुक जातो राय ते भी उन पिला मन स्कूल जातो काजे मन कर दे दका ये गोट मन के तो तुमके सुरता कराउन दिले सांगुन दिले आले एदाय आमचो पोनिन लोकरस कार्यक्रम के मूर करू और दकुन दकुन सबले पहले कौन पोन कर सो जाल।
1: हाँ हेलो पोनी लोकरस
2: दादा
1: जोहार ना कौन बोल से
2: मैं गुड्डू नाग बोले से दादा जिला सुकमा जिला ले कसन आसा दादा।
1: हाँ बढ़िया आस ना तुम कसन आसा
2: हमी बोला चार से बे का तो दान रखा से का ये बेड़ा बटे
1: खेती बाड़ी करू आस ने
2: नहीं कर दादा हम शुगर से लोग करवा ले मैं थोड़ा जमा के ये रायपुर बात पड़े से का बोलवा ये गोटक गीत सुनते रही दादा उन्हीं का फोन लगा लो गुरुवार के लगा अंदक ने नहीं लगली।
1: हाँ उन दिन

0: फोन लाइन खराब रहे ना उनका जो दिन रिकॉर्डिंग नहीं करूँ हाँ
1: कसन फोन नहीं लगे बोलते रहे मैं क्या नाम है दादा
0: हाँ मजो जयराम कवासिया
1: अगले महीना पर गो टोंटली दादा हाँ
0: हाँ हो रहे ना का
1: ये का बोलो लखेश्वर कुदराम से कई बोल को नहीं बोल गीत सुना दिया दादा
0: हाँ लखेश्वर कुदराम से ने
1: ओ
0: अगर लोग गीत के सुना दे उनते खाली जुआर
1: ओ ना दादा जुआर

0: हेलो, फोन इन लोक रस।
1: वंदे मातरम, जय जोहार।
0: हाँ, वंदे मातरम, जय जोहार।
1: मैं कहा से दादा, ये नक्की से मैं रमेश दादी।
0: हाँ, अले रमेश दादा, सांग ना। सबसे पहले तो ये सांग की तू कुछ गालो गीत की सुनो आज।
1: ये साल में सुने में आते बरसात कम है दादा, मतलब बड़े परेशान हो जाए ना।
0: हाँ हाँ हाँ, उन तो आए इस खेड़े के जो बरसा पानी आए कुंड लेट हो ऐसे
1: है ना दादा, वही तो बड़े मुश्किल ना।

0: मैं गीत सुने के दादा
1: हाले कुछ गाल गीत के सुनो आस ना
0: मैं बस्ता जिला तो आज मैं सुपीला
1: हाले तुझो मन कर लो गीत के आम रामते हैं उनते भी
0: जय जोहार दादा
1: हाँ जय जोहार

0: है तो अर्जुन बड़ा उदास हो गया।
1: ओ?
0: कुछ दुबी के रस पिए, कुछ कंदमूल फल खावे और कुछ समय ले अर्जुन इसने दिल बितावा था वे कहकर। जब आत्मा ले ब्रह्मांड में चढ़ा कर शंकर के ध्यान लगावे तो कैलाश पर्वत डगमगाए। पार्वती जोर से चिल्ला के कहे, भोला भोला अरे का हो गया तोला। कहते ऐसा

0: पार्वती के बोली गुस्सा के मारे कहे वाह वाह वाह भोला, अरे अर्जुन छत्री पुत्र है और वो श्रद्धा भक्ति लगा के तोर ध्यान लगाही तो का हमार कैलाश पर्वत डगमगा जाही। शंकर हंस के कहे पार्वती आदि अर्जुन चाहे ना तो तन मन धन दे के पूजा करे तो तीनों लोग खिलाए के ताकत है।
1: ओ

0: हॅलो फोनी लोक रे
1: फोनी लोक रे जुवार जुवार ना दादा
0: हा जुवार ना कोण बसित ना
1: गणपत वगैरे बोलत दादा मग
0: गणपत वगैरे तू ही तू खूप यार येत आमच्या आकाशवाणीने फोन करलीस ना तुझ्या संगे खूप यार गोड बात बोलवलीस ने
1: हो ना
0: सांग ना सबले आगे तो यही सांग की आजी कुछ गाल की सुनवा
1: बलबीर सिंग कच्चे सुना दे सका ना हो आजकल पानी खूप गसरेस ना आमची वाटे
0: पानी गसरेस ने कोण कोण तो वाट पानी बोलनी गसरेस ना तुमचे बटा चाय गसरेस ने
1: आमचे बटा चाय गसरेस थोडे बहुत बेडा वगैरे बुनू रो उन पर थोडे इने के नुकसान होली दो दिन ये पानी गसर दी नहीं उन्होंने
0: बेड़ा बुता चलावा काय बुता काम करू आस
1: राइस मिल ने रुवा ना दो दिन घर बाट रहे तो उन काम वगैरह खत्म करूं बात ये वही लेस टाइप रोपा का चेर जमा जा रहे
0: हां हां हां तो सांग ना तू तू आमची आकाशवाणी चो नियमित श्रोतो आस तो आमची आकाशवाणी ले जोन कार्यक्रम मनाल भी बीती हो नाले कोनी बोले हो सब ले अगर तू की मन है तो सन कार्यक्रम मन
1: तो हम के तो सफाई कार्यक्रम अच्छा लगवा दादा लेकिन फिर बोल मैं तो मन पसंद कार्यक्रम मन सब ले आगे बस्तर किस पर होली फिर आमचो गाँव और हिंदी बीति बोल रहे फिर उन्हें श्रोता सम्मान होली नमस्कार जगदलपुर और युवाणी
0: प्रोग्राम
1: लेकिन आजकल किन्नी के का है तो सुन तो किन्नी दिक्कत हो ना आज चल प्रसारण सुनाई नहीं है आमचो मोबाइल मन ने
0: ये गोट सत्य है आमचो आकाशवाणी ने किन्नी के ये परेशानी चले से तकनीकी परेशानी उन मौसम खराब चो चक्कर ने आया वसन हो ऐसे
1: आम ची हाँ ठीक है क्या ना
0: आले ठीक है तेरे तू चो मन करो गीत के आम राम देवन ना
1: जुआर ना
0: आले जुआर

0: हेलो पोनिन लोकरा।
1: हेलो पोलिंग लोग रस दादा
0: हाँ जोहार ना, कौन बोल सीत?
1: यार मेघनाथ नाग बोले थे ना
0: मेघनाथ ना कहाँ ले बोल सीत दादा?
1: ये सोनमाल बोले दादा ये माकड़ी बल आकले तो कौन बोल सीत?

0: कहाँ ले कहाँ तक चला हुआ जल दादा?
1: मैं तो लग बोल बुकिंग बोल जाऊँ सब जुआ आगे।
0: ये गाड़ी चलाते चलाते बोल रेडियो सुन तो कहा अच्छा मौका मिल रहा है ने।
1: और मिल रहा है ना मजा मैप साल से तो मैं खूब दिन सुने से कम 2007-08 ले सुने से मैं।
0: हाले ठीक है तेबे तू चो मन कर लू गीत के सुनान दे ना।
1: हाँ हाले जुआर दादा
0: हाले जुआ ना जुआ।

0: गाँव बाट पानी मारेस ना
1: हजुर पानी त्यो इन्नी मारेस ना घाम थिए
0: इसु उसने ओलिस ना पुरे बस बस्तर संभाग ने किंडे पानी ले गमा आएस ने नाली तल्ले आमरु रुवा है जोन मानसून बुलवा तुन आमचे बस्तर ने एव रुवा है मानतर ये सु किंडे लेट करे से ये चु कारण ने आमचे जोन किसान दादा दीदी मनास हो तो जोन खेती बाड़ी करो तुन मन चु किंडे उन का जी किंडे परेशानी जाए
1: दिक्कत हो मन के
0: तो इमेज दादा सांग ना तो ये काय काम बुत करू आ
1: हां दादा मैं मिडिल स्कूल ने पियो ना है ना और मैं तो फोन लगा लगे के
0: तो ये स्कूल ने आगे बढ़ी कर पड़ने तो ये भी स्कूल नीचे आसे तो और स्कूल ले फोन लगा ली सिने अले ठीक है तेबे तुझ संगे इतरो अच्छा गुड बात होली तुझो मन कर लो गीत काम राम देन तेबे
1: ठीक है सेवा जोहार
0: हां ले जोहार जोहार ओए लाल लाल बोला लाल ले नानो ले भया नानो ले भया

दादा दीदी मन तुम्ही बले आप लो मन कर लो गीत के सुनुक चा साथ तो रोजे लखन बार दिने 3 बजे दरुन 3:30 बजे तक ये नंबर मन ने फोन करुक सकास। नंबर आए 0778222266 और गोटुक नंबर आसे 0778222216। हाले एदाए मकी पोनिन लोगरस कार्यक्रम ले विदा दिया तुम्ही सफाए के जोहार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति थी जयराम कवासी की, संयोजक थे चंद्रऋषि ठाकुर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1 बजने को हैं। अब हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर

0: में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कृषि सामी की बेड़ा खड़ा चौगोट।
1: आमचो बस्तर ने असन तो कई प्रकार चो तेल बीती फसल चो कमानी होए से असने चे घोटोक तेल बीती फसल आए राम तिल बल्लो ने ढेंगी तिल ये चो कमानी बले वर्षा चमास बतर ने होए से ये फसल भाटा टीकरा बल्ले मरहन ने कमातो बीती फसल आए। ये फसल के तुम्हें बुनन तो सारला सास होती मांतर दादा दीदी मन कहींच फसल धर तो काजे होता खदभात संगे संगे हुंचो जोगा जतन बल्ले करुक लागे से। राम तिल बल्ले ढेंगी तिल फसल ने असनी लाटा बुटा के निजानी करतो रुवाड़ तो तुम्हें करला सास होती। ये फसल ने बले बीमारी सेमारी और कीड़ी मन जवट सोत हुनके मरला तो और थेबा तो काजे उपाय के मैं आजी सांगे से। आगे सुना यथा कीड़ी मन कसन कसन जवट सोत ये घोटके घोटक कीड़ी आए राम तिल इल्ली ये कीड़ी पाना के खाउन भाती फसल के नुकसान करे से। ये कीड़ी कई खार बूटा चो पाना के खाउन सारून दे से जेचोले बूटा चो बाढ़ती के नुकसान अमरे से और बूटा ने उपजन बले कम मिरे से। ये कीड़ी के मरला तो काजे रासायनिक दवाई क्लोरोपायरीफास 20 EC नहले क्विनालफास 25 EC चो 1 लीटर नहले कार्बोरिल 5% चूर्ण के छींच तो राय नहले भुरकुन दे तो राय। एक हरे की और सुना कीड़ी आए राम तिल इल्ली ये कीड़ी पाना के खाउन भाती फसल के नुकसान करे से। ये कीड़ी कई खार बूटा चो पाना के खाउन सारून दे से जचोले बूटा चो बाढ़ती के नुकसान होए से और उपजन बले कम मिरे से। ये कीड़ी के मरला तो काजे रासायनिक दवाई आए क्लोरोपायरीफास 20 EC नहले क्विनालफास 25 EC एचो 1 लीटर नहले कार्बोरिल 5% चूर्ण के छींच तो राय नहले भुरकुन दे तो राय। गोटोक दूसर कीड़ी आए माहू एक एफिड बले बोलसोत। ये कीड़ी मन बूटा चो पाना और पील ने लटकुन भाती हुंचो रस के चुहक सोत जेचोले फसल के नुकसान होए से। माहू कीड़ी फसल थाने फूल फूट तो बेरहुआत एचो काजे दवाई आए डाई मिथोएट 0.03

प्रतिशत नहले फास्फोमिडान 0.03% एचो उपयोग करतो रहे। एक हराउर सांगुन दें से कीड़ी आए माहू ये कीड़ी के एफिड बोले बलसोत ये कीड़ी मन बूटा चो पाना और पील ने लटकुन भाती हूँ चोरस के चुहकुआत जे चोले फसल के नुकसान हो से और एक कीड़ी के मरला तो काजे दवाई आए डायमिथोएट 0.03% नहले फास्फोमिडान 0.03% एचो उपयोग करतो रहे। ये तो होली दादा दीदी मन कीड़ी मन चुगोट अदाए बीमारी मन के जाना बीमारी आए बीज गलन बीज मन अकर तो पहले फफूंद हो तो कारण गलून जासोत ये बीमारी ले बचा तो काजे बीज के

0: तीन ग्राम दवाई नहले केराथेन एक मिलीलीटर दवाई नहले केलिक्सिन 0.5 मिलीलीटर दवाई के एक लीटर हिसाब ने पानी ने घोरून भाती ठिया फसल ने 15 दिन चो भीतरे छींच तो राय तेब ये बीमारी ले आमी फसल के बचाव सकूं दे।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामी की बेड़ा खड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0772-222-666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
4: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। आपके फरमाइशी पत्रों और गीतों को लेकर कार्यक्रम श्रोता सुमन में हाजिर हूँ मैं अपर्णा अवस्थी। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।

अब पेश है फिल्म नगीना का गीत। मोहम्मद अजीज की आवाज में आनंद बख्शी के बोलों को सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इन दोनों गीतों की मिलीजुली फरमाइश इन श्रोताओं की है। लालमाता सुदामानगर से हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता कपिल, मीनाक्षी मनोहर सत्यनारायण, प्रभुलाल बागरी, सूरीगांव औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सुवर्णा योगिता, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता नितिन दिवाकर, वंशिका दिवाकर, हमारे ये श्रोता हैं लक्ष्मण को राम प्यारीदास मानिकपुरी, मनोज कुमार साहू कोमल सेन, सारंगपुरी उमरगांव से दीपक कुमार साहू, अश्विनी बाई साहू, उमा शंकर साहू, ठामेश्वरी रागिनी, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल नीति, फतेहगढ़ से विनोद पुरी, वीपी अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके कैलाश, अनीता गगन कपूर, कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मीना, इरफान काशिफ मीना, भाटापारा से ही है लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता वैदेही जोशी, कामठी नागपुर से हैं कैलाश प्रसाद शर्मा, किरण शर्मा, आशीष कुमार शर्मा, अमृता शर्मा, दतरंगी से हैं विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु, लक्ष्मीना यदु, महासमुंद से हैं जीतू ध्रुव, केवल ध्रुव, छोटी ध्रुव, किरण ध्रुव, खेमू ध्रुव, और इस गीत के लिए अगली फरमाइश है नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, लुहेड़ी मोहबा से है जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघव

रविंद्र अरविंद रागनी रिया रेणुका यादव, देवकी विहार सारनाथ से बाबू यादव, मनशा यादव, दुर्गेश सीमा यादव, अन्नू यादव, अरुणेश यादव, रायगढ़ से हैं रोहित, जय लक्ष्मी, रिसम, अंश लक्ष्मी, इंदौर से प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक, संजना परी, ललिता, देवरिया से हैं उदिता विश्वकर्मा, सुजीता विश्वकर्मा, रिग्नी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ, और इन गीतों की फरमाइश आई थी सरगुजा से रामचंद गुप्ता, पांडे राम रजवाड़े, शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, साजदा रानी, नसरीन परवीन हिना, रोज़ी परवीन बिट्टू, दुबिया से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, रायपुर से हैं मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रज़ा, दुरियापुर बामली से हैं गजानन येले, नवदीप येले, गंडई पंडरिया से हैं दरियानमल, अनीता मोटवानी, राजनांदगांव से गुलशन साहू, ग्वाला प्रसाद यादव, दल्ली राजहरा से ललित यादव, श्रीनिवास, सुरेश नागवंशी, पुनीत सेन, कतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश देवांगन, आशीष रवि, मोनू सोनू, कान्हा आदित्य देवांगन, और इस गीत के लिए फरमाइश है बमहर चाटीडी से गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी महेश्वरी, मिल्की मीनाक्षी, निधि देवांगन, लोरमी गोल बाजार से संतोष कुमार, सोनी खिलेश, सुनीता पीहू, दानिश छोटी, दीक्षा नेहल, संजय पूजा, रामा पूर्वी, हरपुरा मंडिया टीकमगढ़ से इंद्रपाल सिंह राजपूत, देवी सिंह, नारायण दास, चंद्रपाल सिंह, उम्मीद कुंवर, भाटापारा से अमृता यादव, अपार्वती यादव, ईश्वरी यादव, लक्ष्मी यादव, प्रेरणा डिम्पी यादव, खंडवा से अब्दुल रहमान डाबर, अब्दुल कादर डाबर, अब्दुल रशीद खत्री, बिलाईगढ़ से हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन, धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, पिंकी सेन, रीमा सेन, अकोला महाराष्ट्र से सदानंद मंदुरकर, सुशीला मंदुरकर, रानीगांव नगरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू, खंडवा से विजय महोबिया, संजय विवेक, कविता सपना, विशाल सलोनी, शेरी बडनेर से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, अनामिका दामोदर, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भिगु, विनय ठाकुर, राजनगर मधुबनी से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता ख्याति, सुशांत चुलबुल रानी, रेलवे कॉलोनी भटिंडा से हैं जगपा जगमल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक, सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, जानकी प्रजापति, घनश्याम राम प्रजापति, रत्नेश घनश्याम, आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म नगीना का यह गीत।

अगले गीत की फरमाइश हम तक लिख भेजी है सरगुजा से रामचंद गुप्ता पांडे राम रजवाड़े, शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, साजदा रानी, नसरीन परवीन, हिना रोज़ी परवीन, बिट्टू। दुबिहा से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा, मलोट पंजाब से हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजोरिया, देवास से हैं मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा,

लोहंडीगुड़ा से हैं चंदन नाग, हरीश नाग, उदय नाग, सोनू राम, रामधर कश्यप, मोती राम मौर्य, दुखुराम मौर्य, रामधर बघेल, उदय राम ठाकुर, कलम बाल सिंह। सहारनपुर से हैं सुरेश नारंग, आशु नारंग, पथिक सोनाली किशेव। चांदूर बिस्वा से है नारायण भाऊ, खटसे ललिता, स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी। झूलेलाल चौक तिलदा से हैं हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका, सुशीला दादी। और इस गीत के लिए है झांझा बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा सिंह, रवि आरती सिंह। अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति ठाकुर, रियांश, गुड़िया ठाकुर। भाटापारा से हैं एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन, गिरीश युवान, धावेश यादव। टोंडी लोहारा से देवशंकर तामुरिया, अजय कुमार तामुरिया, डॉली बेबी पूजा, प्रभा देवी तामुरिया। सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मंतसा, रमेश गौड़ शाबाद, माफ़ कीजिएगा गौड़ शादाब। सुंदरखेड़ बुल्ढाना से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान। कोरदा लवन से हैं कलेराम यादव, खेड़ावाड़ी हिंगोली। महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे। बालौद से मंतुराम यादव, चित्ररेखा यादव, शिवम, साहिल, राकेश, रितेश, पोषण यादव, केशव, माधव, नेत्राम। औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुदामा, प्रांजक्ता, प्रांजलि बोरगांवकर, सोहम बोरगांवकर। मेहसौल सीतागढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, प्रिंस इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिस मुजम्मिल, हुमैरा सुमैरा नाज। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौर, मंजूला राठौर, विशाल, निशा राठौर। लक्ष्मणपुर से जीवनलाल रजक, रामजी साहू। हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, सौरभ डूडी। रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, असीम। इसी गीत की फरमाइश की है वी पूनम नायडू ने। आप सब ने पसंद किया है फिल्म धन दौलत का नगमा, स्वर आशा भोसले और किशोर कुमार का, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

अगले गीत को सुनने की चाहत की है हरपुरा मंडिया टीकमगढ़ से उर्मिला नेहा, प्रेम कुंवर, अंकिता देवी, अविता देवी, आरुषि अभी राजपूत, गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी, खंडवा से अब्दुल कादर डाबर, मोहम्मद हमजा डाबर, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, नई दिल्ली से हैं रविंद्र छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, सेमिनरी हिल्स नागपुर से ही नाना डोंगर दीवे, रमाताई डोंगर दीवे, सीमाताई, रीमाताई, राहुल डोंगर दीवे, उज्जैन से हैं गोपाल बागवान, गोविंद सालगराम, दशरथ बागवान, निज़ामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, हरीम रहीम, मुन्ना शेख वाहन, नूर जहां शेख इकबाल, कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, अजहर हसन, इब्राहिम।

आजिया आफिया। पुणे से हैं पंकज कुमार आर्या, प्रियंका वारुदे, बाबा साहेब वारुदे, चंद्रप्रभा वारुदे। बाड़मेर राजस्थान से हैं कृष्ण कुमार डाबी, भूपत डाबी, राधा डाबी, विक्रम, अर्चना डाबी। देवरी भाटापारा से हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। टिकरापारा चारामा से हैं हरिशंकर सलाम, भगवान सिंह सलाम, चैतराम नेताम, शिवराज जैन। राजा राम नगर से हैं राजू अग्रवाल, मधु महाजन,

कल्पना जैन, सौरभ जैन, शुभम जैन, जतुका किशनपुर से है, आलम, दिलकश, शबाना नाज, रिजवान, इमरान राजा, चांदनी नाज, चांदनी गांधी चौक रोपड़ से हैं, हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म तेरे नाम का गीत। आवाज़ है उदित नारायण के साथ अलका याग्निक की, शब्द रचना समीर की, संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

अगला गीत सुनने की चाहत की है भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, अटगांव से किशोर धुले, वंदना धुले, शिवानी आनंद, आशीष धुले, बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, दरभा से हैं रामधर कश्यप, मनीष कटरम, उदय नाग, उदय ठाकुर, तोकापाल से है विशेश्वर धुआर्य, बनियापारा धमतरी से हैं माँ रामचंद मखीजा, शंकरलाल मखीजा, राहुल कुमार मखीजा, शरद डोडवानी, बोरखेड़ा उज्जैन से है विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश, दिलीप से हैं खंडवा से ही अनिल विंचुरकर, मंगला विंचुरकर, शोभित विंचुरकर, चंडी मोहंदी से नारद साहू, हेमलता साहू, पवन साहू, खुशबू साहू, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल वर्मा, गोपी भूपेश वर्मा, दीपेश वर्मा, महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, रीचा गायत्री वैष्णव, और इस गीत को सुनना चाहा है महोबा से उदय भानपाल, दीक्षा पाल, जय हिंद पाल, प्रतीक्षा विमलेश, नागलोई दिल्ली से चंदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा, कंडला बंदर कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा जोहरी, जेनीश, बोहरा गाछी से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, प्रियंका पूजा सिंह, लीलू रितु सिंह, ऋषभ सिंह, रायपुर मोवा से हैं गोपेंद्र कुमार साहू, मंजू साहू, भंडार सिवनी से सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान, अनुष्का चक्रधारी, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा मंडलकर, विविधा वंडलकर, फाटापारा से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, हमीरपुर से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल संजू, रंजना वंदना, प्रियल दिव्यांशी विश्वकर्मा, रिग्नी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का जबरदस्त फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार का केशवर का स्वर और बोल मजरूह सुल्तानपुरी के सुरों से पिरोया है आर डी बर्मन ने।

छबीलपुर गन्नौर से हरवेश कश्यप, अरजीत कश्यप, दिव्यांश कश्यप, गायत्री कश्यप। भाटापारा से भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीध, पप्पी भाटिया। सावर गांव से रघुनाथ नारे, पुष्पताई नारे, श्रीधर नारे, मीनल नारे। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा।

मध्य प्रदेश से हैं जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट। मुरादाबाद से मुकेश कश्यप सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, मोहिनी सोनी। मुंगेली से कृष्ण कुमार साहू, धनंजय, मनोज कुमार, सत्यम शिवम, गायत्री। भीमखोड़ा तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश गुप्ता, लक्ष्मी, प्रतिभा गुप्ता। जगराव से हैं सुनील पाठक, कमरल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, स्वीटी गव्या, जयपाल। आदर्श नगर मलोट से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरव शर्मा। पिपरिया कबीर धाम से हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता। बनियापारा धमतरी से सविता मखीजा, स्वाति मखीजा, माही छुटकी। शिवानी चौक राजिम से हैं अनिल कुमार, अंजुला अंजुलता, आदित्य कुमार, कृष श्रीवास्तव। आप सबकी ख्वाहिश पर लीजिए पेश है कार्यक्रम का यह अंतिम गीत। फिल्म अवतार से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में इस गीत की रचना की है आनंद बख्शी ने। संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: 21 deaths. So far, 148 patients have recovered, while 419 remain in isolation or are receiving hospital treatment. Health officials have also identified 265 suspected cases, including 77 deaths. World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said, contact tracing is reaching more people and that increasing numbers of patients are recovering and returning home. However, he warned that the outbreak is far from over. Back home, the IMD has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat, Madhya Pradesh, remaining parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during next 3 to 4 days. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and in some parts of northeast India today. On to sports. In FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezia was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit. Describes Seychelles as a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar. US Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे

0: राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसकी भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
5: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल,

0: अमूल इस सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला किया।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार

0: मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह

पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओ, नए व्यक्तित्व से मिलना, उनके बारे में जानना और जीवन में आई उनकी चुनौतियां, उनकी उपलब्धियों के माध्यम से उनके विषय में अधिक जानने के उद्देश्य से ही हम आपके समक्ष लेकर आए हैं ये विशेष कार्यक्रम। और आपको भी इंतजार होगा कि आज के हमारे अतिथि कौन हैं। तो लीजिए, आपके इंतजार को खत्म करते हैं और मैं डॉक्टर मधु जैन आज आपको बताती हूं श्रोताओं कि स्टूडियो में हमारे साथ कौन से मेहमान उपस्थित हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अतिरिक्त कलेक्टर और आयुक्त नगर निगम प्रवीण कुमार वर्मा जी। प्रवीण जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार मधु जी।
0: आज आप स्टूडियो में हमारे पास आए, अपना कीमती समय आपने निकाला। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी और कहाँ हुई है और अपने बारे में आप हमें बताएं।
1: मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर बांधा बाजार, जो वर्तमान में चौकी तहसील और अभी वर्तमान में वो जिला भी बन गया है, वहां पर मैंने प्रारंभिक शिक्षा 5वीं तक की पढ़ाई की है। और उसके बाद जो नवोदय विद्यालय जो आजकल सभी जिले में है, मेरी 6वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई जो है जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव वहां पर मैंने पूर्ण की है। और 12वीं की परीक्षा के उपरांत में मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जो छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है राजनांदगांव में, वहां पर मैंने कंप्यूटर साइंस में जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की है।
0: जी, इस पद पर आने के लिए या इससे पहले भी आप किन पदों पर स्थापित रहे और आपके कार्यस्थल कौन से रहे और कैसे आप इस पद तक आए, उसके बारे में आप इस यात्रा के बारे में जरा बताएं हमें।
1: बेसिकली इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद में और भी पढ़ाई होती थी, हायर ग्रेजुएशन मुझे करना होता और जो मेरा फील्ड था उसमें स्कोप जो भी थे वो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ थे, जो कंप्यूटर साइंस जो मैंने सब्जेक्ट लिया हुआ था, और उसके लिए मुझे अतिरिक्त समय भी देना पड़ता तैयारी के लिए, और मुझे निश्चित रूप से जो मेरा स्कोप होता, फील्ड होता, वो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ होता। तो मुझे पहला तो छत्तीसगढ़ से बाहर जाने का मन नहीं था।
0: बहुत बढ़िया।
1: और मुझे पता नहीं अचानक से क्या हुआ, जो मैं जब बचपन में छोटा था उस समय देखता था तो मेरे पिताजी भी जो है तैयारी करते थे, मुझे इंजीनियरिंग करते तक कभी ख्याल में नहीं आया कि मुझे सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करनी है या मुझे सिविल सेवा में जाना है। परंतु कहीं न कहीं था, जब मैं बचपन में छोटा था, 5वीं में पढ़ता था या घर पे रहता था, उसमें पिताजी शादी होने के बाद भी उस चीज की तैयारी करते रहते थे, हालांकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे मन में या दिमाग में वो चीज छपी थी कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। और बचपन में भी मुझे 12वीं और इंजीनियरिंग करते तक कभी आया नहीं कि पापा ने ऐसा बोला हो, लेकिन जब मैंने तैयारी चालू की और सिलेक्शन हुआ तब मुझे बचपन की बातें याद आई। कभी न कभी तो पिताजी ने कहा था, पापा ने कहा था कि यार ऐसा कुछ बनना, कलेक्टर बनना या ये बनना करके। तब मुझे लगता है कि वो माइंड में कहीं पर घर कर गया था वो चीज। और पढ़ाई करने के बाद में अचानक से मुझे आया कि मैंने तो रिजल्ट का वेट भी नहीं किया फाइनल होने के बाद में, और मैंने सीधे तैयारी के लिए जो है दिल्ली का रुख कर लिया और वहां पर मैंने तैयारी की 6 महीने। उसके बाद वापिस में घर आकर के मैंने साल भर और पढ़ाई की और प्रथम नियुक्ति के रूप में ही मेरी जॉब जो है वो वित्त सेवा अधिकारी के रूप में, ट्रेजरी ऑफिसर जैसे बोलते हैं,

0: उस रूप में हुआ, परंतु उसमें मैं 2 महीने के रूप में ही कार्यरत था और उसके बाद में मेरा जो है चयन वो डिप्टी कलेक्टर के रूप में हो गया। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद में मेरी विभिन्न जगह पे पदस्थापना रही। प्रथम पदस्थापना मेरी धमतरी में रही, वहां मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ था और विभिन्न जो विभाग होते हैं उनका भी काम मैंने देखा। उसके बाद में पुनः जो है मेरा स्थानांतरण जो है जगदलपुर में हुआ, तो लगभग 18 से 20 मैंने 3 साल की सेवा पूर्व में भी जगदलपुर में दी और उस समय यहां पर एसडीएम के रूप में और कलेक्ट्रेट में मैंने सेवाएं दी। उसके बाद में 3 साल होने के बाद में मेरी दुर्ग पदस्थापना रही और दुर्ग पदस्थापना में भी मैंने वहां 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया, विभिन्न नजूल अधिकारी के रूप में रह करके कलेक्ट्रेट में भी विभिन्न सेवाएं दी और उसके बाद में पुनः वर्तमान में मैं विगत 2 वर्षों से जगदलपुर में पदस्थ हूं। जगदलपुर में मुख्य रूप से पदस्थ तो मैं इलेक्शन ऑफिसर के रूप में रहा 1 साल और उसके बाद में विगत 1 वर्ष से भी अधिक समय से मैं आयुक्त नगर निगम के पद पर अभी कार्यरत हूं।
1: आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कहीं मन में मेरे था कि मुझे शायद यूपीएससी करनी, तो आपके पिताजी और माताजी क्या करते थे, आपने उसके बारे में नहीं बताया।
0: पापा जी तो शुरू से जो है वो टीचर भी थे, टीचर छोड़ करके फिर वो पटवारी बने। पटवारी के बाद में उनका पदोन्नत हुआ और वर्तमान में वो राजस्व निरीक्षक है, राजनांदगांव में पदस्थ है। मदर भी जॉब में थी परंतु वो बच्चों को, मतलब जॉब में थी तो नहीं, सिलेक्शन जरूर हुआ था परंतु घर की जिम्मेदारियों और उनको देखते हुए उन्होंने जो है वो हाउसवाइफ के रूप में चुना। और निश्चित रूप से जो माता पिता का गाइडलाइन रहा है और उनका जो सहयोग रहा है उसके बदौलत ही जो है मैं, लगता है कि मैं आज इस पद पर पदस्थ हूँ।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपकी माताजी चयनित होने के बाद भी उन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारियों को चुना, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि यदि घर पर महिला या माँ आपको सहयोग करती हैं हर तरह से, तो उनके उनके व्यक्तित्व की भी छाप कहीं ना कहीं अंदर आपकी आती है।
0: निश्चित रूप से जो बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, और जब आज की डेट में मेरी खुद बिटिया है तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हम जैसा उसके साथ में व्यवहार करते हैं, हम जो उसे सिखाते हैं, हम जो उस पर ध्यान देते हैं, निश्चित रूप से वो बच्चे वही सीखते हैं।
1: अच्छा।
0: तो जो हम आज सीखे हैं या जिस पद पर हम हैं या जैसा व्यवहार हमारा है, वो निश्चित रूप से हमारे माता पिता की छवि है और उनका सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव बच्चों पर माता पिता का ही पड़ता है।
1: आप बताएं कि आप चयनित हुए तो आपने राज्य सेवा आयोग की परीक्षा दी थी या संघ लोक सेवा आयोग?
0: नहीं, मैंने संघ लोक सेवा आयोग की भी परीक्षा दी थी प्रथम प्रयास में, परंतु उसमें सफल नहीं हो पाया और प्रथम प्रयास में ही राज्य सेवा परीक्षा में चयन हो गया, तो उसके बाद से मैंने उसका प्री मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई।
1: हमने सुना है कि ये परीक्षाएं काफी जटिल और कठिन होती हैं और आज हमारे बस्तर के काफी युवा इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, आप 2 शब्द में क्या कहना चाहेंगे कि सही है ये या मिथ है ये?
0: निश्चित रूप से चूंकि डिप्टी कलेक्टर का पद राज्य स्तर पर जो है वो सर्वोच्च पद होता है और संघ लोक सेवा आयोग में जो है कलेक्टर का पद सर्वोच्च होता है, जिसकी तैयारी अगर भारत स्तर पर या प्रदेश स्तर पर देखेंगे तो चूंकि वो सर्वोच्च एग्जाम है इसलिए सर्वोच्च उसमें जो है कठिनाई और टफ होता है, क्योंकि जो बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं, क्योंकि कंपटीशन उनको ऑल ओवर इंडिया से मिलता है इसलिए सर्वाधिक टफ परीक्षा तो यूपीएससी की है। उसी प्रकार से जब हम राज्य में देखते हैं तो सर्वोच्च पद डिप्टी कलेक्टर का होता है जिसके लिए सभी बच्चे तैयारी करते हैं, तो जितने भी मेरिट के परीक्षार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, वो सभी इसमें करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका ऑटोमेटिक जो है वो
1: कठिन
0: हो जाता है उसमें से।
1: बिल्कुल, आपने तो बताया आप कई जगह पदस्थ भी रहे और आपने, आपके अंदर एक भाव शुरू से था कि मैं छत्तीसगढ़ में ही अपनी सेवाएं देना चाहता हूं और ईश्वर की कृपा से आपको पदस्थापना भी यहां पर ही मिली है और आप अपनी सेवाएं भी दे रही हैं, तो इसके पीछे कोई विशेष बात थी या आपने स्वयं से ये बात चुनी?
0: ऐसा था कि जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया तो सिर्फ ग्रेजुएशन से तो कुछ नहीं होना था उस समय पर, 2012 की बात है जब मैं पास आउट हुआ, तो उसके लिए हायर एजुकेशन में मुझे एमटेक भी करना होता, एमटेक के बाद में वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे मेट्रो सिटीज पे ही प्लान करना होता। तो मैंने चुना कि अगर मैं ये 2-3 साल मेहनत करने के बाद मैं कहीं सेटल होता हूं, तो मुझे लगा कि उस 2-3 साल को अगर अपने राज्य के लिए ही राज्य की परीक्षाओं में अगर प्रयास करता हूं तो निश्चित रूप से मुझे उसमें सफलता मिल सकती है और उस सफलता का सबसे बड़ा रिजल्ट तो मुझे यही मिलेगा कि मेरी नियुक्ति जो है वो राज्य में ही होगी, और क्यों ना अपने लोगों के ही बीच में रह करके काम किया जाए तो मैं शायद हमेशा उनके लिए एक सहयोगी के रूप में उपलब्ध रहूंगा। तो ये मेरे मन में था कि क्यों ना उसके लिए प्रयास किया।
1: कह सकते हैं कि कुछ अच्छा समाज में करने के लिए आपके मन में ये विचार था और आपने इस दिशा में प्रयास भी किया और आपको सफलता भी मिली, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने इतनी जगह काम किया है, कई बार ऐसा होता होगा कि चूंकि ये सर्वोच्च पद भी है और कई सारी जिम्मेदारियां भी हैं और वैसे तो शासकीय कार्यालयों का टाइम सुनिश्चित होता है 1:10 से 5, 11 से 6 इस तरह का, किंतु इस पद पर रहते हुए मुझे नहीं लगता कि समय की जो सीमा आप लोगों के ऊपर लागू होती, क्योंकि आप लोग को तो 24x7 काम करना होता है, तो इतनी

0: व्यस्त जो आपकी दिनचर्या होती है उसे आप कैसे मैनेज करते हैं या उसका प्रबंधन कैसे करते हैं समय का?
1: राज्य में कहें, राज्य स्तर पर कहें और भी विभिन्न पद हैं जो हमारे समकक्ष है, परंतु जो चैलेंजेस एज ए डिप्टी कलेक्टर जो हमारा कैडर होता है सबसे टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि वास्तव में जो आपने कहा कि 24x7 वही जॉब हमारी है, इसमें किसी प्रकार से निश्चितता नहीं रहती है कि हाँ मैं रोज 7 से 8 बजे तक मैं एक्सरसाइज करूंगा या जिम जाऊंगा या रोज शाम को 6 से 7 मैं खेलने जाऊंगा, मेरा बैडमिंटन का रूटीन रहेगा
0: या
1: परिवार के समय सैटरडे को मैंने प्लान कर लिया कि आउटिंग में जाऊंगा या संडे को जाऊंगा। वो चीजें जो है वो हमें निश्चित रूप से नहीं मिल पाती क्योंकि अनिश्चितताएं हैं। हमारा शेड्यूल है उस पूरे जिले में एक प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, कब रैली जुलूस चक्का जाम ये स्थिति उत्पन्न हो जाए, कब कोई वीआईपी अधिकारी या वीआईपी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो आ जाए यहाँ पर, किस प्रकार से प्रोटोकॉल वो लागू हो जाता है, और निश्चित रूप से उस प्रोटोकॉल को और किसी शाखा को या विभाग को बोलेंगे तो उनसे वो उम्मीदें नहीं रह पाती कि वो यहाँ पर अवेलेबल हो या वो उपलब्ध हो जाए जितना हमारे ऊपर में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो सबसे बड़ा टफ और टास्क इवन ये भी रहता है कि हम पहले से प्लान नहीं कर पाते हैं कि अगले माह के इस 15 तारीख को या 20 तारीख को मैं आउटिंग के लिए किसी अन्य जगह पे जाऊं। होता यह है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 दिन पहले ही पता चल जाता है कि इन माननीय का जो है कार्यक्रम है।

0: लिए मैं निश्चित रूप से जब भी मुझे समय मिल पाता है, अभी तक ऐसा रहा है कि जहां भी मेरी पोस्टिंग हुई है तो जो साथ में पढ़े एक दो फ्रेंड्स मुझे मिल ही जाते हैं, तो उनके साथ मैं कभी भी ये समय निकाल करके, या घर पे भी माहौल कई बार बैडमिंटन के लिए उपलब्ध हो जाता है तो आसपास के जो भी कभी कलीग्स मिल जाते हैं, ऑफिसर्स मिल जाते हैं, उनके साथ एक ट्यूनिंग बना करके खेलने का मुझे मौका मिल जाता है। दूसरा फिर कुछ कभी स्टडी में हॉबी रही है तो समय मिलने पर फिर वो मैं घर में समय निकाल लेता हूँ।
1: परिवार में भी आप बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते, तो परिवार और बच्चों के बीच जो संतुलन है वो आप कैसे करते हैं?
0: हमेशा से एक टफ टास्क रहा है, पर अब चूंकि प्रशासनिक व्यवस्था ही इस प्रकार से बनी है कि छुट्टियां बहुत कम मिल पाती हैं, बहुत सारे परिवार के सदस्य भी जो है वो जॉब में ही है, तो अब घर वालों ने ही रास्ता निकाल लिया है इस संबंध में कि क्यों ना जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसे सैटरडे या संडे को ही किया जाए, तो कम से कम ये हो जाता है कि लोग अवेलेबल हो जाते हैं उसमें से। उस सैटरडे संडे में भी पहले अब लोग पूछ लेते हैं इसमें कोई कार्यक्रम तो है कि नहीं है, तो अब थोड़ी सी जो घर में पहले जो मुहूर्त देखकर, हाँ पहले जो मुहूर्त देख करके कार्यक्रम रखा जाता था, अब उसमें ये हो गया है कि सैटरडे संडे को देख
1: या
0: करके या
1: छुट्टियां देखकर
0: छुट्टियां देख करके उसमें कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, तो निश्चित रूप से कभी कभार ही कुछ इस टाइप से विशेष परिस्थितियां हो पाती हैं कि जिसमें हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, बाकी प्रयास रहता है कि घर के पास रहते हैं तब तो वो अटेंड हो जाता है उसमें से।
1: तो काम को लेकर के या किसी चीज को लेकर कभी आपको तनाव नहीं होता? या कई बार ऐसा भी होता है ना कि प्रशासनिक दबाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है और कई बार ऊपर से भी कुछ काम आपको करने को निर्देशित किए जाते हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं, या फिर आप उसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, तो ऐसा कभी कोई तनाव आपने फेस किया हो कभी?
0: क्योंकि प्रशासन है, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है, कभी ऐसे ऊपर से इस टाइप से निर्देश तो कभी नहीं मिले, गलत निर्देश या उल्टा निर्देश हो उसमें से। हाँ निश्चित रूप से उस व्यवस्था को उस समय पर देखना, संभालना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब हम एज मजिस्ट्रेट वहां पर नियुक्त होते हैं, तो ये तो बहुत सारी परिस्थितियां आई कोविड के समय पे, आई परिस्थितियां उस चीज को किस तरीके से निपटान होना है, कभी रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं या कहीं पर फैक्ट्री वगैरह में जैसे एनएमडीसी है यहाँ
1: दुर्घटनाएं
0: पर से
1: होती
0: यहाँ
1: हैं।
0: दुर्घटनाएं भी हो जाती है, कभी उनके वेतन को लेकर के इस प्रकार से भी संगतियां हो जाती है, चक्का जाम, रैली, धार्मिक प्रदर्शन भी कई बार होते हैं, उस समय पे निश्चित रूप से हमारा सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति में हम होते हैं कि किस प्रकार से उस परिस्थिति से उभरा जाए, क्योंकि एक छोटी सी घटना भी या आपकी छोटी सी लापरवाही भी उसको एक बड़ा एक अंजाम घटने के रूप में हो जाती है।
1: एक साथ तीन चार घटनाएं भी घट जाती है अलग अलग तरीके की, तो प्राथमिकताएं निश्चित करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता होगा।
0: हाँ निश्चित रूप से वो हो जाता है, परंतु जिले में और भी हम पदस्थ रहते हैं एक साथ में, तो उस हिसाब से उनको वर्क डिवाइड कर दिया जाता है, कई बार एक जगह पे प्रोटेस्ट भी हो रहा होता है, प्रोटोकॉल भी रहता है, शासकीय योजनाएं भी चलती रहती है, तो उसपे प्राथमिकता के आधार पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दिया जाता है, तो निश्चित रूप से हम उसे, अभी तक तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, कोविड के समय एक दो बार इंस्टेंस उस टाइप से हुए थे, परंतु अभी तक के मेरे जो 10-11 साल के सर्विसेज में जो है वैसे अप्रिय घटना नहीं हुई है। और जो तनाव की बात कर रही है वो निश्चित रूप से हमारे माइंड में पूरे समय चलते रहता है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि हम आज की डेट में निश्चिंत हैं, एक कार्य समाप्त होता है तो दूसरा हमारे जो है वो कतार पे
1: खड़ा
0: रहता है,
1: रहता है
0: खड़ा रहता है उसके लिए कि आप हाँ ये समाप्त हो गया मुझे पकड़ लीजिए बोल करके।
1: तो ये तो आपने घर परिवार और कार्यस्थल की बात की, और आप अभी कह रहे थे कि तनाव कई तरीके के भी होते हैं और एक साथ तीन चार परिस्थितियां भी आपके सामने आ जाती है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कहीं धरना चल रहा है, कहीं प्रोटोकॉल आ गया, तो ऐसी स्थिति में और अपने आप को तनाव मुक्त रखने के लिए आप किस तरह से सामंजस्य बनाते हैं अपने चर्या के दैनिक चर्या के आधार पर, या ऐसा कोई विशेष आप प्रयोजन जैसे मेडिटेशन वगैरह या योगा इस तरह का कुछ आपको क्या चीज है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस रिलीफ देता है?
0: हाँ बेसिकली जब मैं घर जाता हूँ और स्ट्रेस में अगर कुछ रहता हूँ तो मैं अपना मोबाइल ले लेता हूँ, जेब में रख करके गाना सुनते हुए मैं वॉक करना पसंद करता हूँ, और गाने को गुनगुनाते हुए तो थोड़ा मुझे स्ट्रेस फ्री लगता है, और उसके बाद में भी कई बार अगर तनाव में इस टाइप से लगता है बॉडी में कुछ होते रहता है तो मैं बॉल लेता हूँ अपने घर पे ही, और ऐसे ही दीवार पे बॉल फेंक करके मैं बॉलिंग का प्रैक्टिस करते रहता हूँ, तो मुझे जब मेरा माइंड उस चीज पे चला जाता है तो निश्चित रूप से ये जो तनाव है।
1: दो चीजें आपकी बातों से मुझे समझ में आई कि एक संगीत आप सुनते हैं तनाव मुक्त होने के लिए, दूसरा किसी तरह की गतिविधि, जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद है आपने बताया था, तो आप उसकी बॉल से दीवार से प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो कोई रहे ना रहे आप अपनी। और एक बात हमने और सुनी, आप बता रहे थे कि मैं कुछ दोस्त मेरे मिल जाते हैं या कुछ कलीग्स के साथ मैं खेलता हूं, तो ये भी कहा जाता है ना कि दोस्तों के साथ खासतौर से आपके बचपन के दोस्त होते हैं उनके साथ आप बहुत जल्दी तनाव मुक्त होते हैं, आपका क्या मानना है इस विषय में?
0: हाँ निश्चित रूप से जब दोस्त आते हैं और बातें होती है तो हम क्या बाकी चीजों को भूल जाते हैं, जब हम अपने में

0: खो जाते हैं कि कभी बचपन की बातें याद कर लेते हैं, या तैयारी के समय में किस टाइप से बातें करते थे, तैयारी उसके संबंध में बात करने लग जाते हैं, और कुछ नहीं तो हमारे और जो अन्य दोस्त हैं जो हमारे साथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनके बारे में बातचीत करने लग जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप दूसरे चीजों में अपने आप को एंगेज कर लेते हैं तो जो डाइवर्ट कर लेते हैं। असल में होता क्या, हम क्रिकेट भी खेल रहे तो उस समय जब हमारा ध्यान बॉल पे या बैट पे हम खेल रहे हैं तो बाकी चीजें जब हम वो भूल जाते हैं, तो निश्चित रूप से जब उन चीजों को हम भूल जाते हैं तो थोड़ा सा तनाव से हमें।
1: तो श्रोताओं से आप ये जरूर कहना चाहेंगे कि अपने बचपन के दोस्तों से भी जरूर मिलते रहिए, क्योंकि जिंदा दिली उन्हीं के अंदर में होती है आपके लिए भी खासतौर से।
0: निश्चित रूप से मिलते रहना चाहिए, यादें करते रहना चाहिए, तो बिल्कुल एक जो बचपन का बचपना आपके मन में जो है आता है और वो एक आपको
1: जीवंत रहता है,
0: जीवंत रहता है और आपको एक एनर्जी देता है।
1: देता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने बताया कि इतनी सारी तो जिम्मेदारियां हैं और आपने अलग अलग जिलों में भी अपनी सेवाएं दी हैं, और उन जिलों की जो स्थितियां थी और वहां पर आपने जिस तरह की चुनौतियों का सामना किया और यहां पर आप जब से पदस्थ हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर आपने पाया? बस्तर कैसा लगा आपको? हमारा बस्तर नैसर्गिक रूप से भी समृद्ध है, सांस्कृतिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से, तो आप पहली भांति परिचित हैं हमारे बस्तर की परिस्थितियों से।
0: दो जिलों में मेरी पोस्टिंग मैदानी क्षेत्र थी, जो दुर्ग और धमतरी में पोस्टिंग थी, तो वहां की परिस्थितियां अलग हैं और बस्तर की परिस्थितियां में मुख्य रूप से जो हमारे ट्राइब्स हैं उनके साथ में काम करने का अनुभव अलग रहा है, क्योंकि वो मुख्य रूप से अपने जंगलों से जुड़े हुए हैं, यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ में उन्हें थोड़ा सा समझा पाना और मुख्य धारा पे ला करके मैदानी क्षेत्र के रूप में उनके साथ में ट्रीट करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वो जिन चीजों के साथ में अपनी परंपराओं के साथ में चले आ रहे हैं उनको छोड़ पाना उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो जितना मैदानी में था चैलेंज, वहां थोड़ी सी एकरूपता या एकजुटता का हम बोल सकते हैं कि कमी मुझे लगती थी कि कभी कोई विरोध होता था तो कुछ लोग उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के विरोध करते थे या उसके संबंध में आवाज उठाते थे, परंतु वो बस्तर के साथ में नहीं है, सभी एकजुट हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के कहना, और उनके बीच में उन्हें समझा पाना थोड़ा सा सबसे ज्यादा टफ टास्क लगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है थोड़ी सी। शहरी क्षेत्र में वो समस्या नहीं है क्योंकि सभी हिंदी बोलते हैं तो, और उनके साथ में संवाद करना आसान होता है और उन्हें कुछ उदाहरण देकर के समझाना आसान होता है, परंतु वहीं जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाते हैं और उनसे उनके लैंग्वेज में बात कर पाना वो तो हमारे लिए टफ हो जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो एक भाषा का संवाद के बीच में जो एक अंतर है या हम नहीं बात कर पाते हैं, और चूंकि एज पर्सन है, उनकी पढ़ाई भी और बचपन से वो गांव में ही रहे हैं, तो जो उनसे संवाद का जो है वही सबसे बड़ा हमारे लिए थोड़ा सा टफ टास्क होता है।
1: और बस्तर लगा कैसा आपको यहाँ पर आने के बाद?
0: बस्तर तो मेरे लिए मतलब निश्चित रूप से स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि मैं 18 से 20 में भी जब फर्स्ट टाइम पोस्टिंग हुई धमतरी से, तब मैं पहली बार ही जगदलपुर आया, उससे पहले तो मैं नहीं आया हुआ था, सुना बस था बस्तर, तो बस्तर की परिभाषा के रूप में यही था कि नक्सल क्षेत्र है, नक्सलाइट है ऐसा बोल करके, तो जब फर्स्ट बार हुआ तो जरूर मन में एक डर से बैठा और अरे यार उतने दूर में जाना है, कभी गया नहीं है, फिर कैसे आएंगे, 300 किलोमीटर घर से दूर है, परंतु एक बार जब आया 2-4 महीने लगे सेटल होने में और साथी बन गए, उसमें से हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके साथ में भी परिवार के रूप में मिला हमें जुड़ने को मिलने को, उसके बाद से मुझे अपना घर सा लगने लगा उसमें से। वो 3 साल किस तरीके से निकले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, इवन उसके बाद में जब मेरी यहाँ से पोस्टिंग दुर्ग हो गई और दुर्ग के वापस से मेरी 3 साल के बाद पुनः यहाँ पर जब पोस्टिंग हुई तो मन में बिल्कुल भी निराशा या अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, बल्कि एक खुशी सी फीलिंग हुई कि अरे वो तो मेरा जगह है, देखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा तो यहाँ की जो हरियाली है, उसके बाद में दूसरा का यहाँ जो खुशनुमा मौसम है, मतलब गर्मी में भी जैसी गर्मी बढ़ती है शाम को 4 बजे जो बारिश, मैंने 18 अपने जो पहली पोस्टिंग में देखी बारिश हो जाती है, तो कभी मुझे उस समय में भी या कभी एसी की जरूरत पड़ी हो इस टाइप से नहीं लगा मुझे, और घूमने के लिए इतनी सारी जगह है यहाँ पर से कि कभी भी आप सैटरडे संडे को वीकेंड्स में आप निकल जाएं, तो निकलने से पहले मैं कभी नहीं सोचता कि कहाँ जाने, बस गाड़ी में बैठ जाए उसके बाद में फिर उत्तर जाऊं तो भी मेरे लिए घूमने के लिए जगह है, दक्षिण जाऊं तो भी घूमने के लिए जगह है, तो सैटरडे संडे फैमिली के साथ में घूमने में और आउटिंग करने में कभी नहीं रहा, और सभी सुविधाएं बस्तर में उपलब्ध है आज के समय पे, एजुकेशन से लेकर के आपकी स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ पर उपलब्ध है, लोग भी हैं, शहर अच्छा है, उतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है,
1: तो हम कहेंगे नहीं है, बिल्कुल हमारे बस्तर की खासियत है और आत्मीयता है जो बाहर के लोगों को भी अपने रंग में रंग लेता है बस्तर, और बहुत सारे लोग हैं जो बस्तर को अपनी पहली पसंद बनाकर यहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, और आपने भी तारीफ की, ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, और हमने आपसे

0: बहुत सारी बातें की और हम आपसे आपकी पसंद का, आपने बताया कि संगीत सुनते हैं आप, तो आपकी पसंद का कोई गीत हम सुनना चाहेंगे और श्रोताओं को भी हम एक गीत सुनाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: वो मेरे दिल के चैन है, मुझे
0: आप गाते हैं उस गीत को?
1: लगता है, कभी गुनगुना लेता हूँ।
0: गुनगुनाइए जरूर।
1: ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।
0: बहुत ही बढ़िया, ये किशोर कुमार के स्वर का गीत है और फिल्म मेरे जीवन साथी से है। इसके जो शब्द लिखे हैं वो मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे हैं और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। तो आइए सुनते हैं और सुनवाते हैं श्रोताओं को भी ये खूबसूरत सा।

0: बधाई हो, आपने 25 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। सिर्फ एक क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई किसी और के खाते में। याद रखिए, बैंक कभी भी फोन, मैसेज या लिंक के माध्यम से आपका OTP, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर अपराधियों से बचें। साइबर सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। फोन बज रहा है, लेकिन अगर आप वाहन चला रहे हैं तो यह कॉल कुछ देर बाद भी उठाई जा सकती है। एक कॉल, एक मैसेज या एक पल का ध्यान भटकना दुर्घटना का कारण बन सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। सुरक्षित ड्राइविंग अपनाइए, क्योंकि जिंदगी किसी कॉल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: प्रवीण जी, आपने बहुत ही सहजता के साथ यहाँ पर अपने सभी बातों का उत्तर दिया, और आपको हमारे कार्यक्रम में आना कैसा लगा, और हमारे बस्तर के श्रोताओं को या जो भी श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
2: मधु जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात रखने का आपके माध्यम से मौका मिला। मैं उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, मतलब मुझे काम करते हुए तो 11 साल हो गया, लेकिन जो सबसे टफ टास्क लगा चैलेंज के रूप में वो आयुक्त नगर निगम के रूप में मिला, क्योंकि अब तक तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का मिला था और जिला मुख्यालय में रह करके काम करने का मौका मिला था, परंतु जो वास्तविक शहरी क्षेत्र है जब उसमें काम करने का मुझे मौका मिला, तो अभी जब कर रहा हूं मैं उस चीज को, तो सबसे ज्यादा चैलेंज या वर्क का स्कोप मुझे दिखता है तो नगरीय क्षेत्रों में है।
1: बिल्कुल।
2: तो यहाँ पर मुख्य रूप से उतनी बड़ी जनसंख्या एक ही जगह पे रहती है, उनके बीच में स्वच्छता को बनाए रखना, उन्हें पूरे समय पे पानी की सुविधा उपलब्ध करा के रखना, एक स्वस्थ माहौल उस शहर में बनाए रखना, लाइट की व्यवस्था उस समय पे बनाए रखना, ये सबसे बड़ा टफ टास्क होता है। तो मैं अपने जो भी श्रोता सुन रहे होंगे उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पर्यावरण के प्रति जितना आप सहयोग कर सकते हैं, जन जागरूकता ला सकते हैं, हरियाली ला सकते हैं, प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं, पानी का संरक्षण जो मैं देखता हूँ वो उस दिशा में किस प्रकार से आप प्रयास कर सकते हैं।
1: जल ही जीवन है,
2: जल ही जीवन है। तो हम ये बचपन से हम देखते हैं, घर में भी जब किल्लत होती थी तो हमने बचपन से देखा है किस प्रकार से एक एक बाल्टी से हमने उस घर को चलाया है। आज तो पर्याप्त रूप में

0: जो हम यूज करते हैं अनावश्यक रूप से ना जलाएं, और सबसे ज्यादा जो है मुझे लगता है कि स्वच्छ रखने के लिए जो हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वच्छ है तो हम स्वस्थ हैं। शहर में जो है सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन झिल्लियों के माध्यम से, पॉलीथिन के माध्यम से, प्लास्टिक के माध्यम से जो है उसके माध्यम से होता है, तो अगर वास्तविक रूप में कहीं भी अगर नगरीय निकाय अपने कार्य को छोड़ दे, स्वच्छता और सफाई को, अगर 1 सप्ताह या 10 दिन भी वो कार्य न करे, तो निश्चित रूप से वो शहर नर्क के रूप में हमें दिखाई देगा। तो हमारा ये प्रयास है सभी जन जागरूकता के माध्यम से कि वो पॉल्यूशन बिल्कुल न करें। आपको जहां भी आपके घर का जो पॉलीथीन जो भी डस्ट निकलता है, या आप रास्ते में भी चल रहे हैं तो उसे आप अपने जेब में रख लें या किसी प्रकार से कैरी बैग में रख लें, और जो आपका प्रॉपर डिस्पोजल का है, आपका डस्टबिन है, वो अगर नगरीय निकाय की जो गाड़ियां आती हैं, कचरा कलेक्शन की गाड़ियां आती हैं डोर टू डोर पे, उसके ही माध्यम से दें, और हम अपने वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं, जल संरक्षण के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं, पर्यावरण को हरे भरा रखने के लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं, उस दिशा में हम अधिक से अधिक काम करें, तो निश्चित रूप से हमारी जो जीवन की हमारी जो आयु है, हम सभी के लिए उसको एक बेहतर मौका दे सकते हैं।
1: आपके संदेश से हमने ये जाना कि किस तरह से हमारी पृथ्वी के संरक्षण पर हमें ध्यान देना है, और आने वाले समय में यूं कह लें कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी जल का संरक्षण हमें करना है, क्योंकि बहुत सारे शहर अभी नो वाटर जोन की श्रेणी में भी आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये गंभीर समस्या है, और बहुत ही अच्छा संदेश आपने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से दिया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो पे आए और अपना अपनी अपने जीवन के विषय में, अपने विषय में इतनी सारी बातें आपने हमसे साझा की। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे त्रिवेणी इंटरप्राइजेस।

0: वीडियोस बनाने हैं।
1: प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान, इसके अंतर्गत श्री प्रवीण कुमार वर्मा जगदलपुर नगर निगम से ली गई भेंट वार्ता अभी आप सुन रहे थे। भेंटकर्ता थी डॉक्टर मधु जैन, प्रस्तुति थी चंद्र ऋषि ठाकुर की। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। विविध भारती के कार्यक्रम आपकी सेवा में जारी रहेंगे।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत हैं हमारी केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले आज के शेष और कल होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 9:30 पर चित्र भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में देशभक्ति गीत शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर गोंडी लोकगीत, कलाकार होंगे कीचोराम और साथी। बस्तर के स्वर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:00। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। रात 8:00 जोनी उजर में सुनिएगा हल्बी लोकगीत, कलाकार होंगे नीला और साथी। पीलामन काजे गोट, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की। कार्यक्रम आमचो रान आमचो जीवना का प्रसारण किया जाएगा रात 9:15 पर। आदिवासी लोकवाद्य धुन का कार्यक्रम पाड़ सुनिएगा रात 10:00। वादक कलाकार होंगे पाकलू और साथी। अब सुनिए हमारी कल की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात का हिंदी अनुवाद सुबह 10:55 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का 2026 का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से मैच समाप्ति तक मीडियम वेव पर प्रसारित किया जाएगा। FM बैंड और मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम कल जारी रहेंगे। कल रात 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुबह 6:05 पर। सुबह 6:20 पर प्रकाश किरण स्वर मधुर शास्त्री का। श्री रामचरित मानस का गायन आप सुनेंगे सुबह 6:25 पर स्वर अनुराधा पौडवाल और श्रीकांत पारगांवकर का। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। सुबह 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर कृषि सामे की बेड़ा खाड़ा चुगोट। होलोली में सुनिएगा कासन पाठ सुबह 6:40 पर। वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। सुबह 7:10 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसका आकर्षण होगा हमारा बस्तर के अंतर्गत नारी देह का अनोखा श्रृंगार गोदना पर वार्ता। वार्ताकार होंगे हरिहर वैष्णव। हल्बी समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा सुबह 7:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप सुबह 7:45 पर। विभिन्न बोलियों में लोकगीत का कार्यक्रम 10 मिनट पर। नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बालबाड़ी सुबह 9:00। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत सुबह 10:00। प्रस्तुति होगी प्रीति यादव की। संयोजक होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद सुबह 11:30 पर। लोक गाथा के कार्यक्रम रुसरुसा में सुनिएगा आंधा राजा का भाग 6 दोपहर 12:00। गायिका होंगी सुबरी बाई और साथी। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन दोपहर 12:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम कला और कलाकार। कल शाम 5:05 पर देशभक्ति गीत। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। गोंडी समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर। बस्तर के स्वर कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चुगांव शाम 7:21 पर। रात 8:00 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात का हल्वी अनुवाद। कार्यक्रम पीलामन काजी गोट आप सुनेंगे रात 8:30 पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात का गोंडी अनुवाद रात 9:00। दौना में सुनिएगा हल्बी भजन रात 10:00। कलाकार

होंगे मधुराम और साथी। ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। दोस्तों, आपके साथ आज हम हैं, मैं पूनम भारती
1: और मैं पराग चंदे। स्वीकार करें हमारा प्यार भरा अभिवादन।
0: नमस्कार। और पराग, बताओ तुम कैसी हो?
1: मैं तो ठीक हूँ, बस कुछ बातें हैं जो मन ही मन आ रही है। खैर छोड़ो वो सब, बताओ तुम कैसी हो?
0: मैं तो ठीक ही हूँ। तुम्हें कौन सी बातें मन ही मन खा रही है, जरा मुझे भी बताओगी?
1: बताऊंगी, पर तुम मजाक में तो नहीं लोगी ना?
0: अरे नहीं नहीं बताओ तो जरा।
1: देखो पूनम,
0: हाँ,
1: अभी करियर को लेकर तो काफी टेंशन हो रही है ना?
0: बिल्कुल टेंशन तो हो रही है, इससे मजाक की क्या बात है?
1: बात ये मजाक की नहीं है, मैं ये सोच विचार में हूँ कि करियर विदेश में सही है या भारत में, इस बात को लेकर जरा मैं कंफ्यूज हूँ।
0: बिल्कुल, आज के दौर में लगभग हर युवा मन ही मन में यह अवसर उठाता है कि क्या बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाना जरूरी है या फिर अपने देश से रहकर सफलता हासिल की जा सकती है।
1: हाँ, लेकिन विदेश में करियर बनाने के कई आकर्षण भी तो हैं, जैसे बेहतर वेतन, हाँ, आधुनिक तकनीक, वैश्विक अनुभव और उच्च जीवन स्तर जैसी सुविधाएं युवाओं को अपनी ओर खींचती हैं। वहाँ काम करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीखने और अपनी प्रतिभा को नए आयाम देने का अवसर मिलता है।
0: बिल्कुल, लेकिन दूसरी ओर भारत भी तेजी से बदल रहा है। स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल क्रांति, बढ़ते उद्योग, शोध और नवाचार के नए अवसर युवाओं के लिए अनगिनत संभावनाएं लेकर आए हैं। आज कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में भी विश्व स्तरीय अवसर प्रदान कर रही है।
1: सही बोल रही हो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विदेश जाकर पढ़ाई और नौकरी करने का जो चलन है ना, वो तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों में भारतीय युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।
0: इसके पीछे भी कई कारण होंगे ना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: क्या कारण है बताओगे?
1: बिल्कुल क्यों नहीं। देखो, सबसे पहला कारण तो है बेहतर शिक्षा व्यवस्था। दुनिया के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अत्याधुनिक शोध सुविधाएं और वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। वहाँ विद्यार्थियों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि नवाचार और प्रयोगों के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही उच्च वेतन कई विकसित देशों में समान कार्य के लिए भारत की तुलना में अधिक वेतन मिलता है, और यही वजह है कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के युवा विदेश में करियर बनाना चाहते हैं। और अगला कारण है कि वैश्विक अनुभव, विभिन्न देशों के लोगों के साथ काम करने से सोच का जो दायरा है ना, वो बढ़ता है और नई कार्य शैलियां भी हमें सीखने को मिलती हैं।
0: हाँ, विदेश में करियर बनाने के कई सकारात्मक पक्ष हैं, जैसे नई तकनीक और आधुनिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय पहचान, पेशेवर वातावरण, आर्थिक मजबूती, बहुसंस्कृति अनुभव, विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और विचारों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे व्यक्ति उदार और व्यापक दृष्टिकोण वाला बनता है।
1: बिल्कुल, और विदेश में करियर पर चर्चा तो ये किए, लेकिन विदेश में करियर जितना आकर्षक दिखाई देता है उतना आसान होता नहीं है।
0: जरा बताओगे कैसे?
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चुनौती तो वहाँ पर होती है कि हम परिवार और अपने लोगों से दूर रहते हैं। त्योहार, खुशियाँ और कई महत्वपूर्ण अवसर अकेलेपन में ही बीत जाता है। साथ ही नई संस्कृति और जीवन शैली में स्वयं को ढालना कई बार कठिन हो जाता है। नई जगह, नई भाषा और नई जिम्मेदारियों के कारण कई बार मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। और तो और कई देशों में वीजा नियम और रोजगार नीतियां भी समय समय पर बदलती रहती हैं, जिससे करियर की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, विदेश में रहने वाले कई युवाओं को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी करने पड़ सकते हैं। पूनम, हमने विदेश पर अपने करियर के लाभ

0: पर चुनौतियों पर चर्चा तो कर ली, लेकिन
1: हाँ
0: अब चलो थोड़ा सा भारत में बदलते अवसर को भी एक नजर में जान लेते हैं।
1: हाँ जरूर।
0: दोस्तों कुछ दशक पहले तक ये माना जाता था कि बेहतर अवसर केवल विदेशों में ही है, लेकिन आज स्थिति तेजी से बदल रही है।
1: सही कहा दोस्तों, आज भारत केवल रोजगार खोजने वाला देश नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाला देश।

0: अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में बड़े केंद्र स्थापित कर रही है। शोध और नवाचार को लेकर विज्ञान, अंतरिक्ष एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारत लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है।
1: श्रोताओं, ये तो थी भारत के अवसर। अब चलिए इसी के साथ साथ अपने देश में काम करने के लाभ को भी जान लेते हैं। श्रोताओं, परिवार का साथ, अपने लोगों के बीच रहकर काम करना भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है। साथ ही सामाजिक योगदान, जैसे युवा अपने देश में काम करते हैं तो वे सीधे राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। साथ ही बढ़ते अवसर, आज भारत में भी अनेक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवसर उपलब्ध हैं। साथ ही नेतृत्व के भी अवसर हमारे देश में उपलब्ध हैं।
0: आज की चर्चा को लेकर कुछ लाइन, विदेश अवसर तो दे सकता है लेकिन पहचान आपकी मेहनत बनाती है, अपना देश आधार देता है और दुनिया विस्तार। इसीलिए निर्णय किसी थ्रेट को देखकर नहीं, अपने उद्देश्य को समझकर लें।
1: श्रोताओं, याद रखिए, सपनों की कोई सीमा नहीं होती लेकिन सपनों को सच करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। चाहे राह विदेश की हो या अपने देश की, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लगातार बढ़ते रहते हैं।
0: तो दोस्तों, अपनी चर्चा को यहीं देते हैं विराम और हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, आज के दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, क्यों है ना पराग?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज होता है कार्यक्रम हेलो युवानी का, जहाँ हम करते हैं अपने श्रोताओं से कुछ बातें और सुनते हैं उनके पसंद के गीत।
0: जी हाँ, तो चलिए लेते हैं आज का पहला कॉल और जानते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार सर,
2: धीरज व्यापारी बात कर रहा
3: हूँ। जी, आकाशवाणी जगदलपुर से बात कर रहे हैं हम। सर कैसे हैं आप?
2: मैं अच्छा हूँ और मैं गांव डेर, तहसील जिला पाटन, गुजरात से आपका नियमित श्रोता धीरज रबारी बात कर रहा हूँ।
3: जी जी, आप के यहाँ पर मौसम कैसा है अभी?
2: मौसम देखा जाए तो बादल छाए हैं। मैं रहता हूँ अहमदाबाद, तो बारिश की आशंका है लेकिन बारिश आती नहीं है
3: जी।
2: लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि 2-3 दिन में बारिश आ जाएगी।
3: जी जी जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि इतने दूर से लोग हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
2: जी। और आप लोगों की पेशकश बढ़िया होती है सभी की।
3: जी जी, तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: गाना सुनना है मुझे आराधना फिल्म, आराधना फिल्म का कोई भी गाना हो तो चलेगा दीदी।
3: आराधना फिल्म का?

0: हेलो विवानी
1: हेलो जुवानी
0: जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं और कहां से?
1: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, कहां से बोल रहे हैं आप?
1: मैं ग्राम मामड़पाल दरबार ब्लॉक से गणपत बघेल बोल रहा हूं मैडम।
0: गणपत बघेल जी, कैसे हैं आप?
1: जी ठीक हूं मैडम जी।
0: जी और बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती किसानी करते हैं मैडम
0: जी। तो इस बार अभी कौन सी फसल लगाई है आपने?
1: अभी तो धान लगा रहे हैं मैडम जी, अभी धान का सीजन आया ना, तो अभी धान लगा रहे हैं
0: जी। और बताइए, हमारे प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: जी मैडम, आपका प्रोग्राम तो हम लोग नियमित श्रोता हैं, तो डेली सुनते रहते हैं। लेकिन
0: जी, और क्या क्या करना पसंद है आपको?
1: बस खेती किसानी करते हैं मैडम जी, और क्रिकेट देखते हैं और रेडियो सुनते हैं बस।
0: तो बताइए, आज कौन सी फिल्म

0: ध्यान लगा रहे हैं
1: जी। और बताइए, हमारे प्रोग्राम सुनते हैं आप?
0: जी मैडम, आपका प्रोग्राम तो हम लोग नियमित श्रोता है, तो डेली सुनते रहते हैं। लेकिन
1: जी, और क्या क्या करना पसंद है आपको?
0: बस खेती किसानी करते हैं मैडम जी, और क्रिकेट देखते हैं और रेडियो सुनते हैं बस।
1: तो बताइए, आज कौन सी फिल्म

0: आकाशवाणी जगदलपुर का कार्यक्रम हमको।
1: जी जी जी धन्यवाद सर, आप लोग ऐसे ही हमारा कार्यक्रम सुनते रहे क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है कि इतने दूर से लोग हमारा कार्यक्रम सुनते
0: आज हमको श्री मंदिर का सुना दीजिए, मुझे नींद ना आए ना मुझे चैन ना आए।

0: हमारी।
1: जी नमस्ते, योगेश जांगड़े सिरवा बांधा बेमेतरा से।
0: योगेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं
0: जी और बताइए क्या करते हैं आप?
1: हमारा खेती बाड़ी का काम है।
0: जी तो कैसा चल रहा है आपका काम?
1: अभी तो बारिश हुआ नहीं है तो थोड़ा
0: जी
1: इंतजार है।
0: जी, और आज का आपका दिन कैसा रहा?
1: बढ़िया रहा।
0: जी बताइए, आप हमारे रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ जी, यो वाणी हो गया, किसान
0: जी
1: वाणी हो गया,
0: जी
1: ये सब
0: जी
1: सुनते हैं।
0: जी तो कैसा लगता है आपको?
1: बढ़िया लगता है, लोकगीत भी काफी अच्छे
0: जी
1: लगते हैं।
0: जी तो बताइए, आज कौन से फिल्म का गीत सुनवाया आपको?
1: ये प्यासा सावन से उपलब्ध है क्या? मेघा रे मेघा रे मत परदेस जा रे।
0: जी, उपलब्ध है, आप इसके कुछ लाइनें गुनगुना सकते हैं?
1: मेघा रे मेघा रे मेघा रे मेघा रे मत परदेस जा रे। अब आगे गाने में सुनवा देंगे।
0: अरे वाह, क्या खूबसूरत आवाज है आपकी, और बहुत ही अच्छा गुनगुनाया आपने।
1: जी शुक्रिया।
0: जी चलिए सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत आपको।

0: हेलो युवानी, नमस्कार।
1: हेलो, आप वंदे मातरम साजा, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, किन से बात हो रही है हमारी?
1: हम बोल रहे हैं नकटी सेमरे से, आरपी दानी
0: जी। कैसे हैं आप?
1: देर हो गए फोन लगा के, अभी ला के लग रहा है, और सब ठीक चल रहा है
0: जी। बताइए, आज कौन सी फिल्म का गीत सुनवाया?
1: मैंने को सुनना है फिल्म है ये राजा, गायक का रहेगा नहीं मोहम्मद रफी।
0: अरे वाह, क्या बात,
1: गीत के बोल है ये दुनिया है मैं फिल्म मेरे काम की नहीं, ये वाला गीत है।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत चुना है आपने जी, चलिए सुनवाते हैं ये गीत आपको।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हेलो विवानी, नमस्कार, किन से बात हो रही है हमारी?
3: जी, मैं जीवन लाल पंडित बोल रहा हूँ, उड़ीसा भुवनेश्वर से।
2: जीवन लाल जी,
3: जी
2: जी, और बताइए कुछ अपने बारे में।
3: जी, सब ठीक चल रहा है, अभी MBBS ऑफ फाइनल ईयर चल रहा है, अभी आज रात तक 10 बजे प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी।
2: हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका परीक्षा बहुत ही अच्छा जाए और परिणाम भी बहुत ही अच्छा आए।
3: जी, धन्यवाद।
2: और बताइए, आज आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगे?
3: जी, आज आप मुझे सुना दीजिए हिंदी फिल्म जहर।
2: जी,
3: श्रेया घोषाल की आवाज में है, जो गीत है
2: जी,
3: अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम।
2: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत चुना है आपने। चलिए सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हेलो इवानी, नमस्कार।
3: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
2: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
3: मैं पूनम बोल रही हूँ, प्रेम झील धनोरा बस्तर से।
2: जी पूनम जी, आपकी आवाज आपका परिचय दे रही है।
3: थैंक यू मैडम जी, इतने श्रोताओं के बीच भी हमारी आवाज को पहचानने के लिए।
2: जी क्या करें, आपकी आवाज ही इतनी खूबसूरत और इतनी मधुर है।
3: थैंक यू मैडम जी, दिल से शुक्रिया।
2: जी बताइए, कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया है मैडम जी, अभी तो स्कूल छुट्टी हुई है तो आ रही थी, मैं रास्ते में हूँ तो मैं फोन करके देख लेती हूँ। वाणी में बहुत दिन हो गया फोन नहीं की, बोल के लग गया मैडम जी।
2: जी हमें बहुत खुशी हुई आपने फोन किया तो।
3: हमको भी बहुत खुशी हुई मैडम जी, आपसे बात करके फोन लग गया तो।
2: जी जी,
3: और आप सब कैसे हैं मैडम जी?
2: जी हम बहुत अच्छे हैं।
3: अच्छा ही रहना चाहिए, हर हाल में इंसान को अच्छा ही रहना चाहिए।
2: बिल्कुल, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए।
3: हाँ जी जी
2: जी, है ना।
3: और सुख दुख तो लगे ही रहते हैं जीवन में मैडम जी, आप दुख को लेकर बैठे रहेंगे थोड़ी ना होगा। यदि किसी से अपन मुस्कुरा के बात करेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और अपन खुद को भी अच्छा फील होगा ना।
2: जी जी, पूनम जी तो बताइए, आज आपको कौन सी फिल्म?

0: का गीत सुनवाएं।
1: हमारे इधर तो बहुत जम के बारिश हो रही है मैडम जी, बारिश से रिलेटेड गीत है, उसको प्ले कीजिएगा। फिल्म का नाम है अंदाज
0: जी।
1: हाँ, गीत का बोल मैं थोड़ा बता देती हूँ मैडम जी,
0: जरूर।

0: क्वालिटी भी अच्छा लगेगा और अपने खुद को भी अच्छा फील होगा ना।
1: जी जी पूनम जी, तो बताइए आज आपको कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं?
0: हमारे इधर तो बहुत जम के बारिश हो रही है मैडम जी, बारिश से रिलेटेड गीत है, उसको प्ले कीजिएगा। फिल्म का नाम है अंदाज
1: जी।
0: हाँ, गीत का बोल मैं थोड़ा बता देती हूँ मैडम जी,
1: जरूर

जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा।

0: छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: दोस्तों, कॉल करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
4: दोस्तों, हेलो युवानी की रिकॉर्डिंग हम प्रत्येक गुरुवार को 3:30 से 4 बजे तक करते हैं। आप हमसे बात करने और अपने पसंद के गीत सुनने के लिए हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। हमारा पहला नंबर है 222666 यानी 222666। साथ ही हमारा दूसरा नंबर है 222160 यानी 222160। दोस्तों, इन नंबरों के आगे जगदलपुर का STD कोड 07782 लगाना ना भूलें।
3: हम उम्मीद करते हैं हमारा आज का यह कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा।
4: श्रोताओं, जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए आप भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत कीजिए और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए।
3: इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ आज के युवाणी कार्यक्रम में बस इतना ही।
4: कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। मैं पराग चंदेल।
3: मैं पूनम भारती।
4: नमस्कार।

युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की

0: स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फॉर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरला में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए।

0: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहिन है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के अवैया दू बच्छर मा देश भर के 500 शहर और कस्बा मन मा विस्तार करे जाही। पल्स पोलियो अभियान के तहत काली 28 जून के 5 बच्छर तक के लैका मल्ला पिलाए जाही पोलियो के खुराक। औ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 28 जून के आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन मन ले कर ही अपन विचार साझा। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहिन है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के अवैया 2 बच्छर में देश भर के 500 शहर और कस्बा मन में विस्तार करे जाही। गुजरात में भारत टैक्सी के शुभारंभ करत हुए श्री शाह ये पहला सरकारी क्षेत्र में एक ठन क्रांतिकारी कदम बतेन। उमन कहिन कि भारत टैक्सी के उद्देश्य चालक मल्ल सीधा लाभ पहुंचा के निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। श्री शाह डेयरी उत्पाद ले अमूल सहकारी अभियान के सफलता के घलो उल्लेख करें। प्रदेश में काली 28 जून ले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाए जाही। एकर तहत जन्म से लेके 5 बच्छर तक के 35,98,000 ले ज्यादा लैका मल्ला पोलियो के खुराक पिलाए के लक्ष्य रखे गए है। अभियान के संचालन पर 28,000 टीम मन के संग 57,000 ले ज्यादा वैक्सीनेटर तैनात करे गए है। अभियान के दिन छुटे हुए लैका मल्ला अवैया 2 दिन तक आने यानी 29 और 30 जून के घर घर जाके खुराक दे जाही। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वी आर भगत बतैन कि दूरस्थ गांव वनांचल क्षेत्र शहरी बस्ती ईटा भट्टी निर्माण स्थल और प्रवासी और घुमंतु परिवार मन तक पहुंच के लेका मल्ला पोलियो के खुराक दे जाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 28 जून इतवार के आकाशवाणी के मन के बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन मल्ले अपन विचार साझा करही। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम के 135वां एपिसोड होही। कार्यक्रम के प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सबो चैनल AIR न्यूज के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप में करे जाही। संगे संग AIR न्यूज DD न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल मन में घलो एकर सीधा प्रसारण करे जाही। हिंदी प्रसारण के तुरते बाद क्षेत्रीय भाषा में घलो कार्यक्रम के प्रसारण होही। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बच्छर पूरा होई ऊपर छत्तीसगढ़ में घलो 29 जून ले 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाए जाही। ये दौरान प्रदेश भर में सहकारिता ला बढ़ावा दे बर आने आने कार्यक्रम के आयोजन होही। रायपुर में अवैया 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर सहकार मेला और संगोष्ठी के आयोजन करे जाही। इमा मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होही। सहकार मेला में सहकारिता क्षेत्र के उपलब्धि और सफल मॉडल मन के प्रदर्शन करे जाही। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता बतैन कि 6 जुलाई के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह डहरले अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 ठन पैक्स मन में गोदाम निर्माण काम के भूमि पूजन करे जाही। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान काली 28 जून के नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के अध्यक्षता करही। 2 दिन के सम्मेलन में सबो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मन के ग्रामीण विकास मंत्री वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मन समग्र ग्रामीण विकास ऊपर विचार विमर्श करे बर सकलाही। बैठक में प्रमुख परियोजना मन के समीक्षा और ग्रामीण भारत बर भविष्य के रूपरेखा तैयार करे ऊपर घलो विचार विमर्श करे जाही। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कहिन है कि प्रदेश भर में वीर शहीद मन के स्मृति ला चिरस्थायी बनाए बर विशेष अभियान चलाए जाही। एकर तहत गांव मन में सामुदायिक भवन चौक चौराहा और दूसर सार्वजनिक स्थल मन के नामकरण शहीद मन के नाम में करे जाही।

0: संग जेन जगह मा नक्सल हिंसा के बड़े घटना होए हे उहां उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारक मन के निर्माण करे जाही ताकि अवैया पीढ़ी शहीद मन के सर्वोच्च बलिदान ले प्रेरणा ले सकें। ये बात उमन काली कांकेर मा नक्सल पीड़ित परिवार और शहीद जवान मन के परिजन मन ले मुलाकात के दौरान कहीं उहे उप मुख्यमंत्री हा नारायणपुर मा पुनर्वासित युवा मन ले घलो मुलाकात कर उनला गांव के विकास मा भागीदारी निभाए के आह्वान करीन। ये दौरान उमन युवा मल्ले पुनर्वास केंद्र मा मिलत सुविधा प्रशिक्षण और रोजगार के जानकारी लीन। उमन जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित सर्व आदिवासी समाज के बैठक में घलो शामिल हुईन और समाज के लोगन मल्ले माओवाद मुक्त बस्तर के नव निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाए के आह्वान करीन। उन्हें उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा हा कांकेर जिला के ग्राम किसकोड़ो में जन चौपाल लगा के ग्रामीण मन के जन समस्या ला सुनीन। उमन कहिन कि किसकोड़ो ला आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आप गुबाड़बो बाती समाचार को ती। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा आज सुकमा जिला के जगरगुंडा चिंतलनार पुवर्ती और सिलगेर के दौरा करीन। यह दौरान उमन पुवर्ती और सिलगेर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र मन के निरीक्षण करीन। संगे संग अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होके महिला मल्ले चर्चा करीन। श्रीमती राजवाड़े हा सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र लस्केपारा छिंदगढ़ के पोषण वाटिका मालिका मन के संग मुनगा और पपीता के पौधा लगाइन। ये मौका मौमन हर घर मुनगा घर घर सुपोषण के संदेश देवत हुए पौष्टिक आहार पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता के आह्वान करीन। महासमुंद जिला के बलौदा बाजार बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक मा हीरा खनन लले के तैयारी तेज हो गए है। NMDC CMDC लिमिटेड के निदेशक मंडल के नई दिल्ली में आयोजित बैठक में ये परियोजना के अवैया चरण में लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग शुरू करे के निर्णय ले गए है। ये निर्णय ये क्षेत्र में हीरा के वास्तविक भंडार के वैज्ञानिक आकलन कर ही और भविष्य में व्यावसायिक हीरा खनन के मार्ग प्रशस्त कर ही। निर्णय के अनुसार बड़े व्यास के ड्रिलिंग ले किम्बरलाइट पाइप में मौजूद हीरा भंडार के सटीक आकलन करे जाही। एखर बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होही जेखर आधार में व्यावसायिक हीरा खदान विकसित करे के अंतिम निर्णय ले जाही। प्रदेश में रबर टायर के बिना आयरन केज व्हील वाला ट्रैक्टर मन के सड़क में संचालन ऊपर रोक लगाए गए है। परिवहन विभाग नियम मन के उल्लंघन करैया मन ऊपर चालानी कार्रवाई के निर्देश दे है। ऐसन पहिया मन के उपयोग सिर्फ खेत में किसनहा काम बर करे जा सकत है। मुख्यमंत्री IT फेलोशिप बर ऑनलाइन आवेदन के आखिरी तारीख बढ़ा के 7 जुलाई कर देगे है। ये योजना के तहत MTech डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेवैया चयनित विद्यार्थी मल्ला हर महीना 50,000 रुपया फेलोशिप दे जाही। ट्यूशन फीस के पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन कर ही। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहाल ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिला की चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले कर ही। ए बखत के अंक में जसपुर जिला के बारे में जानकारी दे जाही। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 3 दिन के दौरान प्रदेश के कुछ एक जगह में भारी वर्षा होने की संभावना जताए है। उन्हें कुछ एक जगह में गरज चमक के संग गाज गिर सकत है। पाछू 24 घंटा के दौरान राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ एक हिस्सा में हल्का ले मध्यम वर्षा दर्ज करेगी। यही बीच मौसम विभाग कहिन है कि अवैया 3-4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ समेत गुजरात मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ एक क्षेत्र में आगू बाढ़े के परिस्थिति बने हुए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक फेर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहिन है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के अवैया 2 बच्छर में देश भर के 500 शहर और कस्बा मन में विस्तार करे जाही। पल्स पोलियो अभियान

0: तहत काली 28 जून के 5 बच्चर तक के लैका मल्ला पिलाए जाही पोलियो के खुराक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 28 जून के आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन मल्ले कर ही अपन विचार साझा। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे संप्राप्तः। तमिलनाडु राज्ये वाइको इत्यस्य नेतृत्वे एमडीएमके दलेन डीएमके दलेन सह स्वीय नववर्षीयं गठबंधनं समाप्तम्। प्रसिद्धः तमिल चलचित्र अभिनेता निदेशकश्च के भाग्यराजः अद्य चेन्नय्यां पञ्चत्वे विलीनः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आकाशवाण्याः मन की बात इति जनप्रिय मासिक कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः सह स्वीयं मनोगतं विनिमयीकरिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो अवदत् यत् ट्रंप प्रशासनं भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यन्तं निकटतमेषु रणनीतिक सहयोगिषु अन्यतमं मन्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु फीफा विश्व कप स्पर्धा मालिकायां मिस्र देशः ईरान देशेन सह अन्तिमे जी समूहस्य द्वन्द्वे 1-1 इत्यंकांतरालेन समतावाप्य प्रथमतया फीफा विश्व कप स्पर्धायाः नॉकआउट इत्येतस्मिन् चरणे प्रविष्टः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य राजधान्यां विक्टोरिया नगरे संप्राप्तः। सामाजिक अंतर्जालीय प्रेषिते संदेशे श्रीमोदिना विमानपत्तने सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन कृत भव्य स्वागतस्य भूरी भूरी प्रशंसा विहिता। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सेशेल्स देशः हिंद महासागरे भारतस्य एकः सामुद्रिक सहयोगी दृढः मित्रदेशश्च वर्तते। मोदी अवोचत् यत् सः अस्याः यात्रायाः माध्यमेन उभयोर देशयोः दीर्घकालीन संबंधान् सुदृढीकर्तुं नागरिक कल्याणाय सहयोगं वर्धयितुं संवादं प्रति आशान्वितो विद्यते। अनेन सहैव तेन विमानपत्तने भारतीय प्रवासी जनसमूहाय अपि हार्दिकं स्वागतार्थं धन्यता वचांसि ज्ञापितानि। गदितं च यत् भारतीय प्रवासीभिः यथा स्वसंस्कृतिः संरक्षिता सा श्लाघनीया वर्तते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स देशस्य ऐतिहासिक 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य मुख्य अतिथिः भविष्यति। तमिलनाडु राज्ये वाइको इत्यस्य नेतृत्वे एमडीएमके दलम डीएमके इत्यनेन सह नववर्षीयं गठबंधनं समापितवान्। दलस्य

0: तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
0: 8700001424। सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700001424।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700001424।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
0: 8700001424।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है गोंडी लोकगीत, कलाकार हैं कीचोराम और साथी।

आप सुन रहे थे गोंडी लोकगीत, कलाकार थे कीचोराम और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी

0: संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 28 जून को 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांव में सामुदायिक भवन, चौक चौराहों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा। साथ ही जिन स्थानों पर नक्सल हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहां उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कल कांकेर में नक्सल पीड़ित परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। वहीं उप मुख्यमंत्री ने नारायणपुर में शहीद परिवारों और नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने पुनर्वासित युवाओं से भी मुलाकात की और उनसे गांव के विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। वे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित सर्व आदिवासी समाज की बैठक में भी शामिल हुए और समाज के लोगों से माओवाद मुक्त बस्तर के नवनिर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले के ग्राम मर्दापाल स्थित कन्हार गांव में साप्ताहिक बाजार पहुंचकर ग्रामीणों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर क्षेत्र की आवश्यकताओं और जनजीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा की। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कांकेर जिले के ग्राम किसकोड़ो और बोड़गांव स्थित CAF कैंप में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश में कल 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 वर्ष तक के 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। अभियान

संचालन के लिए 28,000 टीमों के साथ 57,000 से अधिक वैक्सीनेटर तैनात किए गए हैं। अभियान के दिन छूटे हुए बच्चों को अगले 2 दिनों तक यानी 29 और 30 जून को घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. वीआर भगत ने बताया कि दूरस्थ गांवों, वनांचल क्षेत्रों, शहरी बस्तियों, ईंट भट्ठों, निर्माण स्थलों तथा प्रवासी और घुमंतू परिवारों तक पहुंचकर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में भी 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य

0: वर्चुअली भूमि पूजन होगा और सातों दिन 2058 पैक्स में सारे जिला बैंकों में सारे जिला मत्स्य बैंक और जितने भी वनोपज संघ है, बुनकर संघ है, दुग्ध संघ है, एनसीडीसी है, एनसीसीएफ है, नेफेड है, इफ्को है, क्रिपको है, राज्य सहकारी संघ है, सभी संगठनों में पूरे सात दिन तक बड़े कार्यक्रम होंगे।
1: महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सुकमा जिले के जगरगुंडा, चिंतलनार, पूर्ववर्ती और सिलगेर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती और सिलगेर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं से चर्चा की। श्रीमती राजवाड़े ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र लस्केपारा चिंदगढ़ की पोषण वाटिका में बच्चों के साथ मुनगा और पपीता के पौधों का पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने हर घर मुनगा, घर घर सुपोषण का संदेश देते हुए पौष्टिक आहार, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का आह्वान किया। वहीं श्रीमती राजवाड़े ने बीजापुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि माओवाद मुक्त बीजापुर अब विकसित बीजापुर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचार की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। महासमुंद जिले के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में हीरा खनन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। NMDC CMDC लिमिटेड के निदेशक मंडल की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इस परियोजना के अगले चरण में लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री IT फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। इस योजना के तहत MTech, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रति माह 50,000 रुपये फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। प्रदेश में रबर टायर के बिना आयरन केज व्हील वाले ट्रैक्टरों के सड़कों पर संचालन पर रोक लगाई गई है। परिवहन विभाग ने नियमों वालों पर चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे पहियों का उपयोग केवल खेतों में कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय PIB रायपुर द्वारा आज जगदलपुर में वार्तालाप मीडिया संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और उपलब्धियों का लेखा जोखा साझा किया। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की कल्याणकारी नीतियों से बस्तर नक्सलवाद के अंधेरे से निकलकर विकास और विश्वास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के सतत परिवर्तन के लिए शिक्षा और विकास दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बने हुए हैं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सांसद महेश कश्यप ने कहा कि बस्तर के आदिवासियों के सामाजिक उत्थान, सुरक्षा और सतत विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा बस्तर में विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं पर चर्चा की। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में जशपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

0: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ सहित गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जांजगीर चांपा के बहेराडीह में स्थित वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल में राज्यस्तरीय मशरूम महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें जांजगीर चांपा सहित विभिन्न जिलों के मशरूम उत्पादक किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। महासमुंद जिला पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर रेहटी खोल के पास नाकेबंदी कर ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रही एक कार से 51 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 25.5 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक कंपनी के अधिकारी के साथ 20,70,000 रुपए ठगी होने का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 28 जून को 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर की स्वर।

0: गोटे जिले के बाट हम जगदलपुर में चितरकोट से तीरथगढ़ घुमरा से
1: संग संग कोटमसर दंडक गुफा और कई ठन गुफा मन आसो
0: गुफा मन आसो और संगे संगे बल्लो ने हम जो प्राचीन
1: मंदिर मन बला
0: मामा भाचा मंदिर बलुआ हुना से और नारायण पाल चो विष्णु मंदिर आसे और दंतेवाड़ा नाम चो दंतेश्वरी माई आसे
1: तो आसे
0: असन कैक पर्यटन स्थल आसे और प्राकृतिक सौंदर्य बल्ले खून जगह मन बला सत
1: देश दुनिया निकाय की आजकल खुबे रान मन कटते गेली सर कई जगह तो रान मन आसे बल नहीं
0: आसे बल
1: मान तेरे भी बोले हम जो बस्तर जिला ने रान मन के बचाव संगलु से और एक हमेशा संगाउन रहता
0: है संगाउन रहता है हम जो ये जिम्मेदारी है
1: जिम्मेदारी
0: और हम ही जैसन कहा है हम झरना पहाड़ी जाऊं से हूं बाटे अगर हम के कचरा फैला तो बोलू है
1: ये तो नंगत घोटनो है गलत
0: है उन्हीं का हम जहाँ जाऊं से होता कहीं खाते बीतिन पैकेट बीतिन झिली तो उनके हम ही आप लोग संगे भोड़ो नानो काहे की हुता पकालो ने कचरा हुआ है और हम जो जे दखा दे से सौंदर्य बल हुन बल जी का अच्छा नगद लागुन हुआ
1: है और संग संग काई ना जिटकु जन कोनिज बल जन पर्यटक स्थल आसे नहीं उता गोड़ कचरा पेटी रह से ची
0: हाँ रह से
1: जोन बले पॉकेट नाले जोन पेपर कहीं बल बाचे से उनके उताई संग
0: हाँ उताई संग होने तो रहा
1: है तो ऐसा ने कहा है कि खोनी बल बाहर ले अलग अलग देश दुनिया च लोग है सोत ने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका बाट ले बोले
0: अमेरिका बाट ले बोले
1: तुम मन देख लो का सोच दे
0: हाँ ये ता तो ऐसा ना समझी कर सोत और हम जो बस्तर संभाग ने इतरो अच्छा अच्छा लोग आसा दयालु बलुआत ने कोनी बली लेख उनके मान धन बढ़िया करुआ हम पानी पेज होले भात वात रे लेख उनके बल खाऊ दे तो ये हम जो विशेष काय बोलत हन चीना है बोलु ने केवल फुलक तोर नु है हम जो जे उदारता बोलत हन के बनौन रख तो रहा और सौंदर्य बोलो ने आजकल तो हम जो झरना मन अदा पानी घसर तो शुरू हुआ है
1: तो वर्षा मर ली
0: उतरन फिर और देखो कि मिरुआ है ए भी कैक असन झरना मन बला सो जे के हमी नि देखलो से ने गांव चो भीतरे भीतरे दादा दीदी मन चो गांव मन हुन मन जान सो मानतर कोनी कोनी आजकल सोशल मीडिया ने देखा दे सुसन धीरे धीरे देखा दे से
1: जो सन घुमर बल ने चित्रकोट जलप्रपात और तीरथगढ़ की छी हम जानते हूं मात्र हांदावाड़ा से और बल कैक अच्छा अच्छा
0: हांदावाड़ा फूलपाड़ ये बात फिर काय बोलवा था आजकल नवा नवा खूबे झरना मन दखा देते जा सत
1: हो तो ये सब हम जो बस्तर ने प्रकृति ले मिरलीस ने तो ये हम जगह वाला अच्छा है और सब का अच्छा ही है
0: सब का अच्छा है कि हम के अच्छा बनो उन रख तो रहा है
1: तो ये तो गोठोली ना जिटकु मातर संग संग और बल नंगत इधर गोठ मन आसो अले ए मन के बोले अमरम
0: अमरम दे होते
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा कीवा लेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़ा नोर और सामान तच

0: नोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकिन एंग प्रतिशत टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूड चक्काना गाड़ी एंग प्रतिशत जीएसटी मौला तेने दोरकिता अदेन के अव सोबेर कम टैक्स त गाड़ी बने मास मंता।
1: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से

0: हाँ चैतु, ये तो रली नंगत गोट मन्ने।
1: हाँ
0: हमी कार्यक्रम भित्रे ज्ञान ध्यान चे गोट संगे संगे असन बले गोट मनानु रहा हूँ जसन भेट वार्ता बुलतने। और ये भेट वार्ता में हमी धार्मिक कश्यप आसे और एक भेट करला छो थामचो श्री बलबीर संग कच्छ और एक सांगला छो समूह स्व सहायता समूह।
1: हाँ मतलब कहे कि जो महिला स्व सहायता जो समूह है कसन काम कर सत कसन महिला मन के सहायता करे से ये सब भीतरे आसे
0: आसे
1: मोबाइल से काम बोल सुनो और दादा दीदी मन सुनत बोलते रहे मैं
0: आले सुनो दे मते।
1: हाँ
2: सबले आगे नाव संग काय नाम है?
3: मोर नाव है श्रीमती धार्मिका कश्यप।
2: अच्छा तो धार्मिका कश्यप बोले तुम छो जो गाँव आए बोलू भे?
3: मैं नान घुरा रहा है। हाँ। और हमी ये स्व सहायता समूह जुड़ लुआ छू।
2: अच्छा तो धार्मिका तुम छो जो स्व सहायता समूह छो नाव का है?
3: माँ दंतेश्वरी दुर्गावती नारी सबल समूह।
2: अच्छा तो ये जो स्व सहायता समूह आए बोलू भले के बे मोर करला कितना बरस
3: ये 2004 ने समूह बनला।
2: अच्छा बोले तुम चो जो समूह ने है बोले पूरा महिला मना सर। हाँ। कितलो लोग आसा साले?
3: पूरा 10 जन आचू।
2: पूरा 10?
3: हाँ।
2: बोले सब नान घुर छो?
3: हाँ। एक जन पोटिया पार्लर है 9 जन नान घुर रहे लगे आचे हमर गांव लगे।
2: तो दक बोले ये जो समूह के बोले काम कर दो काजे सबले पहले कहीं पंजीयन रजिस्ट्रेशन वगैरह करो पड़वे का?
3: हाँ हमारे पंजीयन होला छे रोजगार कार्यालय ने हम करायलु छु।
2: अच्छा तो बोले पंजीयन होलो बाद ने बोलू बे सबले पहल तुम मन काय काम के मोर करलास?
3: हाँ मैं सबसे पहले होटल चलायलु। ये होटल ने पारी लगाए देलु सब तीन तीन जन आज ही तीन जन और पारी आए तो कालिक तीन जन। और जैसा शुक्रवार दिन हमारे गांव ने हाट हुआ है तो वहाँ ये दिन कौन तो चावल धंधा करते रहो तीन जन और चार जन बाजते रहो था दिन खूब बाजार बोस हुआ है तो हाँ दिन चार जन होटल दख बारा बाकी तीन जन टमाटर तीन जन चावल साग सब्जी हम थी बिक पा रहे बाकी लोग।
2: अच्छा तो दक होटल ने बोलू बे काय काय मतलब जिनिस मन में बनान बिकतर ला साले?
3: बोबो भजिया बूंदी जलेबी ई बीती मन बनाए हम बिक पा रहे।
2: अच्छा हाँ तो बोले ने ये जो बोले खाजा बीती सामान है बोले अच्छा चले
3: चलते रहे खिंडक मिल पा रहे।
2: हाँ हाँ तो जैसन कि तुम 10 जन आसास महिला मन सोचा था समूह ने तो ये जो पूंजी आए बोले तुम खुद करलास की कहीं सरकार बांटले?
3: नहीं हमी साप्ताहिक एक एक सदस्य ये 20-20 रुपया जमा करवा रहा है हाँ की रूं रहूं ज्यादा पैसा हो बाक हम बोलू कि ये पैसा का करबू तो ये गांव ने होटल निया एक ठन होटल आज तो हम बायले मन होई करी होटल खोलू। अच्छा। कुछ मुनाफा बोले हो ऐसी बोली कर शोर होलू और होटल खोलू है पैसा हमारी हाथ पैसा है।
2: अच्छा तो जैसन की जैसन होटल बलिया सब्जी बलिया चाउर चुन बोला बिकते रहला तो ये जो हिसाब किताब है बोलू कसन कसन संग
3: हम सब अपना अपना पैसा है लगान भर है संजोला जैसे सामान बिकलू ये मन होटल और पैसा बल है लग निकाल बारे हम सामान और पैसा खाए लगने बारे और मूलधन के अलग दे बारे हम मन और जैसन मुनाफा हो बारे ताकि आपस में 40-50-100 हो जब तक बोले एक एक जन के हुए सी हम हिसाब ने 10 बाटा कर पा रहे।
2: अच्छा बल्ले सब बराबर
3: बराबर कर बार है कोनी ज्यादा नहीं ना कोनी कम नहीं।
2: बल्ले बल्ले तुम चो जो मन ने आए बोलू बे कसन विचार होली कि स्व सहायता समूह बनान बैठे सन काम करवा बोले कहाँ दखलास कि कोनी सांगला?
3: आगे झांसी की रानी स्व सहायता समूह रे तो हाँ ती फिर रोत और हम ती गाँव और समूह मन के निकालू हम मन सब समूह ले एक एक जन दुई जन जन करवा ले गर लोग जो इन्हें दौड़ धूप बल करवा असन लोक मन के करी एक ज्वाइंट समूह बनाए लू ये दुर्गावती समूह कि के बीच के नहीं हो भाग दौड़ करके सको एक जैसा हम के तो इत बल हाक देवा तो हम ती कहीं काम पड़ ले एक हार हाँ चित्रकूट जाए रू हम के ये राष्ट्रपति जी आई रोत प्रतिभा पाटिल तो ताकि हम मिल के बल जाए रू हमारे समूह के चुनी रहा है तो हाई थाना हम जाई कर मिली बले आए लू।
2: अच्छा अच्छा चित्रकूट ने? अच्छा बोले उताल कहीं तुम के कहीं गोट सांग ला कहीं समूह के चला तो कर
3: ये? हाँ ये सवाल हम के भाई मन बल पूछ ले तुम बायली टोकी हुई तक कर बास बोली करी तो मैं चढ़ दे बोली कि मैडम तू तो पूरा देश के संभाल लिया सतक बड़े तो रिल तो हमको प्रेरणा मिल ला बोली करी मैं बोल ली।
2: अच्छा बोले ने हिम्मत चो काम
3: हिम्मत दे
2: तो धार्मिका ये सांग जैसे कि होटल भी थी बनलीस का।

0: भी बोले चले
1: नहीं, हम रेडी टू वेब चलाए बोच हमारे लगे थोड़े ज्यादा पैसा होला तो बाल विकास परियोजना बोलवा तिथि ले ये निकलला कि रेडी टू जाके पूरा पोषक आहार बोलवा है चलाए बाका जी जार लगे 1 लाख ले ऊपर पैसा होते रहे बैंक ने हाँ समूह धरते रहे तो अड़क दे हमारे लग 1.5 लाख रुपया रहे पूरा समूह में ये हमारे मूलधन तो हम ही नहीं है फार्म भर लू और हम धर लू।
0: अच्छा, ये रेडी टू ईट ने बोले तुम काय करो काय बनाओ पड़वा
1: हमी सरकार बाटले सोसाइटी गेहूं आवा है और फल्ली चना और काय तो जतक बस सामान है शक्कर सोया वगैरह ये सब के हम हाथ ले घेनु और पहले तो हम गेहूं की साफ करूं अच्छा भुंजी करी और तार बाद ने फल्ली चना ये मन बस साफ करूं और एक ये सोयाबीन के पहले साफ करी तक उबालू ताकि फिर तेल भी तिया है।
0: अच्छा,
1: तो ताकि उबाली कर तार पानी थोड़े निकाल के लगवाए तक सुख लाल तक बल भाजू और सबके तार मात्रा अनुसार ने मिलाऊ जैसे 44 किलो गेहूं 13 किलो चना 9 किलो मूंगफली और सोयाबीन 9 किलो और शक्कर 22 किलो ये सब के मिलाए करी मिल ने फिसाऊ आटा चक्की ने।
0: अच्छा,
1: और तार बाद ने फिस लायल नहीं आई करी ये काय तो करूं तेल से मोयन करूं और ताके पॉकेट मन ने हम ही भरू जैसे 750 960 1200 750 जो 3 से 6 वर्ष बच्चा मन आंगनबाड़ी जगह ताके दे और 960 ये गर्भवती और पोषक माता जो दूध पिलाए बा माता और पेटे हरिन के ये दुई जन के दू और जो बीमार आज ये कुपोषित मतलब गंभीर रूप ने बीमार आज तक 1200 ग्राम दू।
0: अच्छा, तो ये जसन के पूरा बना लो जो बना तो जो सामान है तो तुम खुद घेन सास
1: हम यहाँ तर पैसा घेनू।
0: अच्छा,
1: और इतिल पैसा मिर लाले जसन हमार खाता आज स्टेट बैंक ने इतिल पैसा मिर लाले उधारी के छुट्टी दे पूरा जब तक हम उधार उठाए रहूं पूरा छुट्टी दे।
0: अच्छा, तो ये जो पूरा पॉकेट जो बन लो बीती क्या है बोलू बे पूरा उनका आम तो होता लान तो मतलब ने तो कौन नहीं हुआ
1: हमें पिकअप धर लुआ चु किराए ने।
0: अच्छा,
1: जब तक आंगनबाड़ी मन ने आंगनबाड़ी बीती मन मैडम मन हमके लिख दे बात कि हमार थाना तक खपत आए जैसन कौन थान 1 क्विंटल बल खपत हुआ 1.5 क्विंटल बल्ले 1 माह का जे तो ताके हम ही पिकअप ने छड़ी दे 1 महीना 1 हर छड़ी दे रहा हूँ।
0: अच्छा, बल्ले हर 1-1 महीना का जो पूरा बांटते
1: जाओ। हाँ, पूरा बांटू।
0: हाँ, तो ये जो हर आंगनबाड़ी ने जो बांटते भी थी काम है बोले भी तो तुम जो कहीं एरिया क्षेत्र आसे कि इतलो विकास खंड ना ले इतलो केंद्र।
1: हाँ, मैं 27 आंगनबाड़ी केंद्र ने बांटू जो नानगुर सेक्टर ने बोला थामरी बाटे है पूरा है बाटे बांटू जैसा ने कवाली होएला नांगलसर होएला कोलावड़ा ये पूरा ये नेता नारोगरा हमरी एरिया आया हुआ है।
0: अच्छा,
1: ये पूरा गांव ने हम दियो बाम नारा सोगरा सब।
0: अच्छा, तो ये जो बाट तो काजे बोले आदेश तुमके कहाँ ले मेरे से
1: ये परियोजना ऑफिस ले। अच्छा, इतिले मिल हुआ है पूरा मतलब असन तो मैडम मन दुआत है मैडम मन के जानकारी परियोजना ऑफिस ले मिल हुआ है तो हाँ मन हम के संग हुआ कि अतक हमार था ने खपत हो से चतक दिया से बली करी।
0: अच्छा,
1: हाँ मात्रा अनुसार ने हम दे झिल्ली वगैरह हम इतिल तितिर गाँव ले घेनू शहर ले घेनू छपला बीती।
0: अच्छा, तो ये जो बोलू बे हिसाब किताब है बोलो जोन बाट सास कौन आंगनबाड़ी ने कितलो सामान के तो चो हिसाब किताब फिर कसन
1: हमार लग रिकॉर्ड आचे डायरी बनाई लुआ चु रजिस्टर मन ए जब तक हम दे हूं ने ताके हम नोट कराऊ पूरा लिखी दे हूं हाई थी और लिखी करी आंगनबाड़ी मैडम मन के ये हाई थी दस्तखत बल कराऊ और आनु तक दे लू बोले पूरा हिसाब किताब हम ही करू।
0: अच्छा, फिर उन पूरा हिसाब किताब के फिर तुमके पैसा मेरे तो कहां जमा करू पड़े से
1: हम जगदलपुर स्टेट बैंक शाखा ये कलेक्टर लगे आचे नहीं हाई थाने हम ही आऊं हाई थाने हम पैसा निकालू।
0: अच्छा,
1: हाई थाने हुआ है हमार पैसा।
0: अच्छा, नहीं जो उन खर्चा भी थे हिसाब किताब कहाँ देख पड़े से
1: खर्चा जैसा हम ही उधार धरू तारबल गोट कापी बनाई लो अचू ये कि कतक हमार सामान हो ला आचे बोली पूरा के जैसा इतिल पैसा मिलू है केवे तो 70,000 केवे 80 केवे 1 लाख असन मिलू है ये खर्चा अनुसार ने बनू है ताकि हम पहले ये उधारी छुट्टी दे जतक बल आए तार बाद ने जतक पैसा बाचू आए तक हम आपस नहीं बांटू जसन एक एक जन पायले मन के 1200-1500 बल हो गए।
0: अच्छा, तो धार्मिक कश्यप ये सांग की ये जो 10 धाम तुम सदस्य आसाद बोले तो तुम चो मतलब जीवन ने कहीं परिवर्तन दखा दे महिला ने का चीज चो परिवर्तन हो लिया। हाँ, उन्नति बढ़ती
1: खूब

0: परिवर्तन होला कखन खूबे होला बोले आगे छोटे मोटे का जरूरत का जैसन लोग बोले आएला है तो कहीं ऐसा करू कर घन बाका बोल जैसन पैसा वैसा ना रहे हमारे मुनुष मन ना रहे कि टिकटाक के बल पड़ते रहे कि आए ले पैसा देवाए और करबू बोली करी घेनबू और बनाए देबू बोली ए ये सब नहीं हमारे हाथे पैसा रहसी है ये कोनी च लोग आसोत चाहे कोनी संगवारी मन आसोत तो हमें खुद घेनबू अच्छे और खुद बनाएबू अच्छे और आगे जैसन बीमार पड़ते रहूं चाहे बच्चा पड़ो चाहे हम ही बोले पीला झीला कोनी च बल बीमार पड़ ले जैसन गाँव नियम बनायल की एक महीना है 2 रुपया का जे हम उठाऊ और जैसन कोनी बाहर अधिक बीमार आ चत गाँव बल लोग तो ताके हम इलाज का बल पैसा दे रहा हूँ।
1: अच्छा बोले तुम जो समूह दूसर लोग के बोले अच्छा तो धार्मिक कश्यप ये सांग की जैसन की 10 झांचु जन महिला रह सोत बोले ने समूह के चला तो खेडे काम कठिन बोले है तो के भी कहीं ऐसा पैसा कोड़ी कहीं जी काटाना का
0: नहीं असन के भी ना हो तो बोले सबसे ही सलामत करूँ असन जैसन पैसा बल निकाल के आऊँ तो पूरा 10 जन पूरा आऊ और उधर ही बल हम छूटू तो पूरा 10 जन में से करी छूटू जार हम लागू तारथन बल नहीं देबू गोटक ऑटो आजकल तो ऑटो चल से ऑटो धरू और पूरा है छुट्टी दे और पाचे नहीं कर बांटू सब सामने छुआ है।
1: अच्छा तो जैसन कि तुम चो जो लाभ भी थी पैसा है बोले भी जितना जितना निकरा सास तब तब तुम्हें ऐसा बाट सास
0: बाट भी अच्छा एक महीना एक हर निकालो
1: एक महीने में खा तो गोटक बल्ले महिला के कितलो ऐसा आमदनी मेरे इस महीना दिन ने
0: ये 1200 से 1500 तक मिलू है।
1: अच्छा हर महीना ने बोलो ये जो स्व सहायता समूह जो काम है बोलो भी ये तो तुम्हें सब घर चो काम बूता करून बाती खाली समय ने करते रहे से बोलो
0: जैसा हम नियम बनाए लो चु 12 से 5 ए समय खाली रुआ बिहान बूता बहना करी सब की स्कूल तैयार करी ये खाना पीना करी हम जाऊं देखा जाए तो सोए बस समय बोले रुआ ये तो ए समय ना हम ये नियम बनाए लो 12 से 5 ये सब करूं और संज बेराई कर और अपना काम करूं घर। अच्छा, काम
1: तो घर चो कहीं काम ने कहीं बाधा तो
0: नहीं उल्टा खुश आचो तो हरी खोए बात बच्चा मन परिवार सब पीला चिला सब हरी ने आचो।
1: अच्छा
0: घर लो
1: तो बल्ले ने तुम्हें बल्ले 10 जान महिला में सुन बात इतलो अच्छा सलाह सुतुर ने ये जो काम कर सा तो आगे और तक के भी पूंजी बल तुझ सांगलो हिसाब ने पूंजी बल अच्छा है आसे
0: अच्छा आचे, आचे,
1: तो कहीं आगे कहीं दूसरा और कहीं काम धर तो विचार आसे
0: ये भी तो ये की चल रहा है देखबू बोल बचू जब तक दिन तक चल से सरकार नियम तो आए ने मान लो के भी और कई काम नहीं कर लाल और करबू बोली कर सोच लू आचू।
1: अच्छा हाँ तो देखिए तुम चो जन समिति ने तो 10 जान तो आसा मंत्र कई ज्यादा लोग जरूरत पड़ ले कहीं काम काजे कहीं दूसर लोग के बोले तो कहीं काम करो मन की मेहनत दे सा।
0: हाँ जैसन कई काम पड़ेला जो नर हम बनाए के ना सकलू नहीं हाँ इस समय ने 5 बजे हम घरे जाऊं बोल भी अच्छी तार बाद ने खाना उना बनाए करी 7 बजे जाऊं ये राती बेरा 7 से 11 तक और बनाऊं राती ये राती पूरा और कसन बोले हम देवर हमको जरूरी है मंगल के बाट हुआ था मंगुरार दिन तो और बिया ने ज्यादा काम दिने तो 6 बजे बोले आऊ ये और 10-11 बजे घरे जाऊं हाय दिन दिन हमार घर ये पीला जिला मन सब घर काम करुआत।
1: अच्छा
0: और हम इधर मतलब पूरा हाय तिर निपटाऊं।
1: अच्छा तो धार्मिक कश्यप भयम तो बोले इतलो अच्छा माँ दंतेश्वरी दुर्गावती नारी स्व सहायता समूह नानगुर ने 10 जान महिला में सुनवाती बोले अच्छा सलाह सुतुर ने करसास अच्छा बड़सास गाँव चो जो महिला मना सुन दे सेक दे जुहार राम राम
0: जुहार।
2: हाँ तो झिटकू
3: हाँ चाहे
2: तो खूबी अच्छा ये भेंटवार्ता रही ने
3: हाँ।
2: और ये भीतरे महिला स्व सहायता समूह जो जनमन कार्यकर्ता रहो श्रीमती धर्मिका कश्यप
3: हाँ।
2: और एमन संग भेंट कर रहो श्री बलवीर सिंह का
3: अच्छा अच्छा तो देखा हम तो ज्ञान ध्यान तो गोट गोठ्यालू ने ज्ञान ध्यान संगे हम ही गीत गोविंद बाड बोले सुरता करूँ से तो और दादा मन बल सुरता कर सत होती कि किदल दाय मूर कर दे हम चु गीत गोविंद के तो हम ही ज्ञान ध्यान संगे गीत गोविंद थरू ने उचिर से होनी का जी हम चल गोटोक गीत सुनाऊ दे मुदे गीत
2: गीता अली गीत के मन तो आप लोग गीत के आन ला से ने अली

0: हाँ तो अजीत को
1: हाँ चाहे तो
0: ये रसे नंगत गीत रही ने और ये गीत के गौरव दिलीप कुमार पांडे अरुण मुझे संगवारी मान
1: संगवारी मान
0: और ये गीत भीतरे चेता हाँ। दादा चेता दीदी मन बोलते रहो
1: हाँ। जगाते रहो
0: जगाते रहो हाँ। और ये समय आने तो जागतर सबके जरूरी छे
1: जरूरी छे जैसे हाँ। कि हमें गोठ्याते रहने ये सौंदर्य बोलवा था हम जो बस दरचो उतावल एक जागरूकता अनिवार्य है जरूरी है जैसे जल जंगल जंगल रह लेकिन हाँ। तेबे तो पानी रह दे
0: पानी
1: हिलते हुए तो झरना बने दे तेबे हम देखो जाऊ दे तो हनी का जो रुख राय मन के बदले नंगत जतन करते रहा हन मन के बल अगर गोंतोर नुआ जरूरत अनुसार ही उनके उपयोग ने अंतर आए
0: हाँ।
1: और
0: तो और असनी रुकपुट के बचान संगला ने हम जो बस्तर चो जन सुंदरता है हमेशा रहे देने
1: हाँ हमेशा रहे दे
0: और ये कोट संग मैं बलन से हम जाते समय आवे लोली विदा हाँ। मांगे बोलते ने हाले मैं मोटरा गढ़ रख सकले से तो विदा मांग
1: हाँ वाले बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांव करी दादा दीदी बोड़ू बढ़ाए संग जोरिया संगवारी के जातो पूरे मैं झिटकू
0: और मैं चैतू
1: हामी दोनों करूं से राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर की स्वर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी।

0: जुहार चैतो जुहार
1: जुहार आ झिटकु
0: हमर लिसने
1: हां हमर लेके
0: तुम जो बाट पानी पाना कसा नाही
1: हां जो बाट पानी तो ठेवून ठेवून मारे सी फिर मारे से फिर छांडे से असन अस नहीं होय से
0: अच्छा हां बल्लो ने जो चनी गिरे ने था ठेवून ठेवून गिरे से
1: हां तो आले तो आम्ही आजी किसान वाणी कार्यक्रम भीतर तो अमरलु ने
0: हां
1: तो आले आमच किसान भाई बहन मन के बोले सुरता करू वाले से
0: हां आय काय किसान वाणी कार्यक्रम सुनतो सपाय खेतिहार दादा दीदी भाई बहन संग झोरिया संगवारी के मैं झिटकू
1: और मैं चैतू
0: हमी दोनों करूं से जुहार।
1: तो झिटकू
0: हाँ चैतू
1: तो जैसा नामी गोटिया लू ने आजकल पानी बतर तो होली से
0: होली हाँ।
1: और खेती किसानी बल खूबे किसान भाई मन करे सोत
0: हाँ करे सोत आजकल भूरल ला सोत भूतान
1: हाँ और भूरलून बल रहत का है ने
0: हाँ।
1: तो खेती किसानी तो हम च माई मुरा
0: है माई मुरा है हाँ। आय का है हाँ।
1: हाँ। कोनी बाट जोंदरा लगा सोत कोनी बाट बाड़ी ने कोची लगा सोत मैंने सब काम चले से खेती
0: तो बोर बोटी के तो टमाटर के तो डांग बांगा काय काय सब लगा सो
1: सब लगाए सो मानतर ना हिटकू खेती किसानी के हन तो खेती हर दादा मन तो कर सो मानतर दीदी मन बोले
0: पाटकुती नहीं आता ऐसा ते गोड बोल सित काय काय की हुन मन चो बिना बल हम चो काम अजिक नहीं बने
1: हाँ।
0: हुन मन जसन की उड़ दे खत ने दे उनके बेड़ा ने छींच दे
1: हाँ।
0: कोना कोनी कुड़क तो हम दादा मन करूं से ने
1: हाँ।
0: मानतर हुन

0: बले पार्टी नहीं रसो थुन मन बले ढेला फुटा तो कोना कोड़क तो ये सब में हाथ बटा सो
1: हाँ और सब गोटा जसन किसान दादा मन तो राफा खोड़ के दे नांगर धरून बेड़ा जाए सत ने और भात साग नहीं रान लेवल नहीं खाद लेवल तुम दे ने नहीं ताकत नहीं रहे
0: ताकत नहीं रहे तो कसन काम कर दे फिर
1: कसन काम कर दे हाँ तो मेहरान मन खाए रसी भात साग चटनी जोन बल चापड़ा चटनी कहीं बल बना नहीं सत
0: मंडिया पेज बल धरून नहीं सत तो हनुमान नांगर ढेर तो बेरा चाह नहीं तो मंडिया पेज नहीं तो बासी भात के धरन भला अनुवाद हनुमान घर चुबुता के बल करवा और बेड़ा में उन भातिन बेड़ा बुता बल करवा और असन माता बहिन मन बला सत जे नांगर बल धरवा
1: हम तो बस्तर में हम खूबे दखा देवा हाँ
0: खूबे दखा देवा हनुमान बल हम चो मनुक मन चो असन डहा का मिलन भातिन काम में सहयोग देवा
1: हाँ जसन ये तो खेती किसानी बुन तो समय है ने जसन किनिक बड़े वाड़ में रोना जिक्त बीती रोपा लगा बीती ये तो मेहराज मंच जुगे कर सो
0: और आजकल खेती बाड़ी ने हनुमान चो योगदान खूबे रहे से बल्लो ने अच्छा दख लो ने की हनुमान हम चोले आगर बल बुता कर सो घर चो बुता बल कर दे खेती बाड़ी बल संभाल दे पिला जी लाग बल दख दे पढ़ा लिखा बल करा दे हनुमान सब ने आगे रसोत और कोनी कोनी तो असन माता बहन मनासत जे खेती कमा नहीं बुता के कर सोत जहन बल लो के समूह में बल हाँ मन नहीं असन समूह बना सोत चार पांच जन दस जन और हुन मन ड्रीप इरिगेशन ले जैसा टमाटर कमा तो बीज बीज भी तीन फसल होय से जैसन ककड़ी बीज होय से कुंडा बीज होय से और कई बानीच होय से उन सब पाए बीज बुताबल कर सोत
1: और असनी कमान कमान बाती उनके हाट ने भिकुक बलने
0: भिकुक बलने दे
1: और आप लोग घर चो बाड़ती खाजे नहीं ने पैसा कोड़ी बल कमा तो काम बल कर सोत
0: कर सोत
1: व्यवसाय हिसाब ने
0: बल्लो ने हम चो मनुक मन ले दो ही कदम
1: आगे
0: चे काम कर सोत
1: दख लम तो खुबे काम कर
0: हुन मन चो योगदान हम चो खेती बाड़ी ने खूब बेरा से हुन मन चो बिना तो हम चो खेती बाड़ी आधा आए
1: हो नहीं सके तो उन्हीं का जे हम के खेती किसानी बले जानते रहे भले भी जैसन पढ़ा लिखा तो हम हों से मात्र संग संगे खेती किसानी बनी रहता है
0: कोनी कोनी भाई बहन में आजकल असन बल होए से कि हम ही पढ़ाई लिखाई बुता करवाओ असन बल सोत ने पढ़ाई लिखाई तो कर तो चाहे पढ़ाई लिखाई कर लो ने हुन जो संग संग हम के नहीं नियम ले खेती बाड़ी कर ले हुन्ने बले अच्छा नगद फसल हम के मिरुक सके से जसन की मान के चलो हुन मनी करत तो अपन जो आया बाबा बल संग सकसोत की ये समय ने ये दोही के लगा लो ने ये समय ने इतरो पानी दिलो ने फसल कितरो नगद होय देवल असन बल संग सकसोत तो हुन मन बल अपन जो योगदान देवत
1: तो उन्हीं खेती किसानी सब घर जो सब लोग मिशन कर लेने अच्छा हो ऐसे तो ये तो गोठ ली ने मात्र संगे संगे आम चलोगे और बल नगद नगद गोठ मन आसत हाले ए मन के बोले अमरान देव
0: अमरान देव तेबे

जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर

0: दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा कित्ता की सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% की सित्ता। टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमीद मिंदे। लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके उनले कटात बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़। ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता। इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेंट मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
4: तो जिट को
5: हाँ चाहे
4: तो नंगत गोट मन अमरान दिलू ने
5: हाँ
4: हाँ संग संग का है कि किसान वाणी कार्यक्रम ने आमी अलग अलग जन जानकार भाई मन किसान भाई मन संगे भेट घाट बल कराते रहूँ।
5: हाँ कराते रहूँ से
4: कसन खेती किसानी कर सत का हिसाब नहीं कर सत नाल कसन पशुपालन कर सत ये सब ने
5: हाँ आनते रहूँ से
4: हाँ आनते रहूँ से तो उसने आज बोले आन लू से हाँ हराज जन विषय है ग्रीन हाउस फार्मिंग।
5: अच्छा
4: हाँ बोले ने ग्रीन हाउस फार्मिंग काय बीती है एक किसान भाई बहन मन सुन भाती आ एमन उस नहीं अपना उग सकत
5: हाँ काम कर उग सकत
4: काम कर उग सकत
5: हाँ
4: और ये जो सन ये सांगलो ही साब ने कर लेने उन मन केवल को भी लाभ मेरे देने
5: हाँ मेरे से
4: तो ये सनी ये था विशेष अज्ञात अभिलाष शुक्ला और एमन संग ये भेंट कर लासत चंद्र ऋषि ठाकुर हाले ये भेंट वार तक बोले अमरन देव
5: हाले अमरन देव।
6: किसान वाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है हरित गृह कृषि, जिसे अंग्रेजी में हम ग्रीन हाउस फार्मिंग भी कहते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी लेने के लिए और आप सभी को अवगत कराने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अभिलाष शुक्ला जी को। आप डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के कार्यालय में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये कि हरित गृह कृषि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, आप हमारे किसान भाई बहनों को बताएं।
7: जी हरित गृह कृषि या जिसको ग्रीन हाउस कल्टीवेशन भी बोलते हैं, इसे मैडम होता क्या है कि हम लोग जैसे पॉली हाउस में मतलब पॉलीथिलीन का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन का मतलब पतला थीन वो होता है, मतलब बोल सकते हैं आप जैसे झिल्ली होता है वैसे ही पॉलीथिलीन का कवर होता है, उससे कवर करके स्ट्रक्चर बना होता है एल्यूमिनियम अलॉय का अधिकतर या कास्ट आयरन का रहता है ये स्ट्रक्चर। उसमें जो सनलाइट होता है उसको हम और कंजर्व करते हैं, जितने क्वांटिटी में सनलाइट आती है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में वो रिफ्लेक्ट होने की जब बाहर चली जाती है उसको भी फिर से रिफ्लेक्ट किया जाता है अंदर
6: जी,
7: तो उससे टेम्परेचर उसका और राइज हो जाता है
6: जी। तो आप ये बताएं कि हरित गृह कृषि का लाभ क्या क्या होता है?
7: उससे जैसे आप बेमौसम या बे सीज़न वाले फसलों को भी उसके अंदर कल्टीवेशन कर सकते हैं। जैसे अभी टमाटर का सीज़न जैसे बाहर बारिश में आप लगाएंगे तो उसका कल्टीवेशन संभव नहीं है बाहर के कंडीशन में, क्योंकि पौधा क्या है बहुत ज़्यादा उसमें आर्द्र गलन और बहुत सारी बीमारियां आएंगी जिससे उपज जो है बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर ग्रीन हाउस के अंदर करते हैं कल्टीवेशन तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, मतलब पूरी तरीके से नियंत्रण है आपके हाथों में है वो नियंत्रण। जितना आप टेम्परेचर रखना चाहते हैं फसल के लिए उतना टेम्परेचर रख सकते हैं, जितना आपको आर्द्रता रखनी है उतना आर्द्रता रख सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि आपके कीट बीमारी और जितने उसके मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो पैथोजन होते हैं या पैथोजन के जो स्पोर्स होते हैं वो उसके अंदर आते नहीं हैं, तो इससे टमाटर के पौधे हों या किसी भी पौधे सब्जी के उसमें बीमारियां नहीं लगती।
6: तो ये कहा जा सकता है कि हम कई प्रकार की फसलें जो है किसी भी सीजन में
7: ऑफ सीजन
6: भी हो तो भी वहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आर्द्रता और तापमान को भी वहाँ पे नियंत्रण किया जाता है
7: और सनलाइट भी नियंत्रण होता है
6: जी, तो इन सबको किन तकनीकों से नियंत्रित किया जाता है?
7: जैसे मैडम आर्द्रता बोल रहे हैं तो आर्द्रता के लिए क्या होता है उसमें फॉगर लगे होते हैं
6: जी,
7: तो जैसे नमी कम होने लगा अंदर तो हम फॉगर ऑन कर देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या

0: इरीगेशन भी कर देंगे तो उससे बढ़ जाएगा। ऐसे करके ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जाता है।
1: जी
0: और जैसे टेम्परेचर के लिए बोल रहे हैं, तो कूलिंग सिस्टम को हम जैसे ऑफ़ कर देंगे तो उसमें पीछे एक तरफ कूलिंग सिस्टम लगा होता है
1: जी
0: और एक तरफ से उसमें मतलब हवा आते रहती है। तो अगर हमको टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम कूलिंग सिस्टम को ऑफ़ कर देंगे, उससे कूलिंग बंद हो जाएगा तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगेगा। क्योंकि सनलाइट जो है ना, नॉर्मल जो बाहर हम लोग खड़े हैं और अंदर में, तो सनलाइट मतलब डबल हो जाता है वहाँ अंदर, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर फिर रिपीट उसमें आ रहा है,
1: जी
0: तो उससे डबल हो रहा है, तो उससे टेम्परेचर राइज

0: अपने आप बढ़ने लगेगा, क्योंकि सनलाइट जो है ना, नॉर्मल जो बाहर हम लोग खड़े हैं और अंदर में, तो सनलाइट मतलब डबल हो जाता है वहाँ अंदर, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर फिर रिपीट उसमें आ रहा है,
1: जी
0: तो उससे डबल हो रहा है, तो उससे टेम्परेचर राइज मतलब डबल हो जाता है वहाँ अंदर, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर फिर रिपीट उसमें आ रहा है,
1: जी
0: तो उससे डबल हो रहा है, तो उससे टेम्परेचर राइज

0: मत है, तब उनकी योजना का लाभ किसान ले सकता है। और जैसे हॉर्टिकल्चर से लेगा तो डायरेक्ट आवेदन करेगा किसान, और फार्मर शेयर जितना है वो उसको पे करना है जिस वेंडर से वो करा रहा है काम, और वेंडर को पे करने के बाद जो अनुदान है वो वेंडर को या किसान के खाते में, किसान के माध्यम से अगर किया जा रहा है तो किसान के खाते में सब्सिडी को उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
1: जी,
0: जी
1: और आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। और कई बार ऐसा देखा जाता है, ये जो पॉली हाउस की आपने
0: जी
1: बात
0: जी
1: की, पॉली हाउस और जो ग्रीन हाउस है
0: जी
1: वो एक ही होते हैं?
0: जी मैडम, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे पॉली हाउस होता है, ये मेनली होता है यूज़ सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल कंडीशन, मतलब जैसे हमारा ये बस्तर ज़िला है, ये सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल के बीच में आता है। और जो ग्रीन हाउस होते हैं वो टेम्परेट कंडीशन, या बोल सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जैसे हमारे ये उत्तराखंड हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, ऐसे राज्यों के लिए है ग्रीन हाउस, क्योंकि वो ग्लास का स्ट्रक्चर होता है और वहाँ ग्लास ज़रूरी है क्योंकि बर्फ़ गिरती है तो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हमारे यहाँ तो बर्फ़ जैसा कुछ है नहीं, तो इसलिए पॉलीथीन वाले स्ट्रक्चर जो मेनली है उन्हीं का उपयोग किया जाता है।
1: तो इस तरह के कितने हाउसेज होते हैं? सिर्फ पॉलीथीन और पॉली हाउस और
0: जी
1: ग्रीन हाउस ही होते हैं, या फिर और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं
0: नहीं,
1: जहाँ पे
0: इसके
1: हम
0: अलावा
1: कृषि
0: भी
1: कर
0: होते हैं
1: सकते
0: मैडम,
1: हैं?
0: पॉलीथीन के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिसमें, मतलब ग्लास हाउस, पॉलीथीन वाले जो मैं बताया आपको, पॉलीथीन वाले के अलावा, और ये बोल सकते हैं इसमें कुछ कुछ और मटेरियल्स का भी उपयोग किया जाता है। नाम थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा ध्यान में कम आ रहा है, बाकी और बहुत से स्ट्रक्चर हैं जिनका, जैसे लो टनल्स हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनका उपयोग किया जाता है।
1: जी,
0: लो टनल्स और ये सब सब्जी के जो नर्सरी पौधे होते हैं उनको तैयार करने के लिए, और कभी कभी जैसे होता है किसान लोकली खुद भी पॉली हाउस और लो टनल्स निर्माण करते हैं, कई सारे किसान लोकल स्तर पर कहीं कभी नेट से देख के या यूट्यूब से सीख कर भी वो लोग करते हैं, जिसमें वो बम्बू का मतलब बांस का स्ट्रक्चर बना के और नॉर्मल से भी पॉलीथीन से भी ढक देते हैं, तो वो भी बोल सकते हैं लोकल लेवल पे बनता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा उपयोग होता है उससे भी।
1: तो अधिकतर जो फसलें हम उसमें
0: जी
1: लगाते हैं पॉली हाउस में या फिर कहें ग्रीन हाउस में,
0: जी
1: तो उनमें कीट लगने की भी डर रहता होगा, कीट लगने का भी
0: जी
1: डर रहता
0: कीट
1: होगा, और
0: लगने का
1: उनमें
0: डर होता है।
1: सिंचाई की भी सुविधा तो करनी ही पड़ती होगी। तो सिंचाई की सुविधा किस तरह से किया जाता है, और जो कीट नियंत्रण है वो
0: जी
1: कैसे किया जाता है, आप बताएं?
0: जैसे मैडम बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा या NHB के माध्यम से जैसे आप करते हैं, तो उसमें ड्रिप सिस्टम भी रहता है, ऑटोमेटेड सिस्टम भी रहता है। ऑटोमेशन में क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम रहता है, कम्प्लीटली कंप्यूटर कंट्रोल रहता है उसमें, जैसे आप कमांड देंगे और जैसा आपका फसल उस अनुसार वो फर्टिलाइज़र को उसमें वो ड्रिप के साथ मतलब वो पानी के जो माध्यम है उसी में प्रवाहित करता है। और अगर जैसे ड्रिप में किसान खुद से करता है मैन्युअली, तो वो खुद अपना मतलब उसका एक शेड्यूल बना के रखता है, उस शेड्यूल के अनुसार वो सिंचाई करता है। और इसमें दो ही पद्धति कर सकते हैं, या तो आप ऑटोमेशन पे जा सकते हैं तो ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं, और बाकी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है किसानों का जो थाला बना के सिंचाई, वो सब उसमें संभव नहीं है ड्रिप।
1: जी, फिर भी क्या आप हमारे किसान भाई बहनों को बता सकते हैं कि लगभग कितना लागत लग जाता होगा?
0: इससे मैडम स्ट्रक्चर में जैसे देखेंगे तो जैसे रोज़ कल्टीवेशन में कई सारे किसान यहाँ कर रहे हैं NHB का, तो उनका समथिंग 64 लाख समथिंग का तो टोटल कॉस्ट आता है उसमें।
1: सिर्फ खड़ा करने के लिए,
0: जी
1: स्ट्रक्चर
0: स्ट्रक्चर,
1: खड़ा
0: और
1: करने के
0: उसने
1: लिए?
0: नहीं मैडम, स्ट्रक्चर है उसमें, उसके साथ बोर भी है, उसका जो प्लांटिंग मटेरियल है वो भी मिल रहा है, और उसमें और कई सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
1: तो उसमें अनुदान कितना हिस्सा रहता
0: अनुदान
1: है?
0: लगभग 50% है मैडम।
1: 50%,
0: जी
1: तो 64 का है तो
0: जी
1: थर्टी
0: थर्टी
1: टू
0: समथिंग जी
1: थर्टी टू
0: जी
1: है।

0: नहीं होगा, उसमें भी इनकम मतलब नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा ही होता है, और बीमारी कीट कम लगते हैं, और जो मार्केट वैल्यू है वो भी बढ़ जाता है। जो बाहर के कंडीशन में मार्केट वैल्यू हमको मिलती है उससे अच्छा इसके अंदर मिल जाता है, इस कंट्रोल कंडीशन के अंदर। और जैसे ये बड़े स्ट्रक्चर जैसे लगाते हैं NHB के माध्यम से, उसमें क्या है वो प्लांटिंग मटेरियल भी दिलाते हैं, उसका मार्केटिंग का भी सुविधा वो बताते हैं, और पूरा लोन का प्रोसीजर रहता है, और लोन भी धीरे धीरे उनका जो संस्था आपसे वो जो प्रोडक्ट है जैसे रोज़ ले रहे हैं तो रोज़ का जो कट फ्लावर है वो लेते जाएंगे तो वो लोन भी पे करते जाते हैं धीरे धीरे किसानों का। तो दोनों में ही फायदे हैं, अगर लोकली किसान खुद भी करना चाहता है, लोन नहीं लेना चाहता तो भी कर सकता है, और अगर लोन लेके NHB के माध्यम से भी करना चाहता है तो भी कर सकता है।
1: फिर भी क्या आप अंदाजतन हमारे श्रोताओं

0: से ज़्यादा समय तक भी उपज देता है। तो एक तरीके से उतनी लागत में देखा जाए तो, और छोटे इस जगह में भी और कम लेबर में भी आप उससे ज़्यादा इनकम ले रहे हैं
1: जी जी
0: ओपन कंडीशन से
1: जी। और जैसा कि आपने ये मेंशन किया था कि कई बार ऐसा होता है कि किसान यूट्यूब से या फिर इधर उधर कहीं से देख के सीख के खुद ही स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में कई बार ऐसा होता है कि उससे उनको नुकसान भी झेलना पड़ता है या फिर और कुछ तकलीफें भी उन्हें झेलनी पड़ती है, तो कुछ सावधानियां रखनी पड़ती होंगी या फिर इसके क्या हानियां हो सकती हैं संभावित वो आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जैसे किसान मैडम अपने खुद से बना रहे हैं वो ना विंड का जो डायरेक्शन होता है उसका ध्यान नहीं रखते, बस सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको ये देखना चाहिए कि उनके जो क्षेत्र है या किसान का जो खेत है उसमें हवा किस डायरेक्शन से अधिकतर आती है। आंधी का जो समय होता है फरवरी से लेकर जून तक का, इस मौसम में आंधियाँ चलती हैं, उसके अलावा तो और किसी सीज़न में उतना आंधी नहीं होती, वो आंधियाँ ही नुकसान करती हैं बस जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, और जो अच्छे से फिक्सिंग किया होता है उसमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो लोकली हम किसान बनाते हैं उसमें ये समस्या रहती है कि विंड के द्वारा ही उसको नुकसान होता है और किसी माध्यम से कभी नुकसान नहीं होता है।
1: जी जी।
0: तो हवा का डायरेक्शन का ध्यान रखना है और कोशिश करें विंड ब्रेक वाले पेड़ एक तरीके से बोल सकते हैं वृक्षारोपण करना चाहिए, वो भी हमको फार्म के किनारे में, ताकि वो जो वृक्ष होते हैं वो हवा रोकते हैं। तो आपका जो स्ट्रक्चर है कंट्रोल कंडीशन का आपने बनाया है, लोकली भले बनाया हो लेकिन वो वृक्ष होंगे तो वो रोकेंगे उसको।
1: जी, तो आप ये बताएं कि कई बार ऐसा भी होता है कि आंधी तूफान जब आता है और फिर फट जाते हैं वो जो पॉलीहाउस के जो स्ट्रक्चर रहते हैं, तो उनका प्रबंधन किस तरह से किया जाए, किस तरह से उनका मेंटेनेंस किया जाए, फटने के बाद भी क्या उसे दोबारा जोड़ा जा सकता है या फिर दोबारा फिर से खड़ा करना पड़ेगा?
0: नहीं, दोबारा खड़ा नहीं, जैसे लोकली अगर किसान ने बनाया है तो बांस का ही है तो वो दोबारा हो जाता है, और बांस में जो ये बोल सकते हैं लचीलापन है वो स्टील से ज़्यादा होता है एक तरीके से देखें तो बहुत ज़्यादा कंडीशन में तो वो मतलब सह लेता है, और उसका हाइट भी किसान बहुत नहीं देते, बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं रखते, तो कम हाइट में रहता है इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता उसमें, और वो दोबारा फिर से बांस को फिर से वो अपना सेटअप करके फिर से पॉलीथिलीन अपना बिछा के फिर से उसको यूज मतलब रीयूज़ कर सकते हैं। और जो हाई कॉस्ट वाले रहते हैं उसमें इतना ज़्यादा समस्या नहीं आती, कभी कभी रेयरली किसी किसान के यहाँ आती है जिन्होंने मतलब अच्छे से फिक्सिंग न कराया हो, उन्हीं के यहाँ ये समस्या आ सकती है।
1: जी जी, तो पॉली हाउस में तो पूरा नियंत्रित कृषि होता है, तो उसमें हम किसी भी तरह के फसल ले सकते हैं, कोई सभी फसल ले सकते हैं, किसी भी ऋतु में ले सकते हैं,
0: किसी भी ऋतु में ऑफ सीजन कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, उससे इनकम बहुत ज़्यादा मिलता है नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले। जैसे अभी टमाटर का रेट अब देखेंगे आप जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आएगी 80 रुपये या 100 रुपये तक जाएगा, तो अभी जो ग्रीन हाउस या सेटनेट हाउस के अंदर कल्टीवेशन करेंगे टमाटर गोभी और बाकी सब्जियों का, और यहाँ तक कि कैप्सिकम जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं उनका भी कल्टीवेशन, जी शिमला मिर्च जो डिफरेंट कलर में आते हैं जैसे ग्रीन हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, इन सब का जो मार्केट प्राइस है कंट्रोल कंडीशन वालों का जो मतलब आप बोल सकते हैं क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी देख के मार्केट वैल्यू अच्छा मिलता है, और ये ओपन कंडीशन की फसलों में मतलब अभी तो कर ही नहीं सकते उनको हम बारिश में, और बारिश के बाद भी करते हैं तो क्वालिटी नहीं मिलता बाहर ओपन कंडीशन में।
1: तो सबसे फ़ायदेमंद फसल आप किसे मानते हैं?
0: सबसे फ़ायदेमंद मैम यही बोलूँगा मैं इसमें कि फ्लावर कल्टीवेशन भी अच्छा है अगर ग्रीन हाउस और इसके अंदर करना चाह रहे हैं किसान, सेडनेट हाउस के अंदर फ्लावर का कल्टीवेशन अच्छा है और उसमें ज़्यादा बीमारियाँ भी नहीं आती हैं, और उसके उपरांत करना चाहते हैं तो वेजिटेबल कल्टीवेशन और अच्छा है
1: जी।
0: उन दोनों को कंपेयर करेंगे मतलब ये दोनों ठीक हैं जिनका मतलब कैश क्रॉप एक तरीके से बोल सकते हैं, डेली इनकम इनको किसानों को कुछ ना कुछ होना ही होना।
1: अगर फसलों में बीमारियां लग जाती हैं तो फिर कीटनाशक या फिर किसी अन्य रसायन या फिर उर्वरक का उपयोग उसमें करना पड़ता है?
0: जी, उसके अंदर वही जैसे किसान बाहर करते हैं वैसे सेम उसमें अंदर भी किया जाता है, बस इसमें ये एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी लेबर और जो भी उनके वहाँ अंदर काम कर रहे हैं वो जो अपने पैर में पहन के जाते हैं अंदर काम करने के लिए, चाहे जूते पहने या चप्पल पहने, उसको वहाँ मतलब ग्रीन हाउस के अंदर एंटर होने से पहले उसको उतरवा के मतलब चेंज कराना है, तो मतलब अपने फार्म के अंदर वो अलग ही पहने, क्योंकि बाहर से ही उसके स्पोर्स जो होते हैं बीमारी के या जो इंसेक्ट हैं उनके एग अंदर जाते हैं, और वो उसमें इतना फेवरेबल कंडीशन होता है मतलब टेम्परेचर कि इंसेक्ट मतलब सब्जियों के साथ साथ इंसेक्ट और बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा वहाँ टेम्परेचर होता है, तो अगर उनका स्पोर एक छोटा सा और एक भी चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब आपकी फसल को नुकसान कर सकते हैं। तो मेन वही है कि उनके पैरों का वो हो कि या तो पॉलीथीन का वो जो सीट पहन के अंदर जाएं या तो फिर वहाँ जो उनका जूता या चप्पल है उसको चेंज करा दिया जाए, इस तरीके से मतलब प्रिवेंशन कर सकते हैं।
1: तो आपने तो बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है, फिर भी अगर कोई जानकारी आपको ऐसा लगता है कि श्रोताओं के साथ साझा करनी चाहिए तो ज़रूर करें।
0: मेरा किसानों को बस यही कहना है कि अगर ओपन कल्टीवेशन में ओपन कल्टीवेशन जैसे आप कर रहे हैं को इसके साथ साथ ग्रीन हाउस कल्टीवेशन भी छोटे एरिया में शुरू में करना चाहिए, भले आप लोकली

0: जैसे अभी बांस या इसके माध्यम से बना के करें, और भविष्य में उसको धीरे धीरे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है तो एक प्रॉपर मतलब अच्छा ग्रीन हाउस या पॉलीथीन मतलब पॉलीथीन वाले या पॉलीथिलीन वाले पॉली हाउस का भी निर्माण करना चाहिए, जिससे इनकम क्या है इनको नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले ओपन कंडीशन के मुकाबले कंट्रोल कंडीशन में ज़्यादा अच्छा मिले।
1: तो आपने बहुत सारी बातें हमसे और हमारे श्रोताओं से साझा की, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
3: खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
2: इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
4: हाँ जीटकू,
5: हाँ चाहते हो
4: तो ये चीज संगे हम जो आज कार्यक्रम इतनी मोटर रैली ने हाले में विदा मांगो बोलते रहे मैं
5: हाले मांगो तेरे
4: तो जातो पूरे किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सब पाए किसान भाई बहन मन के मैं चाहे तू
5: मैं जीटकू
4: हम दोनों करूँ से
5: जोहार।

प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण अभी किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। आइए जो न्यूजर में सुनते हैं हल्बी लोकगीत। कलाकार हैं नीला और साथी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

जोनी उजर में अभी आप सुन रहे थे नीला और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीला मन काजी गोट। प्रस्तुति है संपत राम नाग की।

पिलामन का जे गोट कार्यक्रम सुनतो सपाय पिलामन के मच बाटले कुबे कुबे लाड़ पिलामन तुम्ही सपाय स्कूल मन ने पढ़ा सास और जाना सास भले की स्कूल ने गुरुजी मैडम मन सांगते बोले रहे सत आगे आमचो भारत देश ने अंग्रेज मन शासन करते रहोत संगे संगे आपलो राजपाट के चलाते रहोत आमचो भारत देश ने अंग्रेज मन चो हुकुम चलते रहे अंग्रेज मन आमचो भारत देश चो लोग मन का जे खूबे शोषण बोले करला पीला मन आमचो देश के आज़ाद करातो का जे खूबे महापुरुष मन शहीद बोले होला जसन की सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई असनी और बले महापुरुष मन आमचो भारत देश ने जन्म होला जसन की सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वामी विवेकानंद बाल गंगाधर तिलक चंद्रशेखर आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू असनी कितली लोग महापुरुष मन आमचो देश ने जन्म होला और अंग्रेज मन संगे लड़ाई लड़ला आज ही असनी मैं तुमके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवना कसन रहे उनके सांगे से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश चो पहल राष्ट्रपति रहोत ये मन आमचो भारत देश के आज़ाद करातो काजे कुबे लड़ाई मन बल लड़ला आरु आमचो भारत देश के अंग्रेज मन

ले 1947 के आजाद कराला। संगे संगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कानून चो खूबे जानकार बल रोत, संगे संगे ए मन पुस्तक बले लिखते रोत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चो सांगलो गोट मन के दरुन चलतो बिता मनुख रहे। यही काजे महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छो ऊपरे खूबे विश्वास संगाते रोत। काय काजे बल्ले महात्मा गांधी जौन बले काम के तैयारते रहे, उन काम के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जट के करते रहोत। पिलामन तुम्ही बले घर चो आया बाबा जौन बले काम बुता के करतो काजे सांगुआत, उन काम बुता मन के करतो रहाय। असनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आगे राजेंद्र बाबू बले बलते रहोत। ये मंचो जन्म 3 दिसंबर 1884 ने बिहार राज्य चो सारण जिला ग्राम जिरदोई गांव ने ओन रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चो बाबा चो नाव रहे महादेव साई और ये मंचो आया चो नाव रहे कमलेश्वरी देवी। ये मंचो आया बले कुबे सरल स्वभाव बल्ले ने ये मंचो आया सपाय लोग बाग संगे और पिलामन संगे बले अच्छा ले गोट बात करते रहोत। एची लागून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बले सपाय पिलामन संगे अच्छा ले मिलून मिसून रहते रहोत और काचवी संगे झगड़ा कुलार नी रहोत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई बले गांव ने ही गोटोक प्राइमरी स्कूल ने होली। उतलो ने ए मन आई स्कूल चो पढ़ाई करतो काजे छपरा जिला चो गोटोक सरकारी स्कूल ने एडमिशन दरुन आगे चो पढ़ाई करला। फिर ए मन कॉलेज चो पढ़ाई करतो काजे कलकत्ता विश्वविद्यालय ने एडमिशन दरतो काजे गेला। उदलदाय कॉलेज ने एडमिशन दरतो पहिल इंट्रेंस एग्जाम ने अच्छा नंबर ले पास होला। आरु सुविख्यात प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता ने पढ़ाई करतो काजे भर्ती होला। ए मन कॉलेज ने बले पढ़ाई लिखाई करतो ने खूबे होशियार रहोत। उन्हीं काजे एके कॉलेज चो सपाय लोग मन बल्ले कॉलेज चो पढ़तो लेका लेकी गुरुजी मैडम मन संगे जान पहचान होते गेला। यही लागून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कॉलेज चो सेक्रेटरी चुनला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद LLB चो पढ़ाई पूरा करून ए मन पाछे LLM चो बले पढ़ाई करूक लाय मुरियाला। उतलो ने ए मन PhD चो पढ़ाई करूक लाय मुर करला। PhD ने बले अच्छा नंबर ने पास होतो के ए मन के कलकत्ता विश्वविद्यालय बाटले गोल्ड मेडल दिला। उन्हीं दिन ले पेर ए मन आपलो नाव चो पूरे डॉक्टर लिखूक लाय मुरियाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई पूरा ओलो पाचे कलकत्ता ले पटना हिला। उदोलदाय पटना ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी चलाते रहोत। ये आंदोलन चो समय रहे 1917 तेबे ए मंचो बेडघाट महात्मा गांधी संगे ओली। महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सांगला कि तुम्ही प्रोशन ओलो किसान मन के संग दिया बलून सांगला। तेबे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बले आपलो संगे वकालत करतो वकील मन के आग दिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी संगे रतो के जानला कि भारत देश चो लोग मन काजे लड़ाई लड़तो राय बलून मन ने विचार करला। वर्ष 1918 ने रोलेक्ट एक्ट और 1919 ने जलियावाला बाग हत्याकांड उली। रोलेक्ट एक्ट के ही ब्लैक एक्ट हारु एक काला अधिनियम चो नाव बले दिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वर्ष 1930 ने नमक सत्याग्रह आंदोलन ने अंग्रेज मन गिरफ्तार करून उनके जेल ने बंद करला। मांतर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हार नी मानला। हारु ए मन गोटोक साधारण कार्यकर्ता चो रूप ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शामिल होला। उतलो ने ए मन के वर्ष 1935 ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चो अध्यक्ष निर्वाचित होला।
वर्ष 1939 ने

सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अध्यक्ष पद ले छांटतो के पैर आरोप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष बनाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खूबे जानकार संगे संगे ज्ञानी और ये तो समय ने आगे आम के काय काय करतो रहे सपाए के जानते बल रहोत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वर्ष 1946 ने अंतरिम सरकार बेरा उनके खाद्य और कृषि मंत्री बले बनाला। तेबे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसान मन के सांगला कि तुम्ही आगर ले आगर कमानी करुक लाए मुरियावा। असनी वर्ष 1946 ने ही स्वतंत्र भारत देश का जे संविधान सभा चो स्थापना करला। उदलदाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बिहार प्रांत चो सदस्य चुनला। बिहार प्रांत

26 जनवरी वर्ष 1950 के राष्ट्रपति चो शपथ धरला। शपथ धरलो के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चो जिम्मेदारी और बले बढ़ ली। राष्ट्रपति चो पद संगे संगे आम चो बारा देश चो संविधान के बचातो राय और उनके बनान संगातोर आप लोग कांदे धरला। वर्ष 1952 ने राष्ट्रपति चो चुनाव पेरोली उदलदाय बले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनाव जीतलो और फिर आरोक भारत देश चो राष्ट्रपति बनला। पिलामन आम के बले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चो हसन कोनी बले खाम बुताओ नाले पढ़ाई लिखाई हो आम के खूबे ईमानदारी ले करतो राय हरू अच्छा मनु बनुन जीवना जीतो राय। आम के असन काम के करतो राय कि मरलो पाचे बले आम के सुरता संगा हो। पिलामन आले मचलग असनी गीता से ये गीत के सुनाता।

ये बाटे काय दक्षोत कनक मानक लेकी राशि मन संगे चूड़ी माला पिनसोत हुन बाटले खेलून गुंडा दूर बले हाथ ने धनु और कांट के धुरुन बाती ऐसे काय दक ऐसे कनक मानक चूड़ी पिनसोत चूड़ी पिन तक दो कौन चूड़ी बीते लग जाऊन बाती गुंडा दूर बले से ए पिंदा चूड़ी बीती बाई आले पिंदा चूड़ी बीती बाई ए बाई आले पिंदा काय

पीलामन काजी गोट कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया गया। प्रस्तुति थी संपत राम नाग की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की।

0: उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की

0: अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार

0: चरण पहले और जेसाई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
1: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। गुड इवनिंग। दिस

0: रेडियो सुन तो सपाय भाई बहन मन के सेवा जोहार। तो देखा आमी आमचो रान आमचो जीवना ने रान बनचो गोड बात करूँ से असन तो सबू जानास कि रान आमचो जीवना काजे कितलो काम दे से भले ने जोन रान बनन्यासत होनेत मन जानुक सकोत कि हुन मनचो जीवना ने कितलो संग दे से रान। मंतर आमी ये जानुक सकूँ कि जोन बाटे रान बनासे रुक रही आसे तो हुन बाटे बल्ले ने लहरा जोन आमी निरवा लहरा बोलूँ से हुन मेरे से आरु जोन पर्यावरण प्रदूषण जोन बोलूँ से हुन चले आमी बाचुक लाए सकूँ से। तो असने ची आजी आमचो रान आमचो जीवना ये कार्यक्रम ने आपन मन के सुनाऊ से गोटोक हल भी नाटक रूक राय संगे जीवना।
1: लक्ष्मी ए लक्ष्मी लक्ष्मी ए लक्ष्मी कौन बाटे गेली जाले बायले बले आले ये गोड़ के धोएन ता ये कहाँ गेली सरे
2: ए, ए इलासो भीतरे राना मंडालेस जानू हुनी बाटे रही। हाँ ये जाले काय होली हुन बस काने
1: आले खिंडी कस्तीर ने बसुक तो देस फेर सांगे दे आले उन कुर्चिक देस से बाटे।
2: हाँ, हाँ, हाँ,
1: अच्छा बस का रहे शहर बाटले बले नहीं उन साहब मने उन रोत रान बन मोहकमा चो बड़े जनाब मन यू रला हाँ। गांव चो स्कूल चो मास्टर ये सरपंच पटेल कोटवार पंच सब पाए रला
2: जाले का हिसाब ने ए बस का के संगाउन रला हो मैं बोले तो ये दे बोलून रहे मानतर रान बाटे नी गेले तो आमचो जीवना नी चले ए काजे नी अमरले काय।
1: हुनी रान चो गोट काजे तो बस का हाक देव रहो
2: हाँ हाँ।

0: देखा ना दादा मन और दीदी मन, ये रुख नहीं मचो मीतात। देखा एक एक कोनी नी लागा, नहाले हाँ नहाले मैं पखना ने मारे दे। हाँ मचो मीत के कोनी नी लागा।
1: ए ना राम साय,
0: आए
1: तू काय करसीस बाबू?
0: आए
1: ये रुख राई सप्पायचो संग देवात ना, ये तुझे ही नहीं आम्ही सप्पायचो संगवारी आत ना बाबू। हो तू सत्य बोलसीस। हो
0: आए सप्पायचो संगवारी हे? अच्छा तो आए दादा सप्पायचो संगवारी यार। मचो मीत सप्पायचो संगवारी, मचो मीत सप्पायचो संगवारी। हाँ हाँ मचो मीत सप्पायचो संगवारी। हाँ अब और मैं दूसर रुख लगे जाए देता। हो मीत बांधो रुख राई के, मीत बांधो रुख राई के, हम के मया करुआ।
2: बया तो होलो से मानतर बया होन बले सोर जो गोट के गोठे आए।
1: हाँ तू सत्य बल सिस रे राम साहे, सोरा आना सत्य गोट के बले से। रुख राई नीरलो ने आमचो जीवना काय होती? रुख राई आसे तेवे तो आमचो जीवना आसे।
3: मैं तो गोटोक विचार करें से ना।
1: हाँ,
3: गोटू
1: हाँ,
3: मोचो बाड़ीन जित्रो पर ठाना आसे ना।
1: हाँ, हाँ,
3: होता भीने भीने किसम चो गोटोक गोटोक बूटा मो ना आंदे।
1: हाँ
3: आउरु होन बूटा मन के मैं नगद जतन दखा राखा करें दे।
1: हाँ,
3: बूटा रेले जीवना आए ए गोट के आजी मैं रामसाय बयाली समझ लेना।
1: हाँ, तू सत्य गोट के बलसीस नानड़गू।
3: हाँ,
1: हाँ, ये रामसाय बया बुद्धि ने आसे मानतर सोर चो गोट के सिखाए से। आम के सप्पाय लोग के गोट के सांग तो राय सिखा तो राय कि रुख रही रले जीवना आए। आम के तो जसन रान बनासोत एके बले जित्रो होक सके जतन कर तो राय और उवाट कर तो राय।
3: हो ना
2: आले आले करा से जतन, मान तरे बे घरे जाऊं खूब बे बूता से।
1: हो आले जाऊं तेबे आल जो
3: जाओ जाओ जाओ जाओ।
2: सुन सासो राम साहे उजर लो मने।
1: राम साहे उजर लो जाले सुनु तो रहे हुनके कोचो लगाया जाले दखाउक लाई नीलासोत बोलून जाले सुधर लो ने।
2: हो कौन डॉक्टर के दखाला जाले एबे नंगत होन बहर लो मने।
1: मांतर गोटो गोट तो आए रे बया बया कितरो बया दखले। मांतर असन गियांचो गोट सांगु बया मैं पहिला हार दखले।
2: गोट तो तुमी सत्य बल सास बया होन बले।

0: अच्छा थोली काका, एबे मैं विचार करें से जे काम के भया होऊन भया बुद्धि ने कर ले हुनके असनी बले तो सबके समझाऊन करी होय देच।
1: हो असनी बले समझालो ने, नंगत गोट तो आए छे बाबू।
0: देखा काका और काकी,
1: हाँ
0: रुख राई रले लहरा पानी नगत रहे से, बरसा नगत होय से, बरसा नगत होले हम चो बेड़ा खड़ा ने उपजन बले नगत होय से,
1: हो
0: बेड़ा खड़ा धान पान नगत रले हम चो जीवना नगत चले से। ये हिसाब ले दखले रुख राई हम चो जीवना चो मूरात आत कसन।
2: गोट तो सत्य है बाबू, मानतेर यही गोट के गुलाय दुनिया चो लोग बले समझ ले नगत होती।
0: समझ दे काकी, समझ दे। रान बन शर्तों के हमी गुलाय मनुख मांदी काजे गोटोक दिने मस्कुल होन जाए दे।
2: हाँ
0: ऐ लागून हम के सफाए लोग के ये गोट के समझूक लागे दे।
2: हाँ हाँ
0: यही काजे तो मैं गीत ने बले लोग मन के सांगे दे बले से।
1: हाँ तू तो आगत ले फिर गीत गोविंद जो जानकार आस का बाबू आले खिंडी गांव दखनु।
0: दख काका, ये भैया मेरा तो मैं एकला है गाँव ते रहे का मानतर
1: मांतर ये मांतर काय।
0: मानतर एदाई तुम्ही बले मके संग दिया।
1: हाँ अच्छा गोट के
2: देवा
1: बोली आले
2: देवा देवा
1: संग देवा
2: देवा
1: कसन
2: हाँ
1: देवा
2: हाँ
1: देवा
2: देवा
1: देवा
2: देवा
1: देवा आले
2: देवा
1: आले आल
0: आले
1: ते आल गाँव
2: गाँव
1: कोर्या।
2: पूरी आओ। हाँ
3: आमचो रान आमचो जीवना कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता हैं उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने

0: कॉन्टिनेंट हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखें वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी,
0: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन।
1: जी,
0: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं, तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है, हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स से शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान इराक और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश और उसके बाद फिर हिमालय फिर उसके बाद अराकान योमा और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही है या वो रुक रुक के जा रही है।
1: जी,
0: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही है तो यानी कि रुक रही है इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है, लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं ये हमारे पास एक टेबल है तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है, अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है बेड बहुत मजबूत होता है आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का

0: तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है। क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबेल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी, जब वो यहां पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
2: जी।
3: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
2: जी,
3: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
2: जी।
3: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में, और उनकी जीवन शैली को सुधारने में, और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
2: जी,
3: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
2: जी,
3: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पे लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
2: जी।
3: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांव में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
2: जी।
3: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
2: जी।
3: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
2: जी जी।
3: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
2: जी।
3: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
2: जी।
3: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।

0: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है, इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
2: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में, आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
2: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
0: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान, साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी

0: इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में

0: तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग जी गोपाल रेड्डी कैंपस गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गाँव गाँव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होके अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है। इनफैक्ट मैं तो बोलता मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई

0: हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरू प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है आदिवासी लोकवादी धुन का कार्यक्रम पाड़। वादक कलाकार हैं पाकलू और साथी। इसमें आज आप सुनेंगे करला और धावड़ा बीर देव पाड़।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 साल

0: आदिवासी लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ का प्रसारण अभी किया गया। वाद्य कलाकार थे पागलू और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमान

विपणन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: night. In another Group A fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in US. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सुबह 5:51 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।